किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:54 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ.

0: पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सभी सुनने वालों को सुप्रभात। दिन की शुरुआत प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना के साथ। कहते हैं जिसका चिंतन आप सदैव करते हैं उसकी ऊर्जा आप में उतरती है, इसीलिए अपने आराध्य को सदैव स्मरण करते रहें, चाहे वो प्रातःकाल का समय हो या फिर दिन का कोई भी प्रहर हो, और अपने इष्ट की आराधना में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और गीता में भी लिखा है, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटना होना भी तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम सभी घाव स्वयं ही भर सकते हो, इसीलिए अपने इष्ट की स्मरण में सदैव लिप्त रहो।

कहते हैं प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आपको ही संभालना हो। लेकिन साथ ही ईश्वर वंदन और समर्पण, ये दो ऐसे कमान हैं जो आपके रास्ते की हर रोड़े को दूर करते हैं और आपकी राह को सुगम बनाते हैं। तो समर्पण और श्रद्धा भाव से प्रतिदिन प्रत्येक समय अपने जीवन को सुगम और सरल बनाएं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में एक बार फिर आपका स्वागत है, और आइए आप सुनते हैं ये भजन।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा। आपको सुनवा रहे हैं बापू के बारे में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के विचार।
1: हर एक कदम में, हर क्षण में हमको महात्मा जी की अनुपस्थिति से जो क्षति और हानि हुई उसका बोध होता रहा। उनके न होने से जितने जटिल और कठिन प्रश्न हमारे सामने आए, उनको यदि वह होते तो हम किस तरह से हल करते, यह हर एक के मन में विचार प्रतिदिन आते रहे। आज हम महात्मा जी की प्रथम वर्षी को मना रहे हैं। यह अवसर है जब हमको सबको महात्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। आज महात्मा जी के चर्चा को सभी लोग कर रहे हैं। आज प्रातः काल से इस समय तक जहाँ भी जावें राम धुन सुनाई देता है, या महात्मा जी के जीवन चरित्र की गाथाएं और महात्मा जी के उपदेशों की बातें सब जगह सुनने में आती हैं। ऑल इंडिया रेडियो से और रेडियो के और स्टेशनों से भी महात्मा जी के ही बारे में हम लोगों को बहुत सी बातें फिर याद कराई जा रही हैं। अभी अभी यहाँ लखनऊ में भी इसका आज का कृत्य मनाया गया। करीब 2 घंटे हुए दिल्ली में भी आज राजघाट में बड़ा भारी जनसमूह उमड़ कर जमा हुआ था। करीब 4 बजे आज मुझे भी राजघाट में जाकर महात्मा जी के चरण कमलों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला था। यहाँ पर आज हम फिर महात्मा जी ने जो हमारा उपकार किया, जो महात्मा जी ने हमारे देश को और संसार को वरदान दिया, और ऐसे समय में जबकि सर्वत्र कलह की, एटम बम की, आपस में संग्राम और युद्ध और एक दूसरे के शोषण की बातें चल रही थी, एक महान आत्मा ने इस संसार में आकर हमको सच्ची विभूतियों का बोध कराया और बतलाया कि किस तरह से हमारा और संसार का कल्याण हो सकता है। महात्मा जी के कोटि के उच्च पुरुष संसार में बहुत ही कम पैदा होते हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश ने, जिसने श्री राम और कृष्ण को, गौतम बुद्ध को, पाणिनि वाल्मीकि को और हर एक क्षेत्रों के नायकों को उत्पन्न किया, उसी देश ने इस युग में जबकि हम अंधकार में पड़े हुए थे, जब हम पराधीनता की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, हमारे त्राण और रक्षा के लिए महात्मा गांधी को जन्म दिया। महात्मा गांधी ने हमको पराधीनता से मुक्त कराया। उन्होंने इस जर्जरित और मूर्छित देश में नवजीवन का संचार कराया, एक नई बिजली पैदा कर दी, और जो लोग असहाय पड़े हुए थे, जिनको अपना भविष्य कुछ दिखता नहीं था, उनको फिर सजीव करके, उनकी आत्मा को सजग करके भारत को स्वतंत्र कराया। पर स्वतंत्रता ही नहीं, महात्मा जी का क्षेत्र तो असीम था, बड़ा विस्तृत था, उसमें जितने भी शुभ कार्य हो सकते थे उन सब का सम्मिश्रण था। महात्मा जी ने हमारे समाज

में एक उथल पुथल पैदा की। वो उन्होंने एक सबसे बड़ी क्रांति हमारे देश में उत्पन्न की, पर उस क्रांति को एक माधुरी से, एक प्रेम से और एक अद्भुत अलौकिक रीति से उन्होंने उत्पन्न किया। उन्होंने हमारे देश में केवल यही नहीं कि हमें स्वतंत्र कराया, पर उन्होंने भारतीयता का पुनरुद्धार किया। उन्होंने ऐसे समय में जबकि हम लोग अपने भूतकाल को बिल्कुल भूल चुके थे, जबकि हमको यह मालूम होता था कि दूसरों पर ही निर्धारित होकर, दूसरों पर ही निर्भर रहकर हम अपना भला कर सकते हैं, यह बतलाया कि भारत की एक आत्मा है, भारतीयता एक सजीव स्रोत है जिसके अमृतपान से प्रत्येक भारतीय अपने को भी अमर कर सकता है, अपने देश को अमर कर सकता है और संसार को भी जागृत और उच्च कर सकता है। उस भारतीयता का पाठ महात्मा जी ने हमको पढ़ाया और उन्होंने हमको बतलाया कि सच और अहिंसा के ही आधार पर हमारे देश का और संसार का कल्याण हो सकता है। ऐसे समय में जबकि एटम बम का आविष्कार हो रहा था, जबकि संसार में विध्वंसकारी आयोजनों को उत्पन्न करने में औरों की सारी शक्ति लगी हुई थी, भारत ने एक ऐसे महापुरुष को उत्पन्न किया जिसने संसार को बतलाया कि इस किस्म के खूनरेजी से, रक्तपात से कोई भला नहीं हो सकता। केवल शांति के आधार पर, केवल अहिंसा के आधार पर, केवल आपस के सद्भाव से ही संसार का कल्याण हो सकता है। महात्मा जी भारत के महान रत्न थे, पर महात्मा जी का क्षेत्र सारा संसार था। वो सारे मानव समाज के हितैषी थे, वो ईश्वर पर अटल विश्वास रखते थे और उनके सामूहिक प्रार्थना में सभी धर्म ग्रंथों की चर्चा होती थी। वो गीता के अनाशक्ति योग का पाठ रोज कराते थे, पर उसी के साथ साथ बाइबिल, कुरान, चंडावस्था आदि और भी धार्मिक ग्रंथों का वहाँ पर पाठ हुआ करता था। वो सब धर्मावलंबियों से एक सा प्रेम करते थे। वो संसार के सभी देशों के रहने वालों के हित को चाहने वाले थे। वो खासकर जो लोग पिछड़े हुए थे और जहाँ भी जो संकट और दुख में थे उनको सहायता पहुँचाना चाहते थे। यही उन्होंने अफ्रीका में किया, यही उन्होंने भारत में किया। वे दरिद्र नारायण के उपासक थे और इस देश में सबसे जो पिछड़े हुए दलित जाति के लोग थे उनको उन्होंने सबसे अधिक अपनाया, उनके साथ अपना विशेष संबंध स्थापित किया और हरिजन की उपाधि देकर उनको इस देश में सबसे ऊंचा करने का यत्न किया। महात्मा जी का तमाम कार्यों का आधार सत्य पर था। वो छल और कपट को बुरा समझते थे, वो राजनीति में भी किसी कपट का स्थान नहीं रखते थे। उन्होंने हमको बतलाया और सिखलाया कि केवल सत्य के आधार पर हम अपना और संसार का भला कर सकते हैं और यही हमें सिद्धांत अपने सामने रखना है। चाहे हम कुछ भी करें, हमें कोई छिप कर बात करनी नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा जहाँ तक हो एक समन्वय और संधि करके हमें सब कार्यों को करना है। यही भारत की प्राचीन रीति चली आई, यही महान आत्माओं का उपदेश हमारे लिए रहा और आज भी जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है हमें इस उपदेश को अपने सामने रखना है, ताकि हमारा देश आजकल की जो पाश्चात्य जगत की गिरी हुई रीतियां हैं उनको न अपनावे और अपने स्वतंत्रता के युग में भी अपने प्राचीन आध्यात्मिकता के आधार को अपने सामने रखकर उसी में अपने नए मंदिर की रचना करने में सफल हो। हमने जो कुछ भी किया वह महात्मा जी के आदेश से किया। महात्मा जी के बतलाए हुए मार्ग पर जितने हम चले उतने ही सफल हुए और जब कभी भी हम उससे विचलित हुए हम गिरे। हमारा कल्याण महात्मा जी के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। महात्मा जी ने हमसे कहा, बार बार कहा कि सांप्रदायिकता को जगह मत दो, इससे कोई लाभ और हित नहीं होगा, फिर के वाराना बातों से नुकसान।

हिंदू मुसलमान ईसाई सब में एकता होनी चाहिए, पर एक ऐसे समय में जबकि एक तरह का पागलपन हमारे देश में छा गया, उनके इन सब उपदेशों को लोगों ने ठुकरा दिया और परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। लाखों हमारे भाई अपने घरों को छोड़कर दूर दूर आए, लाखों को हर तरह के कष्ट पहुँचे और आज भी लाखों हर तरह की व्यथा उसके कारण भुगत रहे हैं। कई स्थानों में हजारों मारे गए, परंतु ऐसी अवस्था में भी जबकि मार काट यूं चल रही थी, महात्मा जी निर्भीक होकर जहां मुसलमानों के अड्डे थे उन जगहों में जाते थे। और उन्होंने पूर्वी बंगाल में क्या किया, उन्होंने कलकत्ते में क्या किया, उन्होंने दिल्ली में क्या किया, उसके आप सब परिचित हैं। फिर महात्मा जी ने हमारे देश का उपकार अपने जीवन का प्रतिक्षण देकर किया और वही उपकार महात्मा जी ने अंत में अपने जीवन का बलिदान देकर किया। हमारा देश बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाता, हमारी स्वतंत्रता दो दिन का स्वप्न होकर दूर होकर गायब हो जाती, परंतु महात्मा जी ने रक्षक के तौर पर हमारा त्राण किया और हमारे 30-40 करोड़ नर नारियों के रक्षा को का भार अपने ऊपर लेकर इस संसार में हत्या को भी सहन किया और हमें वह उपदेश दे गए जो कि उनकी अमर कीर्ति को बनाए रखेगा। परंतु हमें ऐसे अवसर पर जबकि हम महात्मा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके उपदेशों को सामने रखकर उनके अनुसार चलने का यत्न करना। आज हमको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की ओर से जो संदेशा मिला है उसको सामने रखना है। सर्वोदय दिवस

किसी से घृणा नहीं करते थे, किसी से बैर नहीं रखते थे। यदि किसी बात से महात्मा जी को दुख और वेदना सबसे अधिक होती थी तो वह अकर्मण्यता से, भीरुता से और ऐसी बातों से जिससे कि मनुष्य ऊंचा उठने के बजाय नीचा गिरे। इसलिए हमको महात्मा जी के उन उपदेशों को सामने रखकर साहस से कार्य करना है, पर कार्य करना है। महात्मा जी कर्मयोगी थे और उन्होंने हमें कर्म का पाठ पढ़ाया। एक क्षण भी किसी को खराब करना नहीं है। अपने जीवन का प्रतिक्षण, जो कि सबसे बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के लिए है, उसको सत्कार्य में लगाना। और हमें यह याद रखना है कि महात्मा जी जब युद्ध भी करते थे, जब वह सत्याग्रह करते थे, तब भी वह शांति को बनाने में अपनी सारी शक्ति लगाते थे। और कहीं भी जरा अशांति होती थी तब आंदोलन को स्थगित कर देते थे। अब जबकि हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमें यह भूलना नहीं है।

रचनात्मक कार्य पर, महात्मा जी घरेलू धंधों पर, ग्रामोद्योगों को और सब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे और वह चाहते थे कि और भी कुछ न हो तो मनुष्य कम से कम एक घंटे तो चरखा तब भी चला ले, परंतु कभी कोई अकर्मण्य होकर न रहे। इसलिए आज जब भारत में हमको बहुत सी चीज़ों का उत्पादन करना है, जबकि हर एक तरह की कमी है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को इस बात का ध्यान रखना है कि महात्मा जी के उपदेश को सामने रखते हुए वह अपने प्रशिक्षण का सदुपयोग करे और कुछ न कुछ उत्पादन करने में वह अपने समय को लगावे। ऐसे समय में हमको याद रखना है कि महात्मा जी का भारतीयता पर अटल विश्वास था, महात्मा जी का धर्म था भारतीय संस्कृति।

वो सब मिश्रित हो गए और आज हजारों बरस का हमारा पुराना संस्कृति का जो अमृत का प्रवाह हो रहा है उसका पवित्र जलपान हर एक को

0: करना है और सबको यह समझना है कि प्राचीन काल से लेकर वैदिक समय से लेकर जब राम और कृष्ण, गौतम बुद्ध और अशोक, हर्षवर्धन, पाणिनि, अकबर, ये सब भारत के भारतीयता के सूत्रों के बनाने वाले और उनमें गूंथे हुए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर रामचंद्र से घनश्याम सिंह की बातचीत एलोवेरा की खेती।
1: किसान भाई देखा, अगर हम अपन परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ ऐसा खेती करें जैसे कि हमें आर्थिक मजबूती प्राप्त हो, तो हम समझते हैं खेती किसानी का मौज बढ़त है। किसान भाई इसमें हमारे बहुत से ऐसा किसान भाई हैं जो कि एक औषधि पौधा हो एलोवेरा, एक खेती करके खूब लाभ से लेते हैं। जे किसान भाई एक बारे में नहीं जाना थे, उनके बदले एक नई चीज़ है, तो आवा हम एकरे जानकार जे कि एक पूरी जानकारी रखत बा, वही से हम आपके जानकारी दिलवाई कि अगर आप एलोवेरा की खेती करे चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें, कैसे भूमि का चुनाव करें, कौन कौन प्रजाति लें। अगर एक समुचित जानकारी जानकार से मिला था तो खेती किसानी का आनंद बढ़ जाता। आज हम यही के बारे में जानकारी देव खातिर अपने स्टूडियो में प्रोफेसर रामचंद्र भैया के आमंत्रित के लिए ही। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जौन हमारे किसान भाइन के सुझाव देते हैं कि अच्छा लाभ ले बदे एलोवेरा का खेती करें, ये एक औषधि पौधा हो, तो पहले तो आप बतावें कि ऐसे कितना लाभ उनके हो सकत है और ये पौध कौने कौने काम में आवत है।
2: देखिए, एलोवेरा एक औषधि पौधा है जिसमें विभिन्न प्रकार के जलवायु सहन करने की क्षमता होती है
1: जी।
2: इसकी खेती सभी प्रकार की ऋतुओं में की जा सकती है। इसका औषधीय गुण असाध्य रोगों एवं बीमारियों को ठीक कर सकता है। ये विशेष रूप से जैसे सर दर्द है, बदन दर्द, घुटने का दर्द, चोट, मोच, जोड़ों का दर्द, मधुमेह, बवासीर, चर्म रोग इत्यादि के काम में लिया जाता है।
1: अच्छा, मैंने कि एक तरह से कि ये बहुत बढ़िया औषधि पौधा हो कि इसे इतनी ज़्यादा जो बीमारी हो दिक्कत है मैंने कल इसे लाभ होता है। तो प्रोफेसर साहब ये बताओ कि का ये कहीं भी एक खेती कैल जा सकता है या एक कोनो विशेष जलवायु होता है?
2: देखिए, इसके लिए कोई विशेष प्रकार की जलवायु नहीं है
1: जी।
2: ये हर प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है और कम वर्षा वाले क्षेत्र से लेकर के अधिक वर्षा वाले जहाँ पर 1200 से लेकर 1500 मीटर मिलीमीटर वर्षा होती है
1: जी,
2: वहाँ भी उगाया जा सकता है।
1: अच्छा, मैंने कि जलवायु कोनो भी रहे ये पौधा बढ़िया सुखमय हुई और ऐसे बढ़िया उपज भी हो जाए। अच्छा, ये जमीन यानी भूमि का चुनाव करत के कोने बात का ध्यान दें?
2: एलोवेरा के लिए जो बहुत अच्छी भूमियाँ होती हैं वो हैं दोमट मटियार भूमि है, बलुई दोमट है, और इसमें सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो बलुई दोमट और दोमट मिट्टी होती है
1: जी।
2: इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर ऊसर भूमि है तब भी की जा सकती है, लेकिन उस भूमि तक इसकी खेती जाती है जिसमें इसका पीएच मान, भूमि की पीएच मान जो है 8.5 मान तक होता है, तो उसमें भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।
1: अच्छा, ये जो पीएच मान का आप बात करते हैं
2: जी,
1: तो ये पीएच मान का है कि किसान भाई कैसे समझे?
2: देखिए, पीएच मान का ये मतलब होता है कि जैसे कम अम्लता होती है, अधिक अम्लता होती है, जिस भूमि में ज़्यादा अम्लता होती है उसमें भी ये खेती की जा सकती
1: जी
2: है। और जिसमें पीएच मान मतलब अम्लता की क्षमता है 8.5 तक होती है, जिसको सबसे ज़्यादा कहा जाता है, तो उसमें भी ये खेती की जा सकती है।
1: नहीं तो जैसे किसान कैसे जाने कि ये एक पीएच हमारे ये जो है कि एलोवेरा की खेती लायक हो कि नहीं, का वो अपने से कोनो ऐसा तरीका हो जो समझ सकें या ले जाके माटी की जांच कराओ?
2: हाँ, इसके लिए माटी की जांच कराओ ज़्यादा अच्छा है
1: जी।
2: वैसे भी अगर किसान

0: अपने जो भी जिले की भूमि सुधार की लाइब्रेरी है उसमें जाकर के इसकी जांच करा जा सकता है।
1: अच्छा, यानी समुचित जानकारी वो लेके तब एक शुरुआत करें। अच्छा, मान लें कि भूमि का चुनाव भी किसान भाई बढ़िया से कह लेते हैं तो एक तैयारी कैसे करें?
0: देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जिस भी जमीन में इनको लगाना है
1: जी,
0: तो उसमें ये कम से कम एक बार मिट्टी पलटते हैं हल से
1: जी,
0: और दो तीन बार इसमें देसी हल या ट्रैक्टर से जो उनको सुविधा उपलब्ध है उससे करके पाटा चला देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और भूमि को बिल्कुल समतल और भुरभुरी बना लेना चाहिए।
1: तो ये तरह से वो जो है कि भूमि का तैयारी करें। अच्छा, देखें जैसे कि अपने जीवन बदे खान पान बढ़िया होना चाहिए, खेती किसानी में भी हो कि खाद उर्वरक का समुचित व्यवस्था होना चाहिए, तो का ही जैसे हमार अनाज वाली खेती हो वही स्तर से खाद उर्वरक के हम व्यवस्था करे को होता है या अगर कोनो विशेष व्यवस्था होता है?
0: देखिए, इसमें सबसे पहले तो क्योंकि एलोवेरा एक औषधि पौधा है
1: जी,
0: तो इसमें ये कहा जाता है कि यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो इसके औषधीय गुण में प्रभाव पड़ता है। खास करके जो औषधि पौधे हों से इसमें रासायनिक गुण नहीं होना चाहिए
1: जी,
0: तो इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि कम से कम गोबर की सड़ी खाद जो इसमें खूब सड़ी हुई हो और उसमें सूंघने पर के अमोनिया से गंध आए तो उस तरह की गोबर खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर पहली जुताई के समय ही मिला करके मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई करके समतल बना लें।
1: अच्छा, तो ये किसान भाई एक चीज़ का ध्यान रखा कि एमन रासायनिक खाद के अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो एकर औषधीय प्रभाव में कमी आ जाए, तो आप लोग रासायनिक खाद से बचें। और दूसर की जैसे प्रोफेसर साहब बताऊना कि पकल गोबर का खाद हो जैसे सूंघे से अमोनिया गंध का मतलब प्रोफेसर साहब की जैसे उस सूंघे तो एकदम बिल्कुल जैसे सड़ा अंडा का या जहाँ टॉयलेट वगैरह जहाँ बाथरूम वगैरह होते जहाँ पेशाब वगैरह कहल जाते हैं जैसे गंध आवत है वो तरह के गंध उमन अगर आवे लगे तो समझे कि ये खाद जो है खेत में डाले लायक हो गए बिल्कुल। अच्छा, खाद के बाद जैसे कि हम इमन बात करें कि पौधरोपण का, लेकिन पौधरोपण तो तब जबकि पौध हमें प्राप्त हो तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एकर पौध कहाँ से प्राप्त हुई, एकर का कुछ उन्नतशील प्रजाति भी होता है या ये सामान्य रूप से एक का पौधा होता है?
0: हाँ, इसके लिए एक विशेष प्रजाति है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्राप्त की जा सकती है और इसकी प्रजाति है RC 111271
1: जी,
0: RC 111269 और RC 111273 और RC 111280।
1: अच्छा,
0: ये प्रजातियां अभी तक विकसित की गई हैं जिनको अच्छा, सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।
1: अच्छा, मतलब ये प्रजाति में से प्रजाति का चुनाव किसान भाई कोनो भी कह लें। अच्छा, ये चूंकि एक नई चीज है हमारे कुछ जो कि बिल्कुल किसान भाई के बारे में नहीं जानत बटे उनके बदे और जो खेती करत बा उनके लिए तो कोनो ऐसा बात नहीं हो, तो ये पौध का उपलब्धता उनके कहाँ से हुई?
0: ये उपलब्धता हम पहले आपसे बता रहे हैं कि या तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रयोगशाला से नहीं मंगाया जा सकता है, तो हमारे यहाँ कृषि वानिकी नर्सरी है वहाँ से भी ले सकते हैं और ज़्यादातर हमारा जो भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं वहाँ के कृषि वानिकी प्रयोगशाला से ले सकते हैं।
1: अच्छा, कई नर्सरी अपने खेत में नहीं तैयार कर सकते?
0: हाँ, ये भी कर सकते हैं
1: जी,
0: लेकिन पहले उनको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो मदर पौधे जो होते हैं उनको लाना पड़ेगा और उसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे एक पौधा 3-4 पौधों का जन्म देता है तो वो पौधे वो ले आ करके और साइड से जितने पौधे निकलते हैं उनको विभिन्न स्थानों पर लगाते रहें धीरे धीरे करके, तो उस तरह से उनकी नर्सरी तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई के देना है कि अगर वो एलोवेरा के वैज्ञानिक खेती के लिए तैयार हुए और जैसे ना आप बताना है कि प्रजाति से लेकर के भूमि से लेकर जलवायु से लेकर सब कुछ व्यवस्थित करके अगर खेती करते हैं तो उनके बढ़िया लाभ हुई, आपकी जानकारी देव खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एलोवेरा की वैज्ञानिक खेती, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रामचंद्र से घनश्याम सिंह की बातचीत। इसके साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर SPS चौहान की वार्ता, रीढ़ का टेढ़ापन, कारण, लक्षण और उपचार।
1: रीढ़धारी जीव का मुख्य संयोजक अंग है। ये शरीर के सभी अंगों को एक साथ रखने, सहारा देने, सुरक्षित एवं संतुलित रखने का काम करता है। रीढ़ के आधार पर जंतु जगत को रीढ़धारी एवं गैर रीढ़धारी में बांटा गया है। रीढ़ का विकास मानव भ्रूण में सबसे पहले नोटोकार्ड के रूप में होता है। उसके आसपास के ऊतकों से ये पूर्ण रूप से बनती है। अन्य अंग इसके चारों तरफ विकसित होते हैं। मनुष्य अन्य जीवों के विपरीत दो पैरों पर खड़ा होकर चलता है, इसलिए रीढ़ की संरचना और जटिल हो जाती है तथा इसके टेढ़ापन की विकृति होने की स्थिति बढ़ जाती है। स्वाभाविक रूप से रीढ़ में चार प्राकृतिक झुकाव होते हैं, पेल्विक कर्व, लंबर लार्डोसिस, डार्सल काइफोसिस, सर्वाइकल लार्डोसिस एवं सबके ऊपर सिर को संतुलित रखने का काम होता है। इसमें चारों तरफ झुकाव एक दूसरे को संतुलित रखते हुए गुरुत्वाकर्षण केंद्र को सीधा रखना होता है। मांसपेशियां हर तरह के कार्य को यह संतुलन बनाए रखती हैं और इन परिस्थितियों के बदलाव से विकृति पैदा हो जाती है। विकृति के मुख्य कारण हैं जन्मजात बनावट में कमी, जैसे हेमीवर्टिब्रा, ब्लॉक वर्टिब्रा, कंजनाइटल काइफोसिस, स्कोलियोसिस। दूसरा होता है इडियोपैथिक, जिसको कारण अज्ञात हैं। इडियोपैथिक काइफोसिस या स्कोलियोसिस बचपन में शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बाढ़ की उम्र के साथ बढ़ती रहती है। मांसपेशियों के संतुलन तथा अज्ञात कारणों से और अधिक बढ़ जाती है। तीसरी संक्रमण विकृति, ये संक्रमण के कारण होती है। इसमें सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन या TB का संक्रमण हो सकता है। इसमें रीढ़ रोड के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है और गलकर टेढ़ी हो जाती है। और विकृति का स्वरूप रीढ़ के किस हिस्से पर इन्फेक्शन है और कितना खिंचाव है, इस पर निर्भर करता है। चोट द्वारा भी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर विकृति पैदा किया जा सकता है। ट्यूमर रीढ़ के ट्यूमर और दूसरे स्थानों से आई हुई सेकेंडरीज रीढ़ की हड्डी को गलाकर कमजोर कर देती हैं, जिससे विकृति पैदा हो जाती है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर एवं क्षरण ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया में रीढ़ के जोड़ एवं हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और विकृति पैदा हो जाती है। वृद्धावस्था में सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस और सेनाइल काइफोसिस हो जाती है। मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से कुबड़ निकल आता है। इन विकृतियों की जांच रोगी के परीक्षण द्वारा प्रारंभ होती है। इससे शरीर के चारों तरफ झुकाकर तोड़कर मरोड़कर देखा जाता है और विकृति की नाप की जाती है। तत्पश्चात एक्सरे, CT स्कैन, MRI स्कैन द्वारा जाँच की जाती है। इसके द्वारा विकृति का ज्ञात करने के बाद कारण भी पता चल जाता है और उन कारणों की जांच पूरी करने के बाद उपचार किया जाता है। उपचार का उद्देश्य विकृति को ठीक करना तथा कारण का निवारण होता है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस और काइफोसिस का इलाज 13 से 15 वर्ष की उम्र में करना उचित होता है। इसे ब्रेस अथवा बेल्ट द्वारा किया जाता है। सुधार नहीं होने पर शल्य चिकित्सा की जाती है। पैदाइशी विकृत का इलाज 1 से 2 वर्ष की आयु में किया जाता है। इसमें शल्यक्रिया आवश्यक होती है। संक्रमण का इलाज दवाओं द्वारा किया जाता है। यदि दवाओं से संक्रमण ठीक नहीं होता है तब शल्यक्रिया की आवश्यकता पड़ सकती है। चोट की स्थिति में चोट के कारण उत्पन्न पैरालिसिस की अवस्था को देखते हुए ही इलाज किया जाता है। इसमें पैरालिसिस के ठीक होने की व्यवस्था नहीं रहती है।

0: लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधा करके जोड़ दिया जाता है, जिससे मरीज के रिहेबिलिटेशन में आराम रहता है। सेनाइल बीमारियों का इलाज पहले दवाइयों द्वारा किया जाता है, साथ में विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह दिया जाता है। यदि नहीं आराम होता है तो शल्यक्रिया की जाती है। उपचार के बाद लगातार व्यायाम एवं उचित पुनर्वास आवश्यक है।
1: रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, कारण, लक्षण और उपचार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर SPS चौहान की वार्ता। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण रूपरेखा, आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण रूपरेखा, आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सात बजे आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का 262वां भाग। फिल्मों से भजन सुनवाएंगे 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनेगा उमा डे का ख्याल गायन। 12:15 पर आपको सुनवाएंगे प्रेम जैन का गिटार वादन और 10:30 पर सुनेगा उस्ताद निशांत खां का सितार वादन। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर सुनेगा सात्विक मिश्रा के स्वर में भजन और गीत। शाम 7:45 पर कलाकार होंगे श्रीकांत वैश्य। वॉइस ऑफ प्रयागराज ये कार्यक्रम होगा 10:05 पर। आज का विषय होगा कैफे या लाइब्रेरी, कहाँ ज्यादा सहज प्रयागराज के युवा। आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश होगा 12:30 पर। 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा गृहलक्ष्मी। मैंने सुनेंगी रूपक नृत्य जीवन की लय का प्रतिबिंब। स्वर होंगे रितिका अवस्थी और कंचन पांडे के। विशेष अंक भजन क्लबिंग और जायका में बताएंगे कतीरे का शरबत बनाने की विधि। लोकगीत सुनाएंगे 2:30 पर। कलाकार होंगे राम सिंह पटेल और साथी, अनुराधा श्रीवास्तव और धीरज कुमार और साथी। हमारी दूसरी सभा शुरू होगी 5:00 नन्हे मुन्नू के कार्यक्रम नन्ही दुनिया से। बच्चे सुनेंगे महासागरों के बारे में जानकारी आओ जाने के अंतर्गत।

युवाणी कार्यक्रम होगा 5:15 पर। युवचन सुनेंगे चौधरी चरण सिंह पर केंद्रित प्रेरणा पुंज और खेल जगत। पंचायत घर कार्यक्रम 6:30 पर होगा। ग्रामीण भाई सुनेंगे निखिल तिवारी श्री दत्त की वार्ता, जाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और राम सिंह पटेल और साथियों के स्वर में लोकगीत। हमारा संस्कृत कार्यक्रम होगा 7:30 पर, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता संस्कृत व्याकरण से प्रयोजनानाम उपादेयता। गजलों पर केंद्रित कहकशा कार्यक्रम होगा 9:30 पर। 10:00 सुनिएगा कृष्णा मित्रा का लिखा नाटक लॉकर।

हम अपने श्रोताओं को एक बार और याद दिला दें, 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगे रूपक नृत्य जीवन की लय का प्रतिबिंब। स्वर होंगे ऋतिका अवस्थी और कंचन पांडे के। विशेष अंक भजन क्लबिंग और जायका में बताएंगे कतीरे का शरबत बनाने की विधि। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में 6:55 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप दिल्ली से

0: दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज आप सुनेंगे इसका 262वां भाग।

जांबवान, नलनील, सुग्रीव, विभीषण आदि के विदा हो जाने के बाद भी बालीपुत्र अंगद अयोध्या और श्रीराम की सेवा छोड़कर विदा होना नहीं चाहते थे, किंतु श्रीराम ने समझा बुझाकर अपने अनन्य प्रेम स्वरूप मणिमाला तथा सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर उन्हें विदा दी। भरत और शत्रुघ्न के साथ लक्ष्मण उन्हें विदा करने चले तो वियोग की इस घड़ी में अंगद बार बार मुड़कर इस प्रत्याशा से देखते हैं कि प्रभु कदाचित उनकी व्यथा समझ उन्हें अयोध्या में रहने की अनुमति दे दें। हनुमान ने सुग्रीव के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, मैं दसेक दिनों तक यहाँ प्रभु सेवा में रहूंगा, उसके बाद आकर आपके दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने पुण्य राशि हनुमान को अयोध्या में रह जाने की अनुमति दे दी। ढेर सारे उपहार देकर अत्यंत प्रेम से श्रीराम ने निषाद राज गुह को विदा किया। कहा, हे मित्र, तुम भरत के समान मेरे भाई हो, अयोध्या आते रहना, मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म का पालन करना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मों से भजन।

ये थी आशा भोसले की आवाज़। साहिर लुधियानवी के बोलों को शुरू में पिरोया था रवि ने। फिल्म का नाम था नीलकमल। अब आपको सुनवा रहे हैं केदारनाथ फिल्म से अमित त्रिवेदी का लिखा, उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, गीत रचना अमित भट्टाचार्य की।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 1.88 लाख टन अधिक है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर, पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

0: एक प्रगतिशील साधन है।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स, थाना बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को

0: पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की, कहा प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं उमा डे, राग है भटियार। तो आइए सुनते हैं राग भटियार में ख्याल गायन। विलंबित रचना झप ताल में निबद्ध है। बोल है रट तुहू तेरो नाम। और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है आज की रात पिया नहीं आए।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप राग भटियार में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थी उमा डे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिल कुमार साहा और सारंग पर थे नज़ीर अहमद। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम अपने श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि शास्त्रीय कार्यक्रमों के क्रम में 12:15 पर आप सुन सकते हैं प्रेम जैन का गिटार वादन, और रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद निशांत खां का सितार वादन।

अगर आप गीत और भजनों के शौकीन हैं तो सुनना न भूलिएगा 9:50 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज की प्रस्तुति होगी सात्विक मिश्रा के स्वर में भजन और गीत। और शाम 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रीयुत श्रीकांत वैश्य को। और अगर आप लोकगीतों के प्रेमी हैं तो 2:30 पर ट्यून करिएगा अपना रेडियो सेट, और आपके साथ होंगे राम सिंह पटेल और साथी, अनुराधा श्रीवास्तव और धीरज कुमार और साथी, और जुड़िएगा अपनी मिट्टी के रंग से।

हमारी श्रोता बहनें जो अपने दिन भर के काम निपटा करके दिन में थोड़ा सा खाली समय पाती हैं तो उस समय एंजॉय कर सकती हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम 1:15 पर, जिसमें आज सुनेंगी रूपक नृत्य जीवन की लय का प्रतिबिंब। स्वर होंगे रितिका अवस्थी और कंचन पांडे के, और इसमें आज का विशेष अंग होगा भजन क्लबिंग। और जायका में बात करेंगे कतीरे के शरबत बनाने की विधि के बारे में। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, सुनते रहिए विभिन्न टेस्ट के हमारे कार्यक्रम।

0: जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
2: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर

भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने

0: आया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वह वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार मुमालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरकी दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली

0: इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के बीजेपी सदर होंगे। इन तकरीरों के साथ जनाब नबीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वहां मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है दो दो दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिले सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूद पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अजां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरत हाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्विशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है जबकि त्विशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। कुछ ऐसी आवाजें आज सुबह आकाश से गूंज रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा श्रीवास्तव हाजिर हूँ लेकर नमस्कार प्रयागराज का एक नया अंक लेकर के। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक विचार के साथ। मानवता और प्रकृति कभी भी मित्र नहीं हो सकते। प्रकृति आपको सूखे में भूखा मारने की क्षमता रखती है, तो वहीं बारिश में डुबो भी सकती है, धूप में झुलसा सकती है और भूकंप, तूफान और बीमारियों से मृत्यु देने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगी। इसलिए एक ओर जहाँ प्रकृति के नज़ारे हमें सुकून और प्रसन्नता देते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे शत्रु भी बन जाते हैं, कारण हमारा प्रकृति के प्रति गलत और बिना विचारे किया गया कर्म, जैसे पेड़ों की कटाई, नदियों का दूहन, कार्बन उत्सर्जन करने वाले उपकरणों का प्रयोग और प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग, साथ ही जो वायु प्रदूषण हम करते हैं उसका भी असर सीधे प्रकृति से ही जुड़ा है। जिस तरह प्राकृतिक आपदाएं आजकल देखने को मिल रही हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हम इससे कैसे बचें। अब देखिए ना, कल रात ही अचानक मौसम ने करवट ली और शुरू हो गया आंधी, तूफान और बारिश। तो इसी बात पर आज के इस अंक में हम आपके लिए एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। जिलाधिकारी प्रयागराज अपने शहरवासियों की सुरक्षा के मद्देनज़र अपील कर रहे हैं कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित भी रहें, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज यानी 29 मई 2026 से 1 जून 2026 तक प्रातः 8:30 तक आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं, वज्रपात, आकाशीय बिजली, मेघ गर्जन, भारी वर्षा और ओलावृष्टि होने की संभावना है। और ये चेतावनी दी गई है कि 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो श्रोताओं, इस चेतावनी को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए सावधानियां बरतें। ऐसे में आप सुरक्षित रहें, इसके लिए यदि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और अगर निकलना ही पड़े तो रेनकोट, छाता इत्यादि ज़रूरी सामान ज़रूर अपने साथ रख लें। और अगर आप टू व्हीलर से हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, और अगर मौसम रास्ते में बिगड़ता है तो किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। तेज़ हवा चल रही हो तो कमज़ोर और कच्चे घरों और टीन शेड से दूर हो जाएं। पेड़, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर, होर्डिंग और निर्माणाधीन भवनों के पास बिल्कुल न खड़े हों। और अगर आप घर में हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि घर की खिड़कियां, दरवाजे और छत पर रखी ढीली वस्तुएं सुरक्षित कर लें। अगर वज्रपात या आकाशीय बिजली की स्थिति बन रही है तो खुद को बचाने के लिए खुले मैदान, खेत, छत या ऊंचे स्थानों पर बिल्कुल ना खड़े हों। पेड़ के नीचे शरण ना लें, क्योंकि पेड़

इस तेज हवा में गिर सकता है। मोबाइल फोन का सीमित प्रयोग करें, जरूरी हो तभी करें, और विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें। घर की धातु की जो वस्तुएं हैं उनसे दूरी बना के रखें। अगर आप खुले में ऐसे मौसम में फंस गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, दोनों पैर मिलाकर नीचे झुक जाइए और ज़मीन में सीधे ना लेटें। अगर किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं तो अपना काम तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्राथमिक उपचार की जरूरी सामान यानी फर्स्ट एड बॉक्स सुरक्षित रख लें। किसी भी विद्युत दुर्घटना की सूचना तत्काल विद्युत विभाग और प्रशासन को दे दें। अगर आपातकालीन स्थिति बन रही है तो जिला आपदा नियंत्रण कक्ष प्रयागराज का हेल्पलाइन नंबर इस समय जरूर नोट कर लें। वो नंबर है 0532-2641-577 और दूसरा नंबर है 0532-2641-578। जिलाधिकारी प्रयागराज ने अपील की है कि समस्त

अगर किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं तो अपना काम तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्राथमिक उपचार की जरूरी सामान यानी फर्स्ट एड बॉक्स सुरक्षित रख लें। किसी भी विद्युत दुर्घटना की सूचना तत्काल विद्युत विभाग और प्रशासन को दे दें। अगर आपातकालीन स्थिति बन रही है तो जिला आपदा नियंत्रण कक्ष प्रयागराज का हेल्पलाइन नंबर इस समय जरूर नोट कर लें। वो नंबर है 0532-2641-577 और दूसरा नंबर है 0532-2641-578। जिलाधिकारी प्रयागराज ने अपील की है कि समस्त जनपदवासी मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों को गंभीरता से लें, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचित करें क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। तो श्रोताओं, सुरक्षित रहें, खुद को भी और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें अपनी जागरूकता और अपनी सतर्कता से।

तो आप सुन रही हैं नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम, और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक खूबसूरत सा नगमा जिसकी फरमाइश हमारे एक श्रोता ने की है। तो गीत सुनने के बाद हम आपको जोड़ेंगे हमारे श्रोताओं से जिन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क साधा है।

श्रोताओं, फेसबुक के माध्यम से जिन श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की थी वो है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल ने। श्रोता, हमें उम्मीद है कि आपका पसंदीदा गीत हमने सुनवाया, आप खुश होंगे। और इसी के साथ इन्होंने एक संदेश दिया है कि आज पेट्रोल डीजल बचाओगे कल प्रकृति मुस्काएगी। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही उपयोगी संदेश आपने दिया है। और साथ ही इस मौसम को ध्यान में रखते हुए सतर्कता संदेश दे रहे हैं हमारे श्रोता सत्येंद्र चंसौलिया पंजौनिया से। आप कहते हैं कि भीषण गर्मी से अपना बचाव करें, विशेष आवश्यकता पर ही धूप में घर से बाहर निकलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। किशोर कुमार सनवाले कहते हैं सादर नमस्कार, हार्दिक बधाई। आपको भी नमस्कार किशोर जी। नीरा त्रिपाठी हमसे जुड़ती हैं और कहती हैं कि अगर कोई आपकी उम्मीद पर जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सा फलसफा आपने हमारे साथ शेयर किया है, थैंक यू मीरा जी। दुर्गेश नागनपुरा जो जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। नमस्कार नागनपुरी जी, आपका संदेश हमारे लिए है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर अनुभव को सिखाता है, हर अनुभव को सिखाता है, बड़ा सोचो बड़ा करो। सफलता विचार से शुरू होता है। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। असफलता भी सीखें। दूसरों के लिए वही करो जो तुम चाहते हो, यही सच्चा मानवतावादी है। बिल्कुल, और यही संदेश हमारा प्रकृति के लिए भी है कि अगर हम प्रकृति के लिए उसके हित का काम करेंगे तो निश्चित प्रकृति हमारे लिए बहुत ही सुखदायी, बहुत ही अनमोल है। लेकिन अगर हम उसके खिलाफ, उसके नुकसान करने वाले काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए कभी भी सुखदायी नहीं बनके दुश्मन बन जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। और आप सभी श्रोताओं का फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरा त्रिपाठी जी का एक और संदेश था कि स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तब वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वो प्रेरणा बन जाती है। तो बिल्कुल, खुद प्रेरणा बने, दूसरों से प्रेरणा लेते रहिए। किसी की छोटी बात भी कभी कभी आपके जीवन की बहुत बड़ी सफलता की कुंजी बन जाती है, इसलिए दूसरों से हमेशा प्रेरित रहें, निगेटिविटी से दूर रहें और पॉजिटिविटी को फैलाते रहें। इसी बात के साथ आज के नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम से मैं शिप्रा श्रीवास्तव लेती हूँ विदा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं बजरंगी भाईजान के आतिफ असलम के गायन गीत से। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म से श्रेया घोषाल और गणेश चंदन की आवाज़ों में सिद्धार्थ गरिमा और नासिर फराज की बोल है और शैल प्रीतेश और नितिन शंकर का संगीत है।

0: आप सुन रहे थे मसक अली गीत दिल्ली 6 फिल्म से। मोहित चौहान की आवाज़ थी, प्रसून जोशी के बोल और ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रोग्राम बस थोड़ी देर में।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
2: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। गर्मी ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन एवं नगर निगम ने राहत के कार्य तेज किए हैं। जिले में

0: जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण कार्य के लिए कुल 1383 परगणक और 223 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह अभियान 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वयं गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में आईटीसी मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं आईजीडी के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। CBSE 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सीमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर्षिता कपूर और श्रेया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। मेधावियों के सम्मान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में RTI फीस प्रतिपूर्ति घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर BDM पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रध्यानाध्यापिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जाँच में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के SDO दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। DIG अभिषेक सिंह, DM अरविंद कुमार चौहान और SSP अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया,
1: बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डिजाइनेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ।
0: सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में FIR दर्ज हुई। उन पर DIG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख व स्वर है रविन्द्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा। गंगा दशमी के ही दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित UP के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा स्नान को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल

0: तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें, पानी नियमित रूप से पिएं, सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें, ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुँचने वाले रोगियों के सभी वार्डो में एसी लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल की मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ORS के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ORS के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खान पान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में एक माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को गाढ़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार PPP मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गाँव तक बस सेवा शुरू की गई है जिसका शुभारंभ रोडवेज डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में।
1: सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश।

0: लोग रोमन में लिखते, वहाँ हम लोग टोकते हैं उनको कि भाई रोमन का आप इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि आप उर्दू रस्म अल खत में भी लिखिए, क्योंकि उर्दू रस्म अल खत में लिखेंगे तभी उसके लिए ज़्यादा बेहतर है।
1: मैम, जब रोमन की बात निकली है तो रोमन उर्दू के जो बढ़ते रुझान हैं, उससे जो असल उर्दू का रस्म अल खत है उसको क्या खतरात होंगे?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता कि खतरात तो इस तरह से हैं जितना हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी को मान लीजिए उर्दू लिखनी नहीं आती, कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसी खातून है कि जब तक वो रस्म अल-ख़त नहीं जानती हैं, अब वो सीख रही हैं अगर, तो वो रोमन के ज़रिए से चीज़ों को ना सिर्फ ये कि पढ़ सकती हैं, शेर पढ़ सकती हैं, गज़ल पढ़ सकती हैं, नज़्म पढ़ सकती हैं, लिख भी सकती हैं उसमें, लेकिन बहरहाल उनको ये एहतियात लाजिम है कि जब उन्हें ज़बान आ जाए और वो पढ़ना लिखना सीख जाएं, तो फिर वो उर्दू रस्म अल-ख़त का ही इस्तेमाल करें।
1: मैम, आप भी तालीमी इदारे से जुड़ी हुई हैं और क्योंकि सिखाती तो आप ही लोग हैं उर्दू लिखना पढ़ना जो भी है, लेकिन आगे एक वक्त पे जा करके लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिखने का काम कम हो जाता है, तो तालीमी इदारों की क्या जिम्मेदारी है, क्या तजावीज़ आप देंगी कि
0: जी
1: उर्दू रस्म खत जो है जो लोगों में वो रुझान हमेशा बना रहे हैं?
0: हाँ, बिल्कुल। देखिए देखिए, हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा, और आपको ये बताएं कि हम लोग जिस ज़माने में तालीम हासिल कर रहे थे, उस ज़माने में भी हमारे पेरेंट्स कोई, या हमारे साथ हमारे जो दोस्तों का सर्किल था उसमें हर तरह के लोग थे, पेरेंट्स में बहुत हाईली क्वालिफाइड भी थे और बिल्कुल घरेलू भी थे, सब तरह के पेरेंट्स थे। ऐसे में हम लोगों ने, सभी दोस्तों ने तालीम हासिल की, और उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा, तो हमारे यहाँ ये था कि हम लोगों को तीनों ज़बानें सिखाई जाती थी। हमारे जो मिलने जुलने वाले लोग थे, अगर वो हिंदी भाषी थे तो वो उर्दू भी पढ़ते थे, उनके हाथ की रसीदें हमारे पास मौजूद हैं आज भी। इसी तरह से हम लोगों ने उर्दू पढ़ी तो हम लोगों को हिंदी भी पढ़ाई गई, और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जगहों पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश कंपल्सरी पेपर्स भी होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम ये ना अपने दिमाग में तय कर लें, नई नस्ल से भी ख़ास तौर से, और अपने लोगों से भी, कि भाई देखिए, हम अगर कई ज़बानें सीखें तो हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत बेहतर है। हिंदी हमारी हिंदुस्तान की ज़बान है, हमारी हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रूह का रिश्ता है, दोनों सगी बहनों की तरह से हैं, तो अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी ज़रूर पढ़ें, उर्दू रस्म अल खत सीखें, हिंदी रस्म अल खत भी सीखें, और साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीखें, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल काम करना है हमें, तो जो आपने कहा, आपका सवाल बहुत बहुत अच्छा है, कि आज की ज़रूरत है ये सवाल, कि अगर हम ऑफिसेज में जा रहे हैं, हमें अपना कोई लेटर लिखना है या हमें अपनी कोई बात कहनी है, तो हमें वहाँ हिंदी और इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्यों नहीं अपना दिल इतना वसी करते हैं, हमें सारी ज़बानें सीखनी चाहिए। और देखिए, हम जिन स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि उन स्कूल कॉलेजेस में ये तीनों ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो जिस मीडियम में पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमको तो यही ज़बान सीखनी है, अगर हम दूसरी ज़बान सीखेंगे, अरे भाई हमारे बच्चे को ये नहीं आता, तो क्यों नहीं सिखाते हैं? तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, ये आप नई नस्ल को ब्लेम नहीं कर सकते,
1: नहीं, नहीं, तो
0: ये तो पेरेंट्स की, घर वालों की, सबकी, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को या स्टूडेंट्स को या बच्चों को तीन चार ज़बानें ज़रूर सिखाएं। और हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हम माँ के साथ सीख के आते हैं, हिंदी और इंग्लिश हमारे स्कूल कॉलेजेस हर जगह मौजूद है, हम वहाँ सीखते हैं, तो ये क्या शिकायत है भाई कि मतलब उर्दू सीख ली है तो और क्यों नहीं सीखेंगे?
1: मैम, तालीमी इदारों की बात हुई और भी जो शोबे हैं उनकी बात हुई, एक शोबा अदबी इदारे जो हैं या जो अदबी तंजीमें हैं, वहाँ पे काम रस्म अल-ख़त के लिए हमारे हिसाब से नहीं होता है, मुशायरे होते हैं, सेमिनार होते हैं, कोई इस तरीके से नहीं होता जिससे रस्म अल-ख़त को फ़रोग मिले, आप उनको क्या तजावीज़ देनी चाहेंगे कि उससे रस्म अल-ख़त को और फ़रोग मिले?
0: देखिए, उसके लिए तो फिर हमें बाकायदा एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर हम कोई भी अदबी प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो वहाँ हम कुछ ना कुछ 10 मिनट, 5 मिनट या आधा घंटा, जितना मुंतज़मीन जो हैं वो हमें वक्त दे सकें, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करें कि जिससे हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल उर्दू नहीं जानते, हम कहें कि भाई ठीक है, हमने आपको मुशायरे में बुलाया, आप हमारी ऑडियंस हैं, लेकिन जिस ज़बान को आप सुनने आए हैं, 10 मिनट आप उसके अल्फ़ाबेट्स तो सीखिए, और वहाँ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि उन्हें वो भाषा या वो ज़बान उन्हें जो है वो सिखाई जाए। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि देखिए मुशायरों को लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी भीड़ होती है,

0: कि अगर हम इस तरह से कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को इख्तलाफ हो, मे बी पॉसिबल कुछ लोग ना पसंद करें, लेकिन 100% तो ऐसा नहीं होगा ना। देखिए 90% लोग पढ़ने भी आएंगे और सीखने भी आएंगे। इसके लिए हमें जो मुंतजमीन है कहीं ना कहीं उनसे राबता
1: कुछ
0: करना
1: राइटिंग
0: होगा।
1: कंपटीशन टाइप
0: हाँ
1: के।
0: बिल्कुल। हम जैसे अभी देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, अभी एक प्रोग्राम हुआ और हम लोग भी हर साल करते हैं, पर्सनल बात नहीं करूं, सिर्फ प्रोग्राम के हवाले से बात करूं। यह है कि 2-3 प्रोग्राम ऐसे फिलहाल लखनऊ में ही हो रहे हैं कि जिसमें जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए तालिबे इल्म हैं, जो जिन्हें उर्दू नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, और बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन हैं वो, या कैफी आज़मी अकेडमी है, वहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं और जगहों पर भी होते हैं, तो उसमें ये रखा जाता है कि जो नए तालिबे इल्म हैं उनके लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिशन, जैसे अफसाना कॉम्पिटिशन, ठीक, या फिर जबान सिखाई गई कुछ महीने, फिर वहाँ उन्हें एक एग्ज़ाम कराया गया और फिर उस एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट उन्हें उस प्रोग्राम में दिया गया। और मैं आपको बताऊँ, ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के प्रोग्राम, वहाँ पे जबान सिखाने के लिए इस तरह कोशिश की जाती है और उसमें काफ़ी कामयाबी भी है। पर मैंने कहा ना कि हम जानना नहीं चाहते, हम लोग करना नहीं चाहते, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये मुशायरों में भी मुमकिन है। और देखिए, जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मादरी जबान से बेपनाह मोहब्बत कर, अच्छा, जो उर्दू के तलफ़ुज़ या उर्दू की मिठास की शीरीनी की वजह से उर्दू को बेपनाह चाहते हैं, उन शायकीन की एक बड़ी तादाद है। तो अगर हम इस तरह का कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो आप यकीन जानिए उमर साहब कि उसे कामयाबी मिलेगी। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस जानिब हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे इल्म में ऐसे 4-5 प्रोग्राम्स यहीं इस लखनऊ में हर 6 महीने पर होते हैं कि जिसमें ये कोशिश की जाती है कि नई जनरेशन इस ज़बान या इस अदब के लिए या इस रस्म अल-ख़त को सीखने के लिए खड़ी रहे, बल्कि दूसरों को भी सिखाए।
1: मैम, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, आखिरी सवाल छोटा सा ये है कि आवाम की क्या जिम्मेदारी इस रस्म अल-ख़त के मसले पर होनी चाहिए?
0: देखिए, आवाम की ज़िम्मेदारी रस्म अल-ख़त के सिलसिले में यह है कि वो न सिर्फ ये कि अपने बच्चों को सिखाए, और अगर किसी के यहाँ उर्दू तालीम का इंतज़ाम है तो पड़ोस में अगर वो देखता है कि भाई तालिबे इल्म कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उनमें भी दिलचस्पी पैदा करें। मसलन अगर मैं ही हूँ, मान लीजिए मेरे पड़ोस में अगर 5 बच्चे हैं तो ठीक है, अगर आपके पड़ोस में 10 बच्चे हैं तो उनमें से 10 लोग तो पढ़ रहे होंगे ऐसी जगह पर कि भाई ठीक है रस्म अल-ख़त सीख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ जगह अगर उसका इंतज़ाम नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उन बच्चों को बुलाएँ। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो कुछ किताबें अलिफ बेते जो 2-3 लैंग्वेजेस में जिसमें सिखाया जाता है, मसलन हिंदी से उर्दू सीखिए, इंग्लिश से उर्दू सीखिए, इस तरह की किताबें खरीद के हम बच्चों में तकसीम कर सकते हैं और ये दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं कि भाई आप आइए, जब हमारे पास वक्त है वो वक्त हम उन्हें दे दें और उनको उस वक्त में उर्दू सिखाएं।
1: तो सामाइन, ये थी मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा, जिन्होंने हमें उर्दू रस्म अल-ख़त के मौजू पर अहम और कारामद मालूमात फराहम की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी राय से मुतला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामाइन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दें इजाज़त, आदाब।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
6: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
5: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
6: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
7: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप जिस कलाकार को सुनेंगे वो है सात्विक मिश्रा। आइए इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं सूरदास की ये भक्ति रचना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या की बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।

0: मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज का विषय है कैफे या लाइब्रेरी, कहाँ ज्यादा सहज हैं प्रयागराज के युवा। स्वर है विनय श्रीवास्तव का।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में। मैं हूं विनय श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हमारे युवा कैफे या लाइब्रेरी कहाँ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। अगर हम सहजता की बात करें तो हम वहीं सहज महसूस करते हैं जहाँ हमें सुकून मिलता हो, और सुकून की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस वक्त क्या करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा लक्ष्य गहन एकाग्रता, पढ़ाई करना या किसी प्रोजेक्ट पर बिना किसी रुकावट के काम करना है तो लाइब्रेरी सबसे उपयुक्त जगह हो सकती है। और अगर हमारा लक्ष्य रिलैक्स करना, हल्की बातचीत करना या सुकून भरी वाइब के साथ काम करना है तो कैफे से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं हो

इस ट्रैक से पहले हम बात कर रहे थे कैफे में सुकून की, और अब बात करते हैं लाइब्रेरी की। अगर किसी काम को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है तो लाइब्रेरी का रुख करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। वहाँ का अनुशासन आपको जल्दी काम खत्म करने में मदद करेगा। और अगर सोचना और रिचार्ज होना आपकी प्राथमिकता है तो किसी शांत कैफे में जाना ज़्यादा

0: मुफीद रहता है। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का समय है और आज के युवा डिजिटल लाइब्रेरी को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। लेकिन पारंपरिक लाइब्रेरी यानी कि जो पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी और आज भी है, उसका अपना अलग महत्व है। वहाँ किताबों के बीच बैठकर उन्हें पढ़ने का आनंद अलग ही होता है। आज के युवा लाइब्रेरी या कैफ़े कहाँ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, हमने बात की ऐसे ही एक युवा से, सुनते हैं।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कि कैफ़े और लाइब्रेरी दोनों में यूथ हमारा जो है आज का, वो कहाँ सहज महसूस करता है। और हमारे साथ ऐसे ही एक युवा हमसे टकरा गए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है और ये क्या सोचते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए।
2: नमस्कार, मैं धीरज अग्रवाल शहर इलाहाबाद से ही हूँ, जो कि प्रयागराज हो चुका है।
1: और आप कर क्या रहे हैं आजकल धीरज जी?
2: मैं लोक नाट्य विधा नौटंकी से जुड़ा हुआ हूं और थिएटर करता हूं।
1: जैसे कि आप बता रहे हैं लोक नाट्य नौटंकी से जुड़े हैं, आज भी आप देखते हैं बहुत से बच्चे जो हैं लाइब्रेरी की ओर जाते हैं, बहुत से कैफेटेरिया में जाते हैं, तो क्या आपको उनको देख कर लगता है कि कहाँ सहज है, अगर पढ़ाई की दृष्टिकोण से देखें तो, या फिर अगर हम एक व्यवहारिक ज्ञान की भी बात करें तो?
2: मैं जो देख रहा हूँ आजकल कि एक तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है जो ओल्ड लाइब्रेरीज हुआ करती थी, जहाँ पे किताबों का खजाना है, जहाँ पे हमें ढूंढ की किताबें एक तो मिल जाती हैं बड़ी सर्वसुलभता से और बहुत सारा ज्ञान का भंडार मिल जाता है। और दूसरा है कि आजकल जो नया ट्रेंड में है कि कैफेटेरियाज में लोग टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ के एटमोसफियर को लेकर के, और कूल एक जो चल रहा है ट्रेंड वो है, लेकिन वो भी अभी हमारे शहर में उतना ट्रेंड ही नहीं है। और इन सब चीज़ के बीच में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से भी और हमारे लिए भी अगर हम चाहें तो जो डिजिटल लाइब्रेरी वाला जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब पढ़ाई के पर्पज़ से भी और वहाँ पे तैयारी के हिसाब से भी, कि आसपास में आपको आपके जैसे लोग तैयारी करने वाले मिल जाते हैं, वो एक पूल क्रिएट हो जाता है और ज़्यादातर टाइम आपको दोनों सुविधाएँ, जैसे कहते हैं कॉम्बो हो गया, कि वहाँ पर कैफ़े का भी है, जैसे कि भाई कह लीजिए कि एसी होता है 24 घंटे आपकी अवेलेबिलिटी है बुक्स की, है ना, और साथ के लोग मिल जाते हैं और बुक्स भी डिजिटल है, तो आपको ना इशू करानी है ना उसको जमा करने का खर्चा है, और आपका जो एक कहते नहीं है कि आजकल का इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंडली सिस्टम हो गया, तो वो चीज़ें बड़ी ही अच्छी हैं। मैं तो कहूँगा कि अपने आप को उसे डिजिटल लाइब्रेरी वाले फॉर्मेट में कूल पाते हैं। और हाँ, अगर सोशल गैदरिंग की बात आती है तब फिर हम कैफे का रुख कर सकते हैं, जहाँ पे कि हम नए नए लोगों से मिलते हैं, है ना, आसपास के एटमॉस्फेयर, वहाँ पे हम अपनी कुछ भी चीज़ें रिक्रिएट कर सकते हैं, केवल पढ़ाई पे फोकस नहीं होता है। साथ में जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले भी लोग आजकल कोलैब कर लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे यूनिक हो सकती हैं। और ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो बुक लवर्स हैं, जिनको बुक वॉर्म कहा जाता है, उनके लिए फिर ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज का अगर वहाँ पे फुटफॉल बढ़े तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और तीनों जो आपने बताया कि ट्रेडिशनल जो हमारी लाइब्रेरी हुआ करती है, आज भी है और एक समय उसका तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, और डिजिटल लाइब्रेरी समय के साथ जो बदलाव आया है, और कैफेटेरिया भी, अगर हम कॉफ़ी हाउस की बात करें, जो कॉफ़ी हाउस जहाँ से एक साहित्यकारों का, एक से एक प्रतिष्ठित लोगों का जुड़ाव हुआ करता था, एक महफिल जमा करती थी और वहाँ से न जाने कितनी कहानियाँ, कितनी बातें निकल कर आती थी जो कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज हो जाया करती थी। तो तीनों का अपना अपना महत्व है और हमें खुद से ये चयन करना है कि हम किस में सहज महसूस करते हैं।
2: हमारे दोस्तों के लिए बताना चाहूँगा कि भाई, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो इंडिया में चालू हुए, उसमें कैफेज का बहुत योगदान रहा, क्योंकि वहाँ पे जो बेंगलोर वगैरह में यही होता था कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स के लोग या मुंबई जैसी सिटीज में, वहाँ पे लोग मिलते थे, कोलैब करते थे और एक जैसे लोग मिलके वहाँ पे स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई। वहाँ से हमें आज जो हम लोग घर बैठे सुविधाएं यूज कर रहे हैं और नए नए इनोवेशंस देख रहे हैं मार्केटिंग में और चीज़ों में, अनअकैडमी वगैरह जैसी जो आजकल एप्स हैं या सुविधाएँ हैं, वो कैफेज का ही उसमें योगदान रहा है। लोगों ने बैठ के वहाँ पे अपनी जानकारी को साझा किया, एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के जैसे लोग वहाँ टकराए।
1: बिल्कुल, कैफे की अगर हम बात करें तो बहुत से नए आयाम वहाँ पर खुलते हैं और नए नए लोगों से संपर्क होता है।
0: वैसे जब हम बात करते हैं किसी कैफे की तो सहज ही मन में एक इमेज हमारे सामने बन जाती है, शांत एकांत वातावरण, हल्की लाइट और धीमा संगीत, साथ ही कुछ अपने काम में मशगूल लोग तो कुछ आपस

गपशप करते, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते लोग, और लाइब्रेरी की जो इमेज हमारे मन में उभरती है, तो हम पुरानी पारंपरिक लाइब्रेरी की बात करें तो ढेर सारी किताबें, अखबार और उन सब के बीच किताबों में सिर झुकाए लोग, साथ ही कुछ नोट्स बनाते विद्यार्थी। और वैसे आज डिजिटल लाइब्रेरी का क्रेज़ है और आज के युवा डिजिटल लाइब्रेरी की ओर ज़्यादा झुकाव रखते हैं। बातें अभी और होती रहेंगी, लेकिन पहले ये म्यूजिकल ब्रेक।

एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में। मैं हूं विनय श्रीवास्तव और हम बात कर रहे हैं कि कैफे या लाइब्रेरी कहाँ ज़्यादा सहज प्रयागराज के युवा। वैसे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने का अपना अलग ही मज़ा है, वो किताबों की भीनी भीनी खुशबू के बीच पढ़ना उसकी बात ही अलग है। वैसे समय के साथ काफ़ी कुछ बदला है, समय बदला है उसी के साथ लाइब्रेरी का रूप यानी डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ शांति तो रहती है, आसपास के सब लोग एकाग्र होकर काम कर रहे होते हैं जिससे एक प्रोडक्टिव माहौल बनता है और आज के युवा का यही पसंदीदा जगह है। कैफे का सुकून अकेलेपन वाला नहीं होता बल्कि जीवंत होता है। बैकग्राउंड में हल्का संगीत और कॉफ़ी की खुशबू अलग माहौल क्रिएट करती है।

गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में। आज के युवा के लिए कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है या वो कहाँ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के युवा हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। लाइब्रेरी में आने वाला युवा एक लक्ष्य के साथ आता है। यहाँ आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए गंभीर हैं, जिनसे आप प्रेरित होते हैं और कैफे का माहौल अनौपचारिक होता है। यहाँ आप बिना किसी दबाव के लोगों से बात कर सकते हैं या अपने विचार साझा कर सकते हैं। वैसे आजकल के युवाओं के लिए को वर्किंग कैफ़े एक बड़ा आकर्षक बन गए हैं, जहाँ वो बैठकर अपना काम भी करते हैं और कॉफ़ी के साथ चर्चा भी करते हैं।

अगर आपको सृजनात्मक चर्चा करनी हो तो आप कैफे का रुख करें, और जब किसी विषय को गहराई से समझना हो तो लाइब्रेरी आपको वो सुकून देगी जो कैफे में मुश्किल है। वैसे मेरी राय तो यही है कि आप लाइब्रेरी में घंटों पढ़ने के बाद जब मूड फ्रेश करना चाहें तो फिर कैफे से बेहतर भला क्या हो सकता है। और अब अपने दोस्त विनय श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। आपको छोड़ जाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। विषय था कैफे या लाइब्रेरी कहाँ ज्यादा सहज प्रयागराज के युवा। स्वर था विनय श्रीवास्तव का, प्रस्तुति थी अभय कांतिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग, जिला

0: ला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
1: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
0: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
1: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
0: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, संदेश भेजने के लिए निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
1: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
1: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,

0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया।

0: अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।

0: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
1: धन्यवाद श्रीमान।
0: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
1: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
0: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
1: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
0: बेस्ट ऑफ लक।
2: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
3: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
2: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।

0: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
1: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालुबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
1: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली, आओ महाकाली।
1: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी।

0: प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। फिल्म संगीत एक ही कलाकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ संगीतकार ऐसे भी हुए जिनकी धुनें वक्त के साथ गहरी होती चली गई। ऐसे ही एक संवेदनशील और मधुर संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

25 अगस्त 1948 को जन्मे उत्तम सिंह का संगीत में सफर वायलिन के महीन तारों से शुरू हुआ था और बॉलीवुड की सबसे यादगार दोनों तक पहुंचा। उनके संगीत का एहसास दिल को छूकर यादों में उतर जाता है।

श्रोताओं, उत्तम सिंह की मेलोडी की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि वो दिल की भावनाओं को बहुत ही सादगी से संगीत में ढाल देते थे। लेकिन आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में बैकग्राउंड म्यूजिशियन के तौर पर काम किया था।

ये यश चोपड़ा और उत्तम सिंह की जोड़ी का कमाल था कि संगीत प्रेमियों को एक नया एहसास मिला, जिसकी बानगी आप सुन रहे हैं।

श्रोताओं, गदर का संगीत सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं हुआ बल्कि लोगों की फीलिंग्स का हिस्सा बन गया। उत्तम सिंह ने पंजाब की लोक धुनों और भारतीय मिट्टी की खुशबू को अपने संगीत में बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया। इस फिल्म के गानों ने उस दौर में अपार लोकप्रियता हासिल की, और वो गाना जिसमें माँ की ममता, इंतजार के कसक और बंटवारे के दर्द का एहसास है, जहां एक मां अपने चरखे के साथ साथ अपने दिल के टूटे हुए धागों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है।

बंटवारे का दर्द जैसे सुरों में उतर आया हो। रिश्तों की टूटन और इंसानी जज्बातों को उत्तम सिंह ने बहुत ही संवेदनशीलता से संगीतबद्ध किया। उनका मानना था कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की आवाज है। फिल्मफेयर अवार्ड जीतने से लेकर फिल्मफेयर और आईफा जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट होने वाले उत्तम सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि

श्रोताओं, 90 के दशक के आखिरी वर्षों में जब संगीत का रंग तेजी से बदल रहा था, तब शायद मेलोडी को जिंदा रखने में उत्तम सिंह ने पूरी तरबियत से अपना काम किया था। शायद यही वजह है कि उनके गाने सुनते ही एक अपनापन महसूस होता है। उन्होंने फिल्में जरूर कम की, लेकिन हर फिल्म में ऐसा संगीत दिया जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा। ऐसा लगता है जैसे वो धुने नहीं बनाते थे बल्कि एहसास करते थे। उनके संगीत में शास्त्रीयता भी थी, लोक संगीत की मिठास भी और आधुनिकता का संतुलन भी।

श्रोताओं, आज हमने बात की संगीतकार उत्तम सिंह की, जिनका संगीत हमें याद दिलाता है कि सच्ची मेलोडी कभी पुरानी नहीं होती, वो हर दौर में नई लगती है। उत्तम सिंह की बनाई धुनें आने वाले समय में भी ऐसे ही गुनगुनाई जाएंगी। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अपने दोस्त अतुल यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

फिल्म संगीत एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में आज हमने बातें की संगीतकार उत्तम सिंह के बारे में। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

100.3 FM by the studio clock. Morning ke baj chuke hain 11:30 and you have tuned your favorite youth program Hello Yuva with me, yani Sakshi Pandey. And dosto, aaj ke topics honge thode alag, thode personal aur shayad bahut zaruri bhi. To bataiye, aakhri baar aapne khud se ye kab kaha tha ki I am proud of myself? Kab aapne khud ko bina compare kiye, bina judge kiye, bas waise hi accept kiya tha jaise aap hain? क्योंकि आज की दुनिया में सबको इम्प्रेस करने की दौड़ में हम एक इंसान को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और वो इंसान है हम खुद. तो आज बात होगी सेल्फ लव एंड सेल्फ ग्रोथ की. क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, परफेक्ट फेस, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट करियर एंड परफेक्ट रिलेशनशिप्स. और इन्हें देखकर कई बार लगता है यार मेरी लाइफ इतनी सॉर्टेड क्यों नहीं है. लेकिन क्या सच आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की रील्स की किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं होती? हर स्माइलिंग फ़ोटो के पीछे कोई स्ट्रगल भी होता है, कोई इनसिक्योरिटी भी और कोई साइलेंट बैटल भी. लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी रियल लाइफ को किसी और की हाईलाइट लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट. तो डाउट मत करिए,

दोस्तों, कई यंग पीपल आज ये सोचते हैं, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझ में वो टैलेंट नहीं है, सब मुझसे आगे निकल गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन लाइफ कोई रेस नहीं है दोस्तों, कि आपको हर किसी से कंपटीशन करना है। जो सामने वाला कर रहा है वही आपको भी करना है, क्योंकि हर चीज़ की, हर किसी पर्सन के सक्सेस की टाइमिंग अलग होती है। किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ी देर से, लेकिन मिलती सबको है अगर वो खुद पर भरोसा करना ना

छोड़े। बट सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप खुद को परफेक्ट समझने लगे। सेल्फ लव का मतलब है अपनी कमियों के साथ भी खुद को एक्सेप्ट करना, खुद की रिस्पेक्ट करना और अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना, साथ ही खुद को रोज़ थोड़ा बेटर बनाना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम दूसरों की गलतियाँ जल्दी माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद की एक छोटी मिस्टेक के लिए खुद को कितने दिनों तक ब्लेम करते रहते हैं? ऐसा क्यों क्यों हम अपने आप को अंडरएस्टिमेट करने लगते हैं? जस्ट इमेजिन, अगर आपका कोई दोस्त फेल हो जाए तो आप उसे मोटिवेट करेंगे ना? तो फिर जब आप खुद फेल होते हैं या आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं जो आपने सोच के रखा होता है, तो खुद से इतनी नफरत क्यों, खुद को इतना कम क्यों समझना? कभी कभी खुद का दोस्त बनना भी ज़रूरी है दोस्तों। और सेल्फ ग्रोथ यानी खुद को इम्प्रूव करना, ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये छोटे छोटे स्टेप से शुरू होता है। तो क्यों ना हम आज ये सोच कर ना बैठें कि हमने पास्ट में क्या गलतियाँ की, हम पास्ट में क्या फ़ेल किए, बल्कि ये सोच के चल रहे हैं कि आज प्रेजेंट को इतना अच्छे से यूटिलाइज़ करना ताकि फ्यूचर में हमें फिर से पछताना ना पड़े और दूसरों से कंपेयर ना करना पड़े। थोड़ा पॉजिटिव सोचना, अपने गोल्स पर काम करना और सबसे ज़रूरी है टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना, ना बोलना सीखना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने लिए टाइम निकालना। बिकॉज ऑनेस्टली दोस्तों, अगर आप खुद के लिए नहीं रुकेंगे तो दुनिया आपको बस दौड़ाती रहेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको हर किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ना सोसाइटी को, ना रिलेटिव्स को, ना सोशल मीडिया फॉलोअर्स को, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपकी खुद के साथ होनी चाहिए। और जब आप खुद को चूज़ करना सीख जाते हैं ना, तब धीरे धीरे लाइफ खुद भी बदलने लगती है, कॉन्फिडेंस आता है, पीस आता है, और सबसे बड़ी बात, आप फेक लोगों और फेक एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि आप अपने पास्ट की गलतियों पर ना टिके रहकर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। तो उसी पर कहा गया है कि अतीत में की गई गलतियों पर रात भर जागकर पछताने से अच्छा है भविष्य में कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर सो जाया जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में। दोस्तों, आज की दुनिया में कॉम्पिटिशन बहुत है, हर कोई जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में हम कई बार खुद को ही खो देते हैं। कभी स्ट्रेस, कभी ओवरथिंकिंग, कभी कंपैरिजन और कभी लोग क्या कहेंगे वाला डर। लेकिन सोचिए, अगर आज कोई ऐसा इंसान हमारे बीच होता जो कॉन्फिडेंस, करेज और सेल्फ बिलीफ सिखाता, तो शायद ज़िंदगी थोड़ी आसान लगती। और एक ऐसे ही बहुत ही फेमस पर्सन है हमारे बीच में, जो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, वो आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में, एक ऐसे युवा सन्यासी जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि युवा सिर्फ उम्र से नहीं, सोच से बनता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, लेकिन आज भी उनके थॉट्स यूथ के लिए मोटिवेशन का पावर हाउस हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये पूरी लाइफ स्ट्रैटेजी है। आज हम जल्दी हार मान लेते हैं, एक एग्ज़ाम ख़राब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस सीधे डाउन, एक रिजेक्शन क्या मिला, हम खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। लेकिन विवेकानंद जी कहते थे, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, यानी स्ट्रांग बनो मेंटली भी और इमोशनली भी। दोस्तों, आज सोशल मीडिया की दुनिया में सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है। सोशल मीडिया पर स्माइल, स्टोरीज पर लग्जरी और रील्स पर हैप्पी लाइफ, लेकिन सच क्या है? क्या हर इंसान ऐसे खुश होगा? आपको क्या लगता है, क्या बिना स्ट्रगल के कोई लाइफ अच्छी हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं, वैसे हर इंसान किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। स्वामी विवेकानंद जी हमें कंपैरिजन नहीं, सेल्फ ग्रोथ सिखाते हैं। वो कहते थे, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पावर वही है, यानी सेल्फ बिलीफ। और ऑनेस्टली दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो शायद दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। तो अपने एप्टीट्यूड को पहचानिए, उस पर काम करिए, और यही आपकी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाएगा, आपको आपके पैशन को फॉलो करने में हेल्प करेगा।

दोस्तों आज का यूथ टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, डिजिटल है, लेकिन कई बार डायरेक्शन लेस हो जाता है। और यही जगह है जहां विवेकानंद जी के विचार गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे इंस्पिरेशन ही हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। हम जिनको पढ़ते हैं, जिनको सुनते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। एक बार इमेजिन कीजिए, एक युवा लड़का, सिंपल कपड़े लेकिन कॉन्फिडेंस इतना कि विदेश जाकर पूरी दुनिया को इंडियन कल्चर का पावर दिखा दे। 1893 में शिकागो में दिए गए उनके स्पीच ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उन्होंने शुरुआत की थी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में रिस्पेक्ट था, ह्यूमैनिटी थी, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस था। आज के यूथ को भी यही सीखने की ज़रूरत है। बोलना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते, वो प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात करते थे। उन्होंने कहा था, एक समय में एक काम करो और उसे पूरे दिल से

दोस्तों, स्वामी विवेकानंद सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते, वो प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात करते थे। उन्होंने कहा था, एक समय में एक काम करो और उसे पूरे दिल से करो। अब ऑनेस्टली बताइए, हम कितनी चीज़ें एक साथ करते हैं, फ़ोन भी, चैट्स भी, रील्स भी और पढ़ाई भी, और रिजल्ट क्या होता है? फोकस ज़ीरो। तो विवेकानंद जी हमें कंसंट्रेशन भी सिखाते हैं। अगर स्टूडेंट हैं, फोकस करो। अगर क्रिएटर हैं, कंसिस्टेंसी रखिए। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, डिसिप्लिन लाइए। सक्सेस शॉर्टकट से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से आती है। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात जो स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं वो है ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा था, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो, या फिर फैमिली के साथ हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ भी हम टाइम दे रहे होते हैं हमारे वर्चुअल वर्ल्ड के फ्रेंड्स को। तो कभी पेरेंट्स से बात करिए, किसी दोस्त की प्रॉब्लम सुनिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करिए। बिलीव मी, इनर हैप्पीनेस वहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आज स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच होते तो शायद वो यही कहते, डरो मत, खुद को पहचानो, अपनी पावर को समझो और अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से मेहनत करो। क्योंकि यूथ सिर्फ देश का फ्यूचर नहीं होता, यूथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं।

0: हूँ साक्षी पांडे, लेकर आई थी आज का स्पेशल यूथ सेगमेंट हेलो युवा। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई एनर्जी और नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड और हमेशा खुद पर विश्वास रखिए।
1: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एहसास की धूप छाओ में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित

0: बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and has said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
2: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jaishankar lauded the brave women and men serving under UN peacekeeping missions for their steadfast commitment to preserving global peace and security. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal engaged with over 50 business and industry leaders at the roundtable hosted by the Consulate General of India in New York in collaboration with the US-India Strategic Partnership Forum. In a social media post, Mr. Goyal said during the roundtable he highlighted India's strong growth story, reform-driven business environment and expanding opportunities for global investors under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He further discussed ways to deepen India-US trade, investment, innovation and supply chain partnerships for shared prosperity. Vice President C.P. Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to former Prime Minister

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रेम जैन का गिटार वादन आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत के एक और कार्यक्रम में उस्ताद निषाद खां का सितार वादन हम आपको सुनवाएंगे 10:30। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम होगा जिसमें आज महिलाएं सुनेंगी रूपक नृत्य जीवन की लय का प्रतिबिंब। लोकगीत कार्यक्रम 2:30 होगा, कलाकार होंगे राम सिंह पटेल और साथी, अनुराधा श्रीवास्तव और धीरज कुमार और साथी। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे नन्हे मुन्नों के कार्यक्रम नन्ही दुनिया से। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे निखिल तिवारी श्रीदत्त की वार्ता जाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसके अलावा ग्रामीण भाई आनंद लेंगे राम सिंह पटेल और साथियों के गाए लोकगीतों का। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा जिसमें आज हम सुनवाएंगे डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता संस्कृत व्याकरण से परियोजना नाम उपाधेयता। 7:45 सुगम संगीत कार्यक्रम होगा जिसमें श्रीकांत वैश्य के स्वर में गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। चित्रपट संगीत 8:00 और फिल्म संगीत 8:30 होगा। गजलों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम कहकशा 9:30 और 10:00 सुनिएगा नाटक लॉकर, आलेख कृष्णा मित्रा का होगा। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है। विशाल केसरवानी, पुत्र रामजी गुप्ता, उम्र 38 वर्ष, कद 6 फिट, रंग गोरा, चेहरा लंबा और कदकाठी से मजबूत हैं। ये 5 मार्च 2026 को पुराना कटरा चौराहा से लापता हो गए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 9956750457। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9956750457। अगली सूचना इस प्रकार है। शिखा सिंह, उम्र 35 वर्ष, कद 154 सेंटीमीटर के आसपास, रंग गेहुआ और शरीर सामान्य है। ये 13 अप्रैल 2026 को 11 बजे के आसपास ग्राम सिलोखरा, जनपद प्रयागराज से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। अजीत सिंह, ग्राम सिलोखरा, थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज। और गुमशुदा व्यक्ति के संदर्भ में ही जो इस वक्त की आखिरी सूचना है वो इस प्रकार है। निर्मला, पत्नी लक्ष्मण, उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट के आसपास, रंग गोरा, इकारा बदन, चेहरा गोल है। ये 10 मार्च 2026 को शाम 4 बजे 12 से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 9076587487। एक और फोन नंबर है 8810724292। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9076587487। और दूसरा नंबर है 8810724292। ये थी गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में सूचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेम जैन का राग मधमाद सारंग में गिटार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रेम जैन का रागमध मह सारंग में गिटार वादन। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार जी,
1: मैं सुरेंद्र पटेल बोल रहा हूँ ढाईसुर मलागवेला से।
0: जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना सुनवा दीजिए।
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: कोई भी गाना सुनवा दीजिए, सारे गाने पसंद हैं।
0: ठीक है, तो आपको रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का हम सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: जी, मैं मधु कुना जी पुलिस लाइन जहाज चौराहे से बात कर रही हूँ, प्रयागराज से।
0: जी मधु जी, कैसी हैं आप?
1: जी मैम, मैं ठीक हूँ।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: जैसी करनी वैसे भन्नी का,
0: कौन सा
1: बोएगा
0: गाना?
1: वही काटेगा।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनना है आपने।
1: जी मैम।
0: जरूर सुनवाएंगे। आपको किसी के नाम लेने हैं?
1: हाँ जी मैम, मैं अपने पति और अपने बच्चों का नाम लेना चाहती
0: जी
1: हूँ।
0: बताइए।
1: मेरे हस्बैंड का नाम है गोविंद कनौजिया, मेरे बेटी का नाम है कोमल कनौजिया, मेरे बेटे का नाम है हनी कनौजिया, मेरी बहन का नाम है बाला और उनके हस्बैंड का नाम है बच्चा कनौजिया। पुलिस लाइन प्रयागराज।
0: तो आप सभी ये कार्यक्रम सुनते हैं मधु जी?
1: जी मैम, बहुत शौक से रोज इंतजार रहता है कि कब मेरा खुद की मेरी रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई जाएगी।
0: चलिए ठीक है।
1: इंतजार रहता है।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: मैम,
0: तो अब आप सुनते रहिए कार्यक्रम और हमें फोन भी करिएगा। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, इस फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।
1: फिल्म का नाम, मेरा नाम अभिमन्यु
0: जी, जी
1: राम सेतु प्रयागराज से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी अभिमन्यु जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है आंखें
0: जी,
1: और गाने का बोल है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: लता जी की आवाज में ये गाना है।
1: जी जी, जी।
0: तो चलिए अभिमन्यु जी, आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गाना, लीजिए।

0: बता दीजिए।
1: मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आपका श्रोता सुरती बात कर रहा हूँ। मैडम जी
0: जी
1: कैसी है? आपने
0: अशोक
1: प्रयागराज
0: जी,
1: के टीम के सदस्य।
0: सब ठीक है अशोक जी? आप बताइए, बहुत दिनों के बाद आपने कॉल की।
1: काल तो करते रहते, लगता नहीं कभी कभार तो कहीं।
0: जी जी इतने फोन आते
1: जी
0: हैं।
1: जी मैडम, तो गाना सुनवा दीजिए। जाने मन पिक्चर का लता जी की आवाज।
0: जरूर।
1: आएगी आएगी ये वाला है, किसी
0: अच्छा
1: को
0: अच्छा
1: हमारी याद।
0: हाँ, ये देवानंद और हेमा मालिनी की फिल्म थी।
1: जी
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का जाने मन फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।
2: आएगी

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: कुतली कुंडा प्रतापगढ़ से मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, आज आपने कविता नहीं पढ़ी?
1: जी मैम नहीं पढ़ी, ऐसी जगह पे है मैम, पढ़ नहीं सकते मैम।
0: है? अच्छा अच्छा,
1: दूसरी जगह फरमाइश कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, कहीं बाहर गए हुए हैं?
1: जी जी मैम।
0: चलिए बताइए, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।
0: जी, गाने के क्या बोल है?
1: इसके गाने के बोले ओ है

0: अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया।

0: है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants. Underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty, a bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said the order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under-trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. An India-bound oil tanker, Nissos Keros, has successfully crossed the Strait of Hormuz and is en route to Visakhapatnam with an expected arrival on the 3rd of next month. The Marshall Islands flagged vessel departed from Sharjah on the 21st of this month and was tracked in the northern Arabian Sea off India's west coast this morning. Iran's news agency reported that the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy had facilitated the passage of 23 commercial vessels through the strait in 24 hours amid ongoing tensions over proposed transit fees by Tehran. Iran has proposed regulating maritime traffic via a new authority, while the United Nations maintains that imposing transit fees in international waters is illegal. The United States has called for free navigation through the strategic waterway. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot has accepted the resignation of Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru today and dissolved the Council of Ministers with immediate effect. However, he has been asked to continue in office as caretaker Chief Minister until alternative arrangements are made, asking him not to take any executive decisions during this period. Siddaramaiah had submitted his resignation letter at the Lok Bhavan yesterday. In Uttar Pradesh, 6 workers were killed after an under-construction bridge collapsed during a late-night storm in Hamirpur. The bridge, which stretches from Morakandar to Kandaur village, was being built over the Betwa River. The incident took place last night at around 2 a.m. when some workers were standing under a hydro machine amid rain. Rescue operations by NDRF and SDRF are underway. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal engaged with over 50 business and industry leaders at the round table hosted by the Consulate General of India in New York in collaboration with the US-India Strategic Partnership Forum. In a social media post,

0: Mr. Goyal said that during the round table, he highlighted India's strong growth story, reform-driven business environment and expanding opportunities for global investors under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He further discussed ways to deepen India-US trade, investment, innovation and supply chain partnerships for shared prosperity. The India Meteorological Department, IMD, has predicted below normal rainfall over the country during the southwest monsoon season between June and September. Briefing the media on the second stage long-range forecast for monsoon season 2026 in New Delhi today, Secretary of the Ministry of Earth Sciences, Dr. M. Ravichandran, said the southwest monsoon seasonal rainfall over the country is likely to be 90% of the long period on average, with a model error of plus minus 4%. He informed that during the season, rainfall is most likely to be normal over northeast India and below normal over central, southern peninsula and northwest India. He said El Nino conditions are very likely to develop during the monsoon season. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mohapatra, said the average rainfall of the country during the month of June is most likely to be below normal.
1: We are expecting that weak El Nino condition will develop in the month of June itself, and in July and August, weak to moderate El Nino condition will prevail, and September, moderate to strong. Then towards end of September, it may be strong. Otherwise, the most part of the monsoon, it will go as weak to moderate El Nino conditions. But post-monsoon season, we'll have the strong El Nino conditions.
0: Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note in afternoon trade today. The Sensex lost 69 points to 75,799, while the Nifty 50 dipped 54 points to 23,854 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
3: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
2: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो रोज़ा कौमी ज़रई इजलास की इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर गजाई जखीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के गजाई तहफ़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तगज़िए से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
2: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम देही के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI सिलेबस अफरादी कुव्वत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में AI तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाक़े CBSE सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा 12वीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए।

0: साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि उनकी सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुल्हाए अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेर तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बहक हो गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और गांव के लोग राहत और रसानी के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेर तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेर तामीर पुल के हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। और रियासत के कई जिला में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली, जौनपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर जिला में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्ज हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: भले ही तेज है, मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन अपनों की बातें हो तो हर पल में नरम है ना?
1: बिल्कुल, मुस्कानों की मिठास और दिलों का प्यार लेकर हम फिर हाजिर हैं आपका साथ लेकर। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष गृह लक्ष्मी कार्यक्रम। मैं हूं मंदाकिनी तिवारी
0: और मैं हूं शारदा सिंह।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सभी का दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले पलों में होंगी ढेर सारी प्रेरणादायक बातें, हल्की फुल्की मुस्कान और कुछ खास प्रस्तुतियाँ। तो मंदाकिनी, क्यों ना आज अपने कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ जब शुरू करें तो क्यों ना शुरू करें एक खूबसूरत गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा गाना।

0: शारदा जी, बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाया आपने हम सभी को। तो आज हम बात करेंगे शारदा जी एक ऐसे मुद्दे की जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन कई लोगों की सफलता की राह में बड़ी रुकावट बन जाता है, और इस समस्या का नाम है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग यानी ऐसी अदृश्य बाधाएं जो किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता और मेहनत के बावजूद आगे बढ़ने से रोकती है। ये समस्या खासकर महिलाओं के साथ अधिक देखी जाती है, लेकिन कई बार जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति के कारण भी लोग इसका सामना करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। सोचिए, जब किसी व्यक्ति के पास प्रतिभा, शिक्षा और मेहनत सब कुछ हो, फिर भी उसे ऊंचे पद तक पहुंचने का मौका ना मिले, तो ये कितना ही निराशाजनक होता है ना?
0: बिल्कुल।
1: कई बार समाज की पुरानी सोच और भेदभाव और रूढ़िवादिता ये लोगों की प्रतिभा में दीवार बना देती है ना मंदाकिनी?
0: बिल्कुल।
1: उदाहरण के लिए कई कंपनियों में

0: महिलाओं को मेहनत तो बराबर की करनी पड़ती है, लेकिन वो उनको वो जगह नहीं मिलती है,
1: बिल्कुल वो पद नहीं
0: वो
1: मिलता है,
0: पद नहीं मिलता,
1: वो उनको सैलरी वो नहीं मिल पाती है। तो कारण क्या है ऐसा, कि महिलाओं के साथ ही ऐसा क्या होता है, या समाज का कोई ऐसा वर्ग है जो इससे छूता हुआ है? तो लोगों की सोच होती है कि महिलाएं परिवार और काम दोनों को सही से संभाल नहीं
0: मतलब
1: पाएंगी,
0: दोनों चीजों को अच्छी तरह से नहीं संभाल
1: सकती। तो ये जो मानसिकता है ना, यही मानसिकता की तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसे ग्लास सीलिंग कहते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है शारदा जी, महिलाएं आज विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, व्यापार, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। बस जरूरत है समान अवसर देने की और लोगों की सोच बदलने की।
0: बहुत सारी ग्लास सीलिंग, बहुत कुछ ये खास तौर से देखा जाए तो महिलाओं के साथ ही कुछ ज़्यादा ही होता है। हमें ये समझना होगा कि किसी की क्षमता का फैसला उसका लिंग, जाति या आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और प्रतिभा करती है ना?
1: बिल्कुल।
0: अगर समाज से ये अदृश्य बाधाएं हट जाए तो हर व्यक्ति खुलकर अपने सपनों को पूरा कर सकता है।
1: और यहाँ बात हम महिलाओं के कार्यक्रम की जो कि कर रहे हैं, तो महिलाओं को हम केंद्र में रखते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के ही साथ ऐसा होता है। ये आप किसी भी वर्ग या उम्र के किसी भी व्यक्ति को आप देखिए, चाहे वो बुजुर्ग हों या वो युवा पीढ़ी हों या वो बच्चे ही क्यों ना हों, अगर एक अनजाना शक या डर उनके दिमाग में बैठा है, वो भी ग्लास सीलिंग का ही काम कर रहा है। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कहने का मतलब है कि आपकी मेहनत में रुकावट डाल रही हैं, आप कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच में चले जाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम होगा, ये सारी चीज़ें आपकी बाधाएँ कहलाती हैं।
0: कहीं ना कहीं ये मंदाकिनी जी, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है हमारी समाज की कुरीतियों से।
1: बिल्कुल, है ना? तो सच है
0: कि क्योंकि एक जो सामाजिक नियम बना है कि परिवार है, घर है, बेटी है, बेटा है, तो एक तो पक्षपातिता, ये कहीं ना कहीं हर एक प्रतिभाशाली लड़की के साथ कभी कभी कहीं ना कहीं देखा जाता है, क्योंकि अब तो बहुत कम हो गया है ये चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को इस चीज़ की सामना करना ही पड़ता है।
1: तो भाई आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का हम समान अवसर दें और समान मौका मिले। ठीक है, तो अपनी बातचीत के बाद चलिए अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत फिर से सुनवाते हैं।
0: चले।

0: तो श्रोताओं, इस गीत के बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनवाते हैं आपको एक रूपक जिसका शीर्षक है नृत्य जीवन की लय का प्रतिबिंब। स्वर हैं कंचन पांडे और रितिका अवस्थी की, प्रस्तुति है अभय कांत तिवारी की।
1: दूर कहीं से उठती हवाओं की ठंडी सरसराहट मन को तरंगित कर दे, चिड़ियों की चहक बूंदों की टिप टिप कानों में मधुर धुन सी घोल दे, तो एहसास होता है मानो प्रकृति भी एक लय पर थिरक सी रही हो।
2: प्रकृति का आह्लाद रोम रोम पुलकित कर देता है और तब उपजता है नृत्य। नृत्यम जीवनस्य सारः, अर्थात नृत्य जीवन का सार तत्व है।
1: नृत्य केवल शारीरिक गति नहीं बल्कि मानसिक आनंद और आत्मा की प्रफुल्लता का साधन माना गया है। नृत्यम योगः नृत्यम भक्तिः चित्तम प्रसन्नम भुवनम प्रसन्नः। नृत्य ही योग है और भक्ति है। जब नृत्य से चित्त प्रसन्न होता है तो पूरा संसार प्रसन्न लगता है।
2: भारतीय नृत्य परंपरा

हजारों वर्ष पुरानी है और हिंदू संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि सृष्टि की सर्जना शिव पार्वती के नृत्य की मधुरता से मानी जाती है। इसकी पुष्टि भारतीय शैव आगम और तांत्रिक परंपराओं से होती है। पार्वती का लास्य नृत्य सृजन, कोमलता और ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं शिव का तांडव ब्रह्मांड की गति का प्रतीक माना जाता है। तांडव और लास्य के मिलन से ही सृष्टि का संतुलन माना जाता है।

शिव और पार्वती का दिव्य नृत्य ब्रह्मांड की लय, संगीत और जीवन की अनंत गति को दर्शाते हुए जीवन की लय को ही प्रतिबिंबित करता है। भारतीय कला परंपरा में नृत्य केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति और सांस्कृतिक निरंतरता का जीवंत रूप है।

0: नृत्य ही जीवन है। इस भाव को अपने विचारों में व्यक्त करती कथक नृत्यांगना समृद्धि तिवारी।
1: यह सफर तब शुरू हुआ जब मैं महज तीसरी कक्षा में थी। वो बचपन की ना समझी का दौर था, लेकिन जब घुंघरुओं की झनकार कानों में पड़ी तो ऐसा लगा मानो जैसे आत्मा को अपनी भाषा मिल गई हो। और वहां से शुरू हुआ ये सिलसिला और आगे बढ़ता ही गया। गुरुओं के आशीर्वाद ने मुझे न सिर्फ एक नर्तकी बनाया बल्कि कला को जीना सिखाया। आज इस मंच से मैं एक बात बहुत साफ दिल से कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कला को, डांस को मनोरंजन का जरिया मानते हैं। लोग सोचते हैं कि यह दिल बहलाने या एंटरटेनमेंट का एक साधन है, लेकिन मेरे लिए कथक कभी भी सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा। यह मेरे लिए मनोरंजन नहीं, मेरी आराधना है। यह मेरा एकांत है, मेरी प्रार्थना है और ईश्वर से जुड़ने का मेरा जरिया है। जब मैं घुंघरू बांधकर तत्कार करती हूँ, जब मैं स्टेज पर होती हूँ, तो मैं खुद को भूल जाती हूँ। कथक मेरे लिए मेरी साधना है।
2: भारत में शास्त्रीय नृत्य की अवधारणा 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भरत मुनि द्वारा लिखी गई नाट्यशास्त्र पर आधारित है। नाट्यशास्त्र नृत्य, संगीत, अभिनय और अभिव्यक्ति का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है।

0: तीनों स्वतंत्र कला होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं।
1: भारतीय कला परंपरा में मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिशी, मणिपुरी और सत्रिया। ये सभी नृत्य के अलग प्रकार अलग अलग राज्यों अलग संस्कृति को दिखाते हैं, परंतु मूलतः सभी मनुष्य के सुंदर और दिव्य पक्ष को उजागर करते हैं।
0: नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का माध्यम।

संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भारतीय संगीत की परिभाषा गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते कहा गया। गीत वाद्य वादन तथा नृत्य तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में माना गया है।

शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ लोक नृत्य जैसे गरबा, कालबेलिया, बिहू, घूमर हमारी विविध सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय परंपराओं को जीवित रखते हैं।

बंधनों और सीमाओं से परे है संगीत की हर विधा। नृत्य भी किसी एक का नहीं बल्कि सार्वभौमिक है। विदेशी धरती पर थिरकते नृत्य के कई ऐसे प्रकार हैं जिनकी थाप सर्वत्र महसूस की जा सकती है।

यूरोप में विकसित बैले डांस हो, लैटिन अमेरिका का सालसा हो, स्ट्रीट कल्चर से जुड़ा हिप हॉप डांस, अर्जेंटीना और उरुग्वे का टैंगो या फिर दक्षिण कोरिया का पॉप म्यूजिक के पॉप डांस, आखिर कौन इनसे अछूता है? और यही नृत्य का सम्मोहन है, सबको अपना लेना और सबका हो जाना।

संगीत की अति महत्वपूर्ण विधा है नृत्य। सीमाओं से परे न सिर्फ इसकी विभिन्न शैलियों को लोगों ने अपनाया, बल्कि इनको प्रचलित करने वाले लोगों पर खूब प्यार बरसाया।

0: dedican, pero el calor de tu mirada.
1: विदेशी भूमि पर नृत्य के महारथी रहे माइकल जैक्सन, मार्था ग्राहम, अन्ना पावलोवा, क्रिस ब्राउन, जेनिफर लोपेज, तो भारतीय भूमि पर विभिन्न शैलियों के पारंगत सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, ऐसे और कई नाम हैं जो देश विदेश तक आनंद, उत्साह और उल्लास का

0: भारतीय नृत्य को योग का एक रूप माना गया, जो ईश्वरीय आराधना और आत्मा के मिलन का एक माध्यम है। इसमें शारीरिक हाव-भाव, हस्त मुद्राएं और भाव भंगिमाएं अभिव्यक्ति के साथ साथ ऊर्जा से भर देती हैं। नृत्य शैली नर्तक को अपने भावों और विचारों को बिना बोले केवल मुद्रा और भाव भंगिमाओं के सहारे अनेकों पौराणिक कथाओं, समस्त नवरसों को व्यक्त करने में सहायक होते हैं।
1: रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई।

0: जीवन के मायने को नृत्य के जरिए समझाती कथक नृत्यांगना प्रिंसी।
1: जब हम डांस करते हैं तो डांस मतलब एक नृत्य जो हमारे है वो कला ही नहीं होती है, बल्कि जो हमारी भावनाएं होती है उनको व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका होता है। जब मैं डांस करती हूँ, स्टेज पे होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस करती हूँ। मैं सब कुछ, जितनी भी टेंशन होती है, तनाव रहता है, सब कुछ भूल जाती हूँ। या मैं अगर दुखी भी रहती हूँ तो, लेकिन अगर कहीं गाना बज गया है तो मेरा तुरंत भाव बाहर निकलने लगते हैं, मुद्राएं तुरंत बनने लगती हैं। तो उससे जो सुख की प्राप्ति होती है वो मुझे किसी चीज़ से नहीं प्राप्त होता है। और जब हम स्टेज पे जाते हैं परफॉर्म करने, तो मेरे अंदर जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो आया, मुझे इस नृत्य की वजह से ही आया है, क्योंकि हम दर्शकों को फेस करते हैं और जब दर्शकों को हमारा नृत्य पसंद आता है, इतनी तालियां बजाते हैं और बहुत मुस्कुराते हुए चेहरों से देखते हैं, तब लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सफल आई है। और मैं नृत्य प्रयास करती हूँ कि मैं डेली अपनी चीज़ों में सुधार लाऊँ। बहुत बहुत ज़्यादा प्रयास करती हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे सामने वाले को जो मुझे देख रहा है, मेरे नृत्य को देख रहा है, कोई कमियाँ ना निकाल पाएँ। मेरे लिए नृत्य एक साधना है। जब मैं नृत्य करती हूँ तब मेरा जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी नृत्य करती है। इसलिए मुझे जो नृत्य शांति और खुशी और एक अलग ही आत्मिक आनंद देता है।
0: हस्त मुद्राओं, नेत्रों की गति, सहजता से प्रेम, रोष, उत्साह, समर्पण जैसे अनेकों भावों को प्रकट कर देती है, जो दर्शक को भी बहुत आसानी से ग्राह्य होता है। वास्तव में नृत्य जीवन की लय को दर्शाता है। जैसे संगीत में ताल और सुर का महत्व होता है, वैसे ही जीवन में भी संतुलन और गति आवश्यक है।

नृत्य हमें सिखाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को खुशी और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए नृत्य केवल एक कला नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने वाली प्रेरणा है।

सार्थक करते हैं अब्दुल मतीन नियाज के ये अल्फाज। हम नफस ख्वाब जुनू की कोई ताबीर न दे, रक्स करना है तो फिर

0: अभी मैंने सुन रही थी रूपक नृत्य जीवन की लय का प्रतिबिंब, और स्वर था कंचन पांडे जी का और रीतिका अवस्थी जी की, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी जी का। तो मंदाकिनी, कितना सुंदर रूपक था, है ना?
1: बिल्कुल। और शारदा जी, देखिए ना, अभी जैसे गीत संगीत की और नृत्य की बात हो रही थी, तो आजकल जो भजन है उसका मैंने एक नया ट्रेंड देखा। जैसे क्या था कि पहले भजन केवल मंदिरों, सत्संगों या धार्मिक आयोजनों तक सीमित माने जाते थे, लेकिन आज का जो युवा है वो भक्ति को नए अंदाज में जी रहा है। जैसे बीट्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और पारंपरिक भजनों का एक अनोखा मिश्रण, उसको नाम दिया गया है भजन क्लबिंग। श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि राधे राधे, हरे कृष्ण, शिव तांडव जैसे भजन अब आधुनिक म्यूजिक बीट्स के साथ गूंजते हैं, तो माहौल भक्तिमय होने के साथ साथ ऊर्जावान भी बन रहा है।
0: बिल्कुल, भजन क्लबिंग केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और आधुनिकता का सुंदर मेल भी है। यह युवाओं को अपनी परंपराओं में से जोड़ती है और एक नया माध्यम बना जा रहा है ना? हालांकि यह भी जरूरी है कि भक्ति की गरिमा और भावनाओं का सम्मान बना रहे।
1: बिल्कुल। और जैसा कि बदलते समय के साथ भक्ति का स्वरूप भी बदल रहा है, लेकिन भाव आज भी वही है, मन की शांति, सकारात्मकता और ईश्वर से जुड़ाव।
0: भजन का मानसिक प्रभाव, भजन सुनने से मतलब उसका जो एक मन पे प्रभाव होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: मन
0: इस
1: शांत
0: तरीके
1: हो
0: से मन
1: जाता है।
0: शांत, तो एक नए संगीत, गीत संगीत का उसके अंदर समावेश होना, इससे भजन का जो है कि भजन सुनने से मन शांत होता है और एक नया ही आयाम उसका दिखता
1: बिल्कुल,
0: है ना मंदाकिनी
1: तनाव
0: जी?
1: कम होती है,
0: हाँ।
1: चिंता कम होती है और हमारी जो सोच है वो सकारात्मकता की ओर बढ़ती है।
0: पुराने और नए भजनों में भी कई तरह के अंतर देखे जाते हैं कि पहले भजन धीमे और पारंपरिक संगीत में होते थे और आज के भजनों में मॉडर्न बीट्स और फैशन को देखा जाता है, जिसमें
1: बिल्कुल
0: कि एक बहुत ही खूबसूरत समावेश या मेल जोल देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल। और जैसे फ्यूज़न आजकल के भजनों में देखे जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत ही लाउड है या ऐसा बहुत ही सुकून देने वाला, और आंखें बंद करके अगर आप सुनिए तो सचमुच वो ईश्वर के नज़दीक हमें पहुंचा दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ शारदा जी, तो वो सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया ने भजनों को एक नई पहचान दी है। हाँ, छोटे छोटे रील्स, शॉर्ट्स, इनके ज़रिए भजन तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, और स्कूल और युवाओं में भी भजन का आप देखिए तो क्रेज़ देखने को मिलता है। कई स्कूलों में मॉर्निंग प्रेयर और भजन प्रतियोगिताएं भी होती हैं। भाई, प्रेयर तो हम बचपन से देखिए, हम आप भी अपने स्कूलों में करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, ये एक क्लासिकल स्टैंडर्ड ये यहाँ पे दे रहा है, जिसके कारण से छोटे छोटे बच्चों में भी भजन, ईश्वर और हमारी जो भक्तिमय प्रणाली है उसका प्रचलन भी हो रहा है। साथ में उनको इसमें सोचने समझने के लिए जो एक नज़रिया है वो भी विकसित कराया जा रहा है। तो
0: बिल्कुल,
1: जिससे आप आधुनिकता के दौर में आगे तो बढ़िए, लेकिन जो हमारा इस मानव तन का, इस आत्मा का
0: हाँ
1: गंतव्य है वो है
0: हाँ
1: वहाँ तक।

0: उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते,
1: है ना? और देखा जाता है मंदाकिनी जी की, जैसे कि भजन कीर्तन ये सब देखा जाता है, एक हमारी सांस्कृतिक और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना?
0: बिल्कुल।
1: और ये हमारे अध्यात्म और नैतिकता का भी मूल्य है,
0: बिल्कुल,
1: जो कि हमारे जड़ों से हमें जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, इस तरह से जो आधुनिक म्यूजिक का एक होड़ है, एक जो गीत संगीत है, इसकी वजह से ये देखा जाता है कि किस तरीके से कहीं ये पिछड़ ना जाए।

कहीं ना कहीं इस चीज़ का कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। इस तरह से जो आधुनिक म्यूज़िक का एक होड़ है, एक जो गीत संगीत है, इसकी वजह से ये देखा जाता है कि किस तरीके से कहीं ये पिछड़ ना जाए।

0: शारदा जी, अगर देखिए त्योहारों का जो समय होता है उस समय जो भजन होते हैं वो देखिए ना, बिल्कुल हर गली हर मोहल्ले हर घर में सुनाई देते हैं। जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, रामनवमी हो, गणेश उत्सव हो, पूरा जो माहौल होता है वो भक्तिमय होता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और एक गीत संगीत, जैसे कि जो महिलाएं हैं उनका एक कितना ही इसमें उत्साह दिखता है कि नहीं, हमें घर में ऐसा कुछ होना चाहिए।
0: हाँ, कीर्तन करते हैं,
1: कीर्तन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, पूजन पाठ होना चाहिए, तो इसे एक वातावरण तो सुंदर बनता ही है। पर हमारी जो परंपराएं हैं, जो कीर्तन भजन का एक जो एक रीति रिवाज है, जिसका कि होना बहुत ही पॉजिटिविटी और सकारात्मकता का लाना होता है, तो ये कहीं ना कहीं कायम ही रहता है।
0: और शारदा जी, जैसा कि हमारा जो लाइव भजन संध्या होती है, जो कि आजकल युवाओं में ट्रेंड बनता जा रहा है, कि शाम को अब जो है बार डिस्को ये सब जो नकारात्मक चीजें थी उनसे हमारा युवा अलग होके अगर भजन संध्या ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और चलिए, ये तो बात हमने की भजन क्लबिंग की, और हमारा युवा पीढ़ी, युवा जो समुदाय है, इससे जुड़े और आगे बढ़े, ये हम सबकी कामना है और इच्छा भी है। और साथ में अब जो है श्रोताओं को एक गीत भी सुनवा दिया जाए।
1: चलिए।

0: तो आज हम अपने श्रोता बहनों के लिए लाए हैं जायका में कतीरे का शरबत। तो कतीरे का शरबत बनाने के लिए आप गोंद गोंद भाई दो तरह के होते हैं। एक गोंद होता है जिसका लड्डू बनाया जाता है और एक गोंद होता है जिससे कि फुला करके उसका शरबत बनाते हैं। इन दोनों की पहचान इस तरीके से है कि जो जिसके लड्डू बनाते हैं वो बहुत ही शीशे की तरह चमकता रहता है और जो जिसका शरबत बनाते हैं वे थोड़ा बूझा बूझा सा होता है। तो आधा चम्मच फूला हुआ गोंद ले लेते हैं। इसे करीब 7-8 घंटे के लिए फुलाते हैं। सब्जा ले लेते हैं, सब्जी क्यों जिसे कि चिया सीड्स भी कहा जाता है, ये ले लेते हैं 2 चम्मच। चीनी या मिश्री स्वाद अनुसार, और जो हमारी रेसिपी है उसके अनुसार 4 चम्मच पाउडर फॉर्म में। पानी 1 लीटर। एक बड़ा कटोरा लेंगे या डोंगा लें, इसमें 2 चम्मच फुला हुआ कतीरा या गोंद का जो कतीरा है वो डालेंगे। सब्जा डाल देंगे 2 चम्मच, उसको डालेंगे। अब चीनी का जो मिश्रण है वो डालेंगे। उसके बाद नींबू का रस, अच्छी तरीके से 1 नींबू का रस उसमें निचोड़ लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से घोलेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं और इसको घोल करके ग्लास में ठंडा ठंडा बर्फ के टुकड़े डाल करके सर्व करें।
1: क्या बात है शारदा जी, इतनी अच्छी रेसिपी हमारे श्रोताओं को आपने बताई और वो महसूस

0: कर रहे हैं ठंडक, जैसा कि आपने बताया, लेकिन
1: इसकी एक बहुत खास बात यह है कि आपको लू नहीं लगेगा।
0: बिल्कुल, गर्मी के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद है। तो बातचीत तो हमारी ऐसी होती ही रहेगी, लेकिन अब वक्त हो चला है अपने श्रोताओं से विदा लेने के लिए। और चलिए अब करते हैं हम नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: etc. And in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically, if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat, and Andhra Pradesh, and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh, and Tamil Nadu.
1: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 meters, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी

0: को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभाषा

0: भागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक

0: जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लोकगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 मई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के मानसिक रोग निदान और उपचार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 2970462 और 2423649 पर पूछ सकते हैं। हमारा STD कोड है 0532 यानी 0532। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें। फोन नंबर है 2970462 और 2423649। हमारा STD कोड है 0532। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी एक बार फिर से नोट कर लें 8004926250। सूचना समाप्त हुई।
5: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए राम सिंह पटेल और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

इसी के साथ आज का लोकगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं, हमारी ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

राज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम प्रस्तुत है, नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हमारे साथ है मंदाकिनी दीदी
1: और है साथ में शारदा दीदी। दीदी वैसे तो हमारे नन्हे साथियों की चल रही है गर्मी की छुट्टियाँ और इस समय तो घूमना फिरना और खेलना बस यही चल रहा होगा, है
0: हाँ
1: ना बच्चों?
0: हाँ हाँ भाई, गर्मी की छुट्टियाँ होती ही इतनी खास है ना। और आपने तो बिल्कुल ही सही कहा कि भाई बच्चों को घर में खेलना कूदना सब कितना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बोरियत भी लगने लगती है ना। और ऐसे में तो बच्चे बस खेलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, है ना दीदी?
1: दीदी खेल खेलने के लिए तो सबसे पहले ज़रूर है दोस्तों का। भाई जब हमारे दोस्त होंगे तभी तो हम खेलेंगे, तो दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी ज़रूरी है कि हमारे दोस्त कैसे हैं। भाई ये कहावत तो सुना गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत,
0: रंगत।
1: यानी आपकी जैसी संगत होगी वैसे ही आपका स्वभाव बनेगा।
0: और दीदी अनजाने में ही हम आसपास के लोगों की गुण आदतें व्यवहार अपना लेते हैं ना। वैसे सकारात्मकता हो और ऊर्जावान लोगों के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारे अंदर की उत्साह बढ़ती है, हमारे अंदर की ज्ञान वृद्धि होती है ना दीदी?
1: बिल्कुल। और इससे उल्टा अगर नकारात्मक लोग होते हैं तो उनके साथ रहने से निराशा तनाव टेंशन इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं। तो बच्चों हमारी जो बोलचाल है, हमारा जो पहनावा है, काम करने का तरीका है, दोस्तों और परिवार का इस पे बहुत ही असर पड़ता है। अच्छी संगत होती है तो हमें डिसिप्लिन सिखाती है, और बुरी होती है तो कहीं ना कहीं हमारा पतन होने
0: होता
1: लगता
0: है
1: है। तो
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: दीदी।
1: ऐसे फ्रेंड्स बनाइएगा जो आप जिनकी भाई आपके साथ बनती तो हो, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि वो वैल्यूएबल है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, उनके पास मैनर्स हैं कि नहीं, है ना, उनके वर्ड्स कैसे हैं, वो कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो खेलना कूदना मस्ती सब अपनी जगह है और संगत भी अपनी जगह है।
0: बिल्कुल दीदी। और दीदी एक हमारे एक जो कवि हैं बच्चों, कबीरदास जी, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि कबीर संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सोभिस कंचन होए। यानी कि संगत ऐसे लोगों की करनी चाहिए जिससे हमें अच्छी चीज़ सीखने मिले, जो कि अच्छे लोगों की संगत से ही अच्छी चीज़ सीखते हैं। जैसे कि लोहा को भी अगर पारस छू देता है तो वो स्वर्ण की तरह हो जाता है, वो स्वर्ण हो जाता है। वैसे ही अच्छे लोगों की संगति हर मनुष्य को अच्छा ही महान ही बनाता
1: क्या
0: है
1: बात
0: ना?
1: है। तो बच्चों देखिए शारदा दीदी ने कितनी प्यारी बातें की आपके साथ, है ना। तो जब भी अपने फ्रेंड्स बनाइए तो सोच समझ के बनाइए, है ना। जैसा कि अभी दीदी ने बताया दोहे के ज़रिए कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही आपके पास नॉलेज है, बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही मैनर है आपके पास, लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं बुरे लोगों का असर आप पे ज़रूर पड़ने लगेगा।
0: और बच्चों बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में सफल हों, अच्छे हों। और अभी तो आप नन्हे बच्चे हैं और आप अभी जो सीखेंगे, अभी जो जानेंगी, वो आपके साथ जीवन भर ही चलता ही रहेगा, है ना
1: बिल्कुल
0: मंदाकिनी दीदी?
1: बिल्कुल
0: तो
1: यही कारण
0: ऐसे
1: है।
0: ही एक नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी हमारी मित्र हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो चलिए सुनते हैं उनसे एक नन्हा सा छोटा सा कविता।
2: माय स्कूल नेम महर्षि विद्या मंदिर, सुनकर के बादल का शोर देखो नाच रहा

0: इतने सुंदर पंख फैला दिखने में लगते हैं प्यार, मोर हमारे घर भी आन, मुन्नी को तुम नाच दिखाना।
1: तो बच्चों अच्छा लगा ना, कितना प्यारा सा कविता था। तो
2: और
1: चलो
2: शारदा दीदी, छोटी सी बच्ची का नाम कितना प्यारा था,
1: सिद्धि तिवारी।
2: तो बच्चों सिद्धि तिवारी ने कितना प्यारा आपको कविता पाठ सुनाया। और चलिए, आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में जो है हम गीत संगीत भी करते हैं, तो अब वक्त हो चला है नन्हे मुन्नू को ये गीत।

0: है ना नन्हे साथियों।
1: छुट्टियां चल भी रही हैं तो मैंने कहा भाई तो बच्चों को थोड़ी मौज मस्ती करा दी जाए इसी बहाने, है ना।
0: बिल्कुल, वैसे बच्चों भाई मौज मस्ती

0: और खुशियाँ मनाना, तो ये तो होता ही है। रोज़ पार्क जाना, खेलना, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, खुश रहना, मस्ती करना, भाई ये तो छुट्टियों में चलती ही रहती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई और कुछ जानकारियाँ भी बहुत ही ज़रूरी
1: और
0: होती है।
1: देखिए ना शारदा दीदी, बच्चों को समर वेकेशंस में बहुत सारे हॉलीडेज होमवर्क मिलते हैं ना बच्चों, तो उनको भी आप करते रहते हैं, समय से कर लीजिए जिससे बाद में एंजॉय कीजिए।
0: बिल्कुल। और बच्चों, ऐसे ही कुछ आज हम आपके लिए कुछ रोचक जानकारियां आओ जाने में लेकर आए हैं, और वो है जानकारी महासागरों के बारे में। बच्चों, महासागर पृथ्वी के खारे पानी की एक विशाल और निरंतर भंडार है, जो ग्रह की सतह का लगभग 71% भाग कवर करते हैं। ये हमारे जलवायु को नियंत्रित करने और ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है बनाने और अरबों जीवों को आवास प्रदान करने के लिए पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: और आपको पता है कि दुनिया में कुल 5 महासागर हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। और आपको पता है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। ये सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, और इसमें एक सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं मेरियाना ट्रेंच, यानी मेरियाना गर्त। इसकी गहराई बहुत है, आपको पता है लगभग कितना है? लगभग है 11,033 मीटर। और इतनी गहराई पे बहुत सारे वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ फ्लोरा और फौना भी पाए जाते हैं, जिन्हें आप जीव जंतु पेड़ पौधे भी कहते हैं। और दूसरा क्या है शारदा दीदी?
0: दूसरा है अटलांटिक महासागर। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो एस अक्षर के आकार का है, और यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है।
1: और हमारा थर्ड नंबर पे आता है इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंद महासागर भी कहते हैं। और आपको पता है ये पहला महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया। अब वो देश कौन सा है? हमारा आपका अपना भारत देश, जिसे हम हिंद कहते हैं, इसलिए हिंद महासागर रखा गया है।
0: और तीसरा है दक्षिण महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर, इसे अंटार्कटिका सागर भी कहा जाता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरे हुए के कारण इसे अंटार्कटिका महासागर कहते हैं।
1: और हमारा लास्ट सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, जिसे आप कह सकते हैं कि ये कम गहरा भी है, और जो है नॉर्थ पोल पे आप जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा। जब आप अर्थ देखते हैं, अर्थ का मॉडल लेते हैं, तो आपको पता है ना साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, तो जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे ये आर्कटिक होता है और अंटार्कटिका आपका साउथ में होता है, तभी तो इसको दक्षिण महासागर कहा जाता है। किसको? अंटार्कटिका को। तो शारदा दीदी, बच्चों को हमने बेसिक जानकारियाँ दे दी ओशियन के बारे में। देखो तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि महासागर और सागर में क्या अंतर
0: क्या
1: होता
0: अंतर
1: है,
0: बिल्कुल,
1: ओशियन और सी में क्या डिफरेंस है, तो शारदा दीदी बताइए बच्चों को।
0: बच्चों, अक्सर लोग महासागर और समुद्र के को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही बुनियादी अंतर होता है। महासागर खुले पानी का एक विशाल और अथाह निकाय है, जबकि समुद्र आकार में छोटे, थोड़ा उनसे छोटे होते हैं, और ये आंशिक रूप या पूरी तरह से धरती या जमीन से घिरे हुए होते हैं।
1: और बताऊं बच्चों, कभी आपने कोरल रीफ देखा है? नहीं देखा है तो कभी भी वेकेशन पे जाइए या सी बीचेस पे जाइए, ऐसी जगह तो आपको कोरल रीफ देखने को मिलेंगे। और कोरल रीफ होते क्या है? बहुत सारे कलरफुल जो है प्लांट्स के साथ एक जीव होता है, जो बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बनाया होता है, तो वो देखने भी आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, वो समुद्र की सुंदरता को बहुत ही बढ़ाता है। तो चलिए, ऐसी रोचक जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, इस वादे के साथ कि आपसे मुलाकात फिर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।

अभी नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रही थी नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी

0: देर में युवाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी प्रयागराज से अब युवाणी कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी गुड इवनिंग. मेरा नाम है सुष्मिता श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं
1: मैं हूँ पूजा यादव
0: और हम दोनों लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम यानी कि युववाणी. तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना पूजा, जब हमसे ना कोई कहता है कि हमें एक रूटीन लाइफ देनी चाहिए या अपने काम को एक पर्टिकुलर तरीके से करना चाहिए, तो हमें लगता है कि जब हमारी फ्री विल है ही नहीं तो कहीं ना कहीं ये बोरिंग सी लाइफ नहीं हो जा रही कि सब काम हम एकदम ऐसे अंडर प्रेशर या स्ट्रेस में कर रहे हैं. तो मैं ऐसा क्या लगता है,
1: मुझे ऐसा लगता है सुष्मिता कि लाइफ के हर डिफरेंट फेज पे हमें ऐसा लगता है कि अब तो कुछ चेंज आना चाहिए, लेकिन वो चेंज जब आपके थॉट से आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब कोई सामने वाला आप पर फोर्स करता है या you know, आप पर अपनी बात हावी करने की कोशिश करता है तब प्रॉब्लम होती है सुष्मिता.
0: सही में. और इसी तरह पूजा, जब हम कहते हैं ना कि लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए यानी कि एक अनुशासन के साथ हमें काम करना चाहिए, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि क्या बोरिंग लाइफ होगी, इसमें तो कोई फन ही नहीं है, ये तो काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन से बंधी हुई लाइफ है.
1: लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, बल्कि ये आपको आपकी लाइफ में आपकी ड्रीम्स अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होता है.
0: बिल्कुल. और कहीं ना कहीं पूजा ऐसा भी होता है ना, हम उसको एक ब्रिज की तरह मान सकते हैं कि एक तरफ हम हैं और अगर हम उस डिसिप्लिन का रास्ता अपना लें तो हम उस तरफ पहुंच जाएंगे जहां हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, जहां हमारे जो गोल्स हमने सेट किए हमारे लिए वो एक्चुअल रियलिटी बन रहे हैं.
1: बिल्कुल. हर किसी के पास गोल्स होते हैं, किसी को सिंगर बनना है, किसी को UPSC क्लियर करना है, किसी को अपना नया स्टार्टअप शुरू करना है. लेकिन सवाल ये है कि डिफरेंस कहाँ पर आता है. डिफरेंस आता है हमारी रेगुलर हैबिट से.
0: बिल्कुल. अब सक्सेस की जो बात हम करते हैं तो अब सक्सेस के लिए कुछ तो हर बार सैक्रिफाइस नहीं, बट हाँ अपनी लाइफ को एक अच्छा ओरिएंटेशन देना. यानी कि अब दोस्तों जब हम सुबह अलार्म लगाए हैं कल सुबह उठने के लिए कि कल हम सुबह उठेंगे, एनर्जाइज रहेंगे और हम बहुत पढ़ाई करेंगे, या हम अगर किसी आप और करियर को परस्यू करें तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम रियाज करेंगे. लेकिन अगर आपने अलार्म लगाया और आपने उसको स्नूज बटन दबा के साइड में रख दिया, तब हम कहेंगे कि ये तो कोई तरीका नहीं है और कहीं ना कहीं आप ना डिरेल हो रहे हैं अपने पाथ से. और क्योंकि कोई भी गोल एफर्ट मांगता है हमारी, और जब डिसिप्लिन के साथ हम अपनी एफर्ट्स डालते हैं तो फिर रिजल्ट हमारे सामने होता है.
1: और सुष्मिता मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. इन केस अगर आपने सोचा है कि आपको अब हेल्थ पर अपने काम करना है, डेली वॉक पे जाना है या फिर जिम ज्वाइन करना है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है आपने सोच तो लिया, लेकिन जैसे तुमने कहा ना कि वो साइड में हम लगा दे रहे हैं, 6 बजे उठना है, ठीक है कल देख लेंगे, कल 6 बजे पक्का उठ

0: जाएंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये शुरू में होती है, लेकिन जब कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है तो आप उस चीज़ को इजीली फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंस समझ में आ रहा है सुष्मिता, एक मोटिवेशन और एक डिसिप्लिन।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि मोटिवेशन तो किसी दिन आपको हो सकता है और किसी दिन शायद आप वो सारी चीज़ें जो आपने मोटिवेटेड रहने के दौरान अपने डिसीजंस लिए हों उसको भूल जाएं,
0: सो
1: या
0: ट्रू,
1: फिर
0: सो ट्रू।
1: आप थोड़ा सा लेजी हो जाएं किसी दिन, थोड़ी सी आलस। लेकिन डिसिप्लिन है ना पूजा, उसका जो डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि आउट ऑफ डिसिप्लिन आप उठेंगे ही। आपको अगर बेड से उठना है और अपने काम पे जाना है तो
0: बिल्कुल
1: इररिस्पेक्टिव आप मोटिवेटेड फील कर रहे
0: बिल्कुल
1: हैं आप
0: बिल्कुल
1: नहीं कर रहे हैं, यू विल गेट अप एंड गेट द जॉब डन। और इसी बात पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं, थोड़ी सी अपने जो हमारी थॉट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, कि मान लीजिए दोस्तों दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों खासा इंटेलिजेंट हैं, बट हाँ एक जो है वो जब मोटिवेटेड फील होता है तभी काम करे और दूसरा काम करे और अपने जो मोटिवेशन है ना उससे अपने रिजल्ट को या अपने काम को ना बांधे। तो डिफरेंस खास दिखाई दे रहा है और साफ दिखाई दे रहा है पूजा, कि जो अपने काम को आउट ऑफ डिसिप्लिन बस करते जा रहा है वो कहीं ना कहीं लीड ले लेगा और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे।
0: क्योंकि हर चीज़ के लिए हैबिट तो बहुत ज़रूरी है सुष्मिता, फिर चाहे बात पढ़ाई की हो या हमारी डेली लाइफ की हो या ऐसा कोई गोल जो हमने बनाया है, जैसे 2026 में हमने ये करना है। तो अब सोचिए, अब मई बीतने वाला है सुष्मिता,
1: हाँ
0: तो क्या चीज़ आप अचीव कर पाए, क्या चीज़ नहीं कर पाए, कहाँ पे लैक आप हो गए। अगर डिसिप्लिन होता जैसा कि आपने सोचा था कि 2026 में ये सारी चीज़ें तो अचीव कर ही लेनी है, अगर वो हो गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाई है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। यहाँ पे ये बहुत सोचने वाली बात है सुष्मिता।
1: सोचने वाली बात है, खुद पर अपने और अपने डिसीजंस पर अपने काम पे बहुत एनालाइज करने वाली बात भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और पूजा जब हम बात करते हैं ना कि लाइफ के हम कोई भी बात करें और आज की लाइफ में सोशल मीडिया का हम जिक्र ना करें तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ा हिस्सा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: जब सोशल मीडिया के हमारे पास एक्सेस है और हर 10 से 15 मिनट पे हम फ़ोन एक बार चेक कर ही लेते हैं तो कहीं ना जो रील्स हैं या जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं हमारा जो अटेंशन स्पैन है उसको काफ़ी कम कर दिया है। काफ़ी इंस्टेंट रिजल्ट वाली जो एक दौड़ है जिसमें हम आ गए
0: बिल्कुल
1: हैं, तो अगर आपका सही कंट्रोल नहीं है खुद पे तो आपके जो विजन आप देख रहे हैं अपने लिए उसमें कहीं ना कहीं वो जो टाइम है वो ज़्यादा लग सकता है या फिर आप अपने जो गोल है उससे थोड़ा सा भटक भी सकते हैं।
0: बिल्कुल। और सुष्मिता, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे यूथ्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें सुन रहे हैं। एक चीज़ वापस लौट कर कभी नहीं आती, वो आपका टाइम है। तो जो तुमने ये सोशल मीडिया वाली बात कही, 5 मिनट में किस तरह से हमें हर चीज़ नई चाहिए, मतलब डोपामिन हमें किस तरह से रिलीज वो चीज़ें करता है, तो बहुत ज़रूरी है खुद पर कंट्रोल करना। कंट्रोल इन पॉजिटिव सेंस में हम डिसिप्लिन को ही लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन रहिए।
1: तो सिंपली दोस्तों डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ जो है उससे फन चला जाए या लाइफ आपकी बहुत मोनोटोनस सी हो जाए या बहुत बोरिंग हो जाए। उसका सिंपल मतलब यही है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम उसको प्रायोरिटी दें
0: बिल्कुल
1: और प्रायोरिटाइज करें कि क्या क्या लाइफ में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो टैलेंट हमें किसी चीज़ के लिए शुरुआती एक एनर्जी दे सकता है कि हम उस चीज़ को परस्यू करें, बट जो आगे लेके जाता है दैट इज़ ऑलवेज डिसिप्लिन।
0: एंड हमारे आर्मी में हम अब देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप डिसिप्लिन है या नहीं। अगर किसी कैडेट ने किसी भी तरह की कोई लेट किया, अगर जैसे अगर ये रूल बना है कि 8 बजे सबको इनरोल होना है, अगर किसी कैडेट ने 1 मिनट भी लेट किया तो उसे पनिश किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए, और ये तभी हो सकता है जब आपको पता है कि डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है।
1: तो बस इसी के साथ पूजा आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन सा गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो पूजा, हर साल हर बार हम अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं.
1: Definitely.
0: तो इस बार हम अपने दोस्तों के लिए लाए हैं काव्य पाठ. तो आइए दोस्तों, सुनते हैं काव्य पाठ आशीष कुमार पाल जी के.
2: मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है क्या तुमको याद है. यमुना के किनारे बैठा मेरा शांत मन पूछ रहा है खुद से खुद के बारे में. अब तक क्या कमाया, क्या बचाया, क्या बचा है तुम में गांव के प्रति संवेदना और आंखों में पानी, या इलाहाबाद ने छीन लिया तुमसे तुम्हारी जवानी. क्या याद है तुमको माँ के हाथ का निवाला, वो बिन चप्पल के जाते हुए पाठशाला, वो मक्के की रोटी, वो बथुआ का साग, वो जेठ की दोपहरी, वो आम का बाग. क्या याद है तुमको वो यारों की टोली, संग उनके गांव की होली, वो पुराना आम का पेड़ और उस पर बैठी कोयल की बोली. क्या याद है तुमको वो गांव का रामलीला, वो बारिश का पानी, वो मिट्टी का टीला, वो मिट्टी का गिरा हुआ कच्चा मकान, वो बुढ़िया दादी की छोटी सी दुकान. क्या याद है तुमको वो पूर्वी बयार, वो सावन की फुहार, वो होली, दिवाली, ईद, दशहरा, जो मिलके मनाते थे सारे तीज त्योहार. क्या याद है तुमको या इस शहर के चकाचौंध में कहीं खो गए. हाँ, याद भी कैसे होगा, यह दौर ही कुछ ऐसा है, अब तो रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण पैसा है. एक वक्त ऐसा भी आएगा ये शहर तुमको भुलाना चाहेगा. तुम घबराना मत, तुम पछताना मत, तुम तनिक से भी भयभीत हो जाना मत. तुम आना वापस अपने गांव, वह तुमको बेटा कहकर अपनाएगा, वह तुमको बेटा कहकर अपनाएगा. मेरी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है आखिर तुम कहाँ तक जाओगे. हो संभाला तो एक गरीब बाप के टपकती छप्पर के नीचे खुद को पाया,

0: जिसने मुझे जीवन का हर पाठ पढ़ाया, लड़खड़ाते कदम को सहारा देकर चलना सिखाया, दुनिया की सारी बुराइयों से लड़ना सिखाया। फिर उसने मुझसे पूछा कि बेटा, जीवन में आखिर तुम कहाँ तक जाओगे? होकर बड़ा जीवन में हर बड़े मुकाम हासिल करना, सपनों को पंख लगाकर आसमां की ऊंचाइयों तक जाना, पर वादा करो कि अपनों को कभी नहीं भुलाओगे, आखिर तुम कहाँ तक जाओगे? होगी हासिल जब दौलत शोहरत, ऊंचे घरों में आना जाना होगा, तब कहाँ पाओगे माँ की हाथ की रोटी, कुएं का पानी भी भुलाना होगा, पर वादा करो कि बचपन के यारों को कभी नहीं भुलाओगे, आखिर तुम कहाँ तक जाओगे? हाँ, मैं मानता हूँ कि बड़ी मुश्किल होगी तुम्हारे लिए सबको एक साथ लेकर चलना, कुछ का साथ निभाओगे तो बहुतों को भूल भी जाओगे। शहर की चकाचौंध तो तुमको बहुत पसंद आएगी, शहर की चकाचौंध तो तुमको बहुत पसंद आएगी, पर वादा करो कि गांव को अपने दिल में हरदम बसाओगे, आखिर तुम कहाँ तक जाओगे, आखिर तुम कहाँ तक जाओगे? मेरी तीसरी कविता, जिसका शीर्षक है मेरी बेटी मेरी जान है। सुना है बचपन से यही कि बेटी होती है धन पराई, पर मेरी बेटी तो घर में खुशियां है लेकर आई। चहक उठती हैं घर की दीवारें सुनकर उसकी किलकारियां, देख लेता हूँ जब उसका हंसता हुआ चेहरा, मैं भूल जाता हूँ अपनी सारी परेशानियां। मेरी बेटी कई बेटों के समान है, हाँ मेरी बेटी मेरी जान है, हाँ मेरी बेटी मेरी जान है। हाँ, वो अपने मम्मी पापा की जान है, मेरी मूछों की ताव और पगड़ी की शान है, करके मेहनत करेगी हासिल वो सब कुछ जो देखा है सपना मैंने। दो दो घर की जिम्मेदारियों की पहनकर ताज, ससुराल और मायका दोनों की वो अभिमान है, हाँ मेरी बेटी मेरी जान है। दुनिया मारती है मुझको ताने कि बेटी को कभी न बैठाया करो सिरहाने, दुनिया मारती है मुझको ताने कि बेटी को कभी न बैठाया करो सिरहाने, पर मुझको परवाह नहीं दुनिया जमाने से, मुझको तो सिर्फ मतलब है मेरी बिटिया के मुस्कुराने से। लफ्ज से निकली मेरी वो हर पहली जुबान है, हाँ मेरी बेटी मेरी जान है, हाँ मेरी बेटी मेरी जान है। होगी जब बड़ी बिटिया तो दुनिया की रिवाजों को निभाना पड़ेगा, शादी में उसकी नम आँखों से उसका मंडप भी सजाना पड़ेगा, टपकते आंसुओं से पाँव पखारूँ मैं उसका, टपकते आंसुओं से पाँव पखारूँ मैं उसका, लोग कहते हैं ये कन्यादान है, हाँ मेरी बेटी मेरी जान है, हाँ मेरी बेटी मेरी जान है।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना काव्य पाठ आशीष कुमार पाल की आवाज़ में।
2: और दोस्तों, इसी के साथ पूजा, जैसे हमने देखा कि कल अचानक से मौसम में कुछ बदलाव आए थे, तो इसी तरीके के जो मौसम में बदलाव आए आंधी तूफान के लिए,
1: बिल्कुल,
2: सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की है, जो है कि जब आंधी तूफान के दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि टिन की छत, होर्डिंग, क्षतिग्रस्त मकान, पेड़, बिजली के खंभे या मोबाइल टावर से आपको दूरी बनाए रखनी है, और घर के बाहर या छत पर रखी हुई भारी वस्तुएं उड़ सकती हैं, इसलिए उन्हें बांध कर रखें। यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाएं।
1: बिल्कुल, और कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ख्याल रखना है कि वो चीज़ हमें नहीं करनी है। पहला है, धारदार और नुकीली वस्तुओं को खुले में ना रखें। दूसरा, धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें और पेड़ की शरण में ना जाएं, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है तो पेड़ अक्सर गिर जाते हैं, तो इन बातों का ख्याल हमें रखना है।
2: और आकाशीय विद्युत के परिप्रेक्ष्य में सावधानियां कुछ इस प्रकार हैं कि पक्के मकान की शरण में चले जाएं, खिड़की दरवाजे और बरामदे से दूर रहें, पेड़, मोबाइल टावर, बिजली के खंभे, कच्चे मकान, तालाब, जलाशय से दूरी रखें।
1: बिल्कुल, ख़राब मौसम में बच्चों को बाहर ना खेलने दें, लोहे की खिड़की दरवाजे और हैंडपम्प आदि को ना छुए। यदि खुले खेत में फंस गए हैं तो दोनों कानों को बंद कर पैरों को सटा लें और घुटनों का टेक लगाकर बैठ जाएं।
2: और आकाशीय विद्युत के परिप्रेक्ष्य में सावधानियां कुछ इस प्रकार हैं कि आपको क्या नहीं करना है। पेड़ के नीचे ना खड़े हों, दीवार के सहारे टेक ना लगाएं और धातु

0: नल एवं फ्रिज को ना छुएं। धातु से बने छाते का प्रयोग ना करें और घरों में चलने वाली भारी विद्युत उपकरणों को प्लग से अलग रख दें। खुले वाहनों में सवारी ना करें और बचाव के लिए ज़मीन पर लेटें या तैराकी या नेकान ना करें।
1: बिल्कुल, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स भी जारी किया है जिसे डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत ज़रूरी है सुष्मिता कि हमें समय से पहले ये जानकारी मिल जाए कि मौसम ख़राब होने वाला है। जिस तरह से हम देख भी रहे थे कि हर फ़ोन में अलर्ट आ रहा था, तो इससे हमें ये पता चल रहा था कि मौसम शायद ख़राब हो सकता है, तो हम सावधानियां रख पा रहे थे। ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐप है दोस्तों जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे है बहु उपयोगी सचेत ऐप, दामिनी ऐप। इससे आप जितने भी इस तरह की
0: चेतावनियां हैं,
1: बिल्कुल, आप उससे जागरूक हो सकते हैं।
0: और पूजा, जैसा हमने कि देखा कि जब हमारे पास अलर्ट हम रिसीव करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम खुद तो अवेयर हों, अगर साथ में हम जिनके साथ रह रहे हैं अपने परिवार वाले, उनको भी उस सिचुएशन की जो सीरियसनेस है वो समझाएं, ताकि हम अपने साथ जिनके हम साथ रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित रख सकें। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने एडवाइजरी आपको बताई, आप इसका खास ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और अपनों का भी ध्यान रखेंगे।

0: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपको पसंद आया होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने शो में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं ताकि आप और एंगेज फील करें, तो आज हम खेल जगत लेकर आए हैं और मैं चाहूंगी कि सुष्मिता कोई खास जानकारी तुम श्रोताओं के साथ साझा करो।
1: बिल्कुल। तो पूजा, हमने देखा है ना कि अब हमारा जो देश है वो चाहे बात हो साइंस की, खेल की, हर चीज़ में हम धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि कुछ ऐसा जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अभी बहुत रीसेंट पिछले कुछ दिनों में जो भारत के अचीवमेंट्स रहे हैं, अगर उस पर नज़र डालें दोस्तों, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है हमारी देश की बेटी ने। जी हाँ दोस्तों, ईशा सिंह जी जो कि हैदराबाद की हैं, उन्होंने विमेन 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। और बता देते हैं कि ये हुआ है ISSF वर्ल्ड कप में जो कि म्यूनिक में खेला गया, और ये सब कुछ उन्होंने अचीव किया है सिर्फ 21 इयर्स की एज में। और विशाल केटी ने 400 मीटर को 44.98 सेकेंड में पूरा किया और वो भारत के ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने ये जो फीट है ये 45 सेकेंड्स के अंडर की, और इन्होंने मिल्खा सिंह जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
0: वाओ, सच अ बिग अचीवमेंट।
1: बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जब हम, जैसे हमने बात की डिसिप्लिन की, मेहनत की स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में ही, तो हमने देखा कि जो रिजल्ट्स ऐसे आते हैं इसके पीछे बहुत डिसिप्लिन और बहुत मेहनत है दोस्तों। तो आप भी अपने ड्रीम्स के पीछे लगे रहिए और अचीव करिए।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।

0: RBI कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: पूजा, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और हमने काफ़ी हैवी टॉपिक्स पे बात की, काफ़ी कुछ अपने देश के बारे में जाना और ड्रीम्स के बारे में जाना, डिसिप्लिन के बारे में जाना, तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले और जानकारी जो हम अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं उस पे जाने से पहले एक गीत सुन लिया जाए।
5: बिल्कुल।

0: तो श्रोताओं अब बढ़ते हैं अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर। आज हम उस नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, गरीबों और गांवों के विकास के लिए समर्पित कर दिया। बात करेंगे हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की।
1: बिल्कुल दोस्तों, वो केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वो किसानों की आवाज थे। उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा गांव, किसान और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी।
0: बिल्कुल, और आज के जितने भी यूथ हैं चौधरी चरण सिंह उनके लिए एक प्रेरणा का बहुत बड़ा सूत्र हो सकते हैं।
1: क्योंकि पूजा, जब भी हम किसी इंसान की कोई पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता होती है ईमानदारी, और उन्होंने राजनीति में और उनकी जो सेवा रही देश के लिए उससे हमेशा यही सिखाया। हमेशा सादगी पूर्वक जीवन जिया और वो खादी भी पहनते थे, गांव से जुड़े थे। तो वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी रूट से कनेक्टेड होते हैं, अपने लोगों से कनेक्टेड होते हैं, तो हम जो पॉलिसी भी बनाते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, वो आम जनता के लिए होता है।
0: बिल्कुल, युवाओं के लिए उनकी दूसरी बड़ी सबसे सीख थी कि मेहनत और संघर्ष। वो साधारण किसान परिवार से थे लेकिन देखिए वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल, और चौधरी चरण सिंह जी ने यूपी में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों को अधिकार दिलाने और ग्रामीण समाज को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। दोस्तों,
0: वे सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास के समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत की तरक्की गांव और किसान की तरक्की से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और आज हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश और समाज के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ऐसे जो भी प्रेरणा स्रोत लाते हैं उनके बारे में जब हम जानते हैं, उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इंस्पिरेशन हमें ज़रूर मिलती है। और क्योंकि पूजा, हम अपने कार्यक्रम में हर रोज़ एक प्रश्न लेकर आते हैं, तो पहले मैं कल का प्रश्न अपने दोस्तों को बता दूं। कल का हमारा प्रश्न था कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक किस बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसका सही जवाब है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और आज का जो प्रश्न है,
0: बिल्कुल आज का सवाल है, प्रसिद्ध एहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे और इसमें किस युद्ध का वर्णन किया गया है। आप इसका सही जवाब हमारे नंबर

0: भेज सकते हैं
1: हमारा या हमारी ईमेल आईडी पर भी।
0: बिल्कुल, हमारा नंबर है 8004926250। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com।
1: और चलते चलते दोस्तों सुनवा देते हैं आपको एक और गीत।

0: दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव को
1: और मुझे यानी पूजा यादव को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का।

0: मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल की मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। 10:00 कृष्णा मित्रा का लिखा नाटक प्रसारित किया जाएगा लॉकर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में उस्ताद निशांत खां का सितार वादन हम आपको सुनवाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि

6:30 पर ग्रामीण भाइयों के लिए पंचायत घर कार्यक्रम में राम सिंह पटेल और साथी के गाए लोकगीत के अलावा किसान भाई सुनेंगे निखिल तिवारी श्री दत्त की वार्ता, जिसका विषय होगा जानिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सात बजकर 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में श्रीयुक्त श्रीकांत वैश्य के स्वर में गीत और भजन प्रसारित किए जाएंगे। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता प्रसारित होगी, विषय होगा संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजनानाम उपादीयता। और 8 बजे हम हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारे शेष कार्यक्रमों की। और अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। कल रात 9:30 पर युवा भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु में सुबह 6:30 पर खलील जिब्रान के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम रोज की तरह सुबह 6:35 पर प्रसारित होगा। कल के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र प्रसाद से की गई बातचीत, अश्वगंधा एवं सर्पगंधा की खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर डॉक्टर सुनीता वर्मा की वार्ता होगी, विषय होगा टिटनेस कारण लक्षण और उपचार। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सुषमा त्रिपाठी और शाम 7:45 पर आदित्य राय के स्वर में भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप लोग सुनते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में ठीक 7 बजे और 7:10 पर फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर पंडित अनंत लार और पंडित भोलानाथ का शहनाई और बांसुरी पर युगल वादन और दिन में 12:15 पर उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन हम आपको सुनवाएंगे। प्रातः 8:45 पर समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा हेलो फरमाइश। दिन में 1:15 पर हेलो पनघट कार्यक्रम होगा, जिसमें महिलाओं के मानसिक रोग निदान और उपचार विषय पर मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार पासवान फोन द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। दिन में 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 10:05 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में राम सूरत और साथी के गाए लोकगीत। इसके अलावा दिन में 2:30 पर भी आप लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे, कलाकार होंगे लहरी लाल जी यादव और साथी। इसके अलावा शाम 5 बजे भी धरती के गीत कार्यक्रम में अखिलेश कुमार यादव और साथी लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में हमारे युवा श्रोता अमिताभ बच्चन पर केंद्रित आज की शाम आपके नाम कार्यक्रम सुनेंगे। इसके अलावा प्रेरणा पुंज के केंद्र में होंगी स्वतंत्रता आंदोलन की वीरांगनाएं। कल शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई राम सूरत और साथी के गाय लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात सुनेंगे। इसके साथ ही शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे श्याम जी मिश्र की वार्ता, हिंदी पत्रकारिता की गौरवपूर्ण 200 साल की यात्रा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की।

कौशाम्बी से हमें सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी मंजू देवी, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच, ये दिनांक 30 अप्रैल 2026 से मंझनपुर से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, विमलेश कुमार, पुत्र राम कुमार, मंझनपुर कौशाम्बी। मोबाइल नंबर है 8874595924, यानी 8874595924। एक अन्य सूचना, सुलखान पटेल हमें सिराथू कौशाम्बी से सूचित करती हैं कि इनकी पत्नी सुनैना देवी, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, कद 5 फुट 8 इंच, रंग गेहुआ है, ये दिनांक 13 अप्रैल 2026 से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि किसी भी सज्जन को उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, सुलेखान पटेल, ग्राम मारुफपुर, सिराथू कौशाम्बी। एक अन्य सूचना, राजेंद्र पासी कोखराज सिराथू कौशाम्बी से हमें सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी सुषमा देवी, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, ये दिनांक 16 अप्रैल 2026 से शाम को 4 बजे से लाटपुर से लापता हैं। सुषमा देवी का रंग गेहुआ है और इनके आसपास के गांव, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और रिश्तेदारी में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को सुषमा देवी के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, राजेंद्र पासी, पुत्र स्वर्गीय कालका प्रसाद, मखदुमपुर, करारी, कौशाम्बी। मोबाइल नंबर है 7081964140। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और श्रोताओं, अब हमारे पास खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं हैं। लवकुश जनपद

श्रोताओं, सरकार की ओर से आंधी तूफान एवं वज्रपात से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इस संबंध में कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है, जिसमें से आपको क्या करना है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर टिन की छत, होर्डिंग, क्षतिग्रस्त मकान, पेड़, बिजली के खंभे एवं मोबाइल टावर से दूरी बनाकर रखें। घर के बाहर या छत पर रखी हुई भारी वस्तुएं उड़ सकती हैं, इसलिए उन्हें बांध कर रख दें। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाएं। आंधी तूफान के दौरान सावधानियां हैं तो क्या कदम नहीं उठाने हैं, यानी क्या नहीं करना है, उसमें विशेषकर धारदार एवं नुकीली वस्तुओं को खुले में न रखें। इसके अलावा धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें एवं पेड़ की शरण में न जाएं। आकाशीय बिजली के परिप्रेक्ष्य में सावधानियां क्या बरतनी है, उसमें विशेषकर पक्के मकान की शरण में चले जाएं, खिड़की, दरवाजे एवं बरामदे से दूर रहें, पेड़, मोबाइल टावर, बिजली के खंभों, कच्चे मकान, तालाब, जलाशय से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा खराब मौसम में बच्चों को बाहर न खेलने दें, लोहे की खिड़की, दरवाजे और हैंडपंप आदि को न

हुई। यदि खुले खेत में आप फंस गए हैं तो दोनों कानों को बंद करके पैरों को सटा कर ले। इसे एक बार फिर सुन ले। यदि खुले खेत में फंस गए हैं तो दोनों कानों को बंद कर पैरों को सटा ले तथा घुटनों का टेक लगाकर उखड़ू बैठ जाएं। वर्षा, आंधी तूफान, आकाशीय बिजली एवं बदलते मौसम का सटीक पूर्वानुमान देगा बहुउपयोगी सचेत ऐप एवं दामिनी ऐप, जिससे कि प्रशासन, स्वयंसेवक तथा जागरूक लोगों द्वारा पूर्व चेतावनियों एवं अलर्ट को आम जनमानस तक समय से पहुंचाकर आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं दामिनी ऐप और सचेत ऐप। हम आपको फिर बता दें कि आकाशीय विद्युत के परिप्रेक्ष्य में सावधानी हेतु क्या नहीं करना है, उसमें विशेषकर आपको पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है, दीवार के सहारे टेक न लगाएं, धातु युक्त नल एवं फ्रिज को न छुएं, धातु से बने छाते का प्रयोग न करें। इसके अलावा घरों में चलने वाले भारी विद्युत उपकरणों को प्लग से अलग कर दें, खुले वाहनों में सवारी न करें और बचाव के लिए जमीन पर न लेटें तथा तैराकी या नौकायन न करें। तो ये कुछ एडवाइजरी थी जो सरकार की ओर से जन सामान्य की सुरक्षा हेतु जारी की गई है। आप इस वक्त आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र के साथ हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: माना भाई हर समय कुछ न कुछ चलत रहत है। बोला अब समय भाई देखा कल भाई आज रात में जहाँ तास आंधी तूफान आए ना भैया,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: हमको हल्की हल्की भाई देखा बारिशों भाई जौन है।
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: तो भाई जौन अपन उर्द मूंग के भाई फसल रही न,
1: कही
0: तो
1: गया
0: हमके
1: कही
0: भाई
1: गया,
0: देखा कहूँ कहो तो मैं पानी लगवा जौन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल हो सही कही गया भैया। देखा जवन सिंचाई से जैसे सूखत रही फसल, ओकरे लिए तो फायदा बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मूला
0: भैया।
1: जवन है भैया देखा जवन ये आंधी तूफान आए ना, इसे बहुत नुकसान भी है। देखा जवन भी पेड़ पलाव रहन न हो, देखा वही के साथे जवन आम का बगिया रही
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भैया, देखा आम फरा रहन उहू में जवन है बहुत नुकसान भय।
0: ए भाई हम कही देखा अपने बड़े बुजुर्ग लगाए रहे भाई बड़ा बड़ा पेड़ बगीचा में, और जौन झोंका आए भैया हम तक कही भाई देखा कलेजा हिल गया जौन है देख
1: बिल्कुल
0: के।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब भाई देखा प्रकृति या भाई कर कहर तो भाई हमेशा मतलब कभी अच्छा और कभी रहत है, लेकिन एक चीज़ यह है कि भाई हमका सभी के एक जिम्मेदारी बा
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल
0: भाई बाग बगीचा से अगर एक पेड़ खाली होत तो बाटे तो वहाँ 5 पेड़ और लगाए क्योंकि तैयार करी जौन है।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: और भाई हम कहीं से पेड़ पालो भैया तो ऐसा ना है कि ना सिर्फ फल देता है बल्कि भाई अगर बगीचा में पहुँच जाए तो भाई ताज़ी ताज़ी हवा मिलत बाटे जौन है।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: छाया मिलत है। तो भाई एक बात यह कहा कि जै हिसाब से समय अपने भाई पूरे उत्तर प्रदेश में भाई अलग अलग जनपदन में अपने साथ साथ जो प्रयागराज जनपद बाटे मौसम की स्थिति बनी बाटे और जिला प्रशासन के द्वारा भी भाई बराबर सचेत भी किया जात बाटे कि तेज तूफान बिजली से भाई का बचे के उपाय बाटे उनके बिना भाई अपने आकाशवाणी के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन के जौन भाई इकाई यहाँ भाई ब्लॉक के स्तर पे
1: बिल्कुल
0: गांव
1: बिल्कुल।
0: स्तर पे हर जगह ही जानकारी पहुंचाई गई बाटे। हम कहीं भाई देखा प्रकृति अटे भाई बरसात ठंडी सब तो लगे रहे,
1: बिल्कुल
0: बोला
1: बिल्कुल
0: जरूरी बाटे कि आपन भाई उसे कैसे सुरक्षा करे बाटे। कहे से भाई देखा जब जन हानि होता तो चाहे जेके होए भाई बहुत ही पीड़ादायक होता जो
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और प्रथम दृष्टिया भाई जो जिला प्रशासन के जिस तरह से प्रयास बाद मौसम विभाग आपदा विभाग से जो दिशा निर्देश बा उनका सबके हो भाई पालन करे जाना है।
1: बिल्कुल
0: भाई अगर तेज धूप आए लू आए तो भाई ना ही जरूरी बाटे तो आप घर से बाहर न निकले जाना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आंधी तूफान बाटे भाई तेज आए तो भाई पेड़ के नीचे न खड़ा रहें, और बिजली उजली जैसे भाई चमके जब ज़्यादा हो बाटे तो भाई ऐसे जगह ना रहें जहाँ पे बिजली गिरे की संभावना अधिक बाटे भाई।
1: बिल्कुल भैया। देखा सुरक्षित जगह अपन पहुंच जाए, सुरक्षित जगह रहे के चाही जौन है अगर मौसम खराब है तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखा हो मोहन भाई, खेती किसानी के बात जौन बा ने, देखा इस समय जौन जायद का फसल अपन खेत में लगी है, साथे साथे भैया देखा खरीफ के मौसम भी आवत बे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भैया किसान भैया हरे जौन देखा प्रगतिशील पंच भैया बाटे न हो, देखा अपन नर्सरी की भी तैयारी करत हैं।
0: काहे नहीं भैया हम कही भाई देखा अब ऐसे खेत नम भा है तो हम तो कही देखा बहुत से अपन जो जानकार किसान भाई यहाँ वैज्ञानिक विदेश का रहता है तो भाई मौका देख के जोताई तो कहीं दी भैया जो ना।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: भैया। देखा जोताई कह दिए, साथे साथे अपन जोन ओमन घास पात रही देखा जर जाए,
0: बिल्कुल
1: आओ
0: बिल्कुल।
1: बढ़िया से नर्सरी डालाई ओमन जोन है। तो भैया देखा अब नर्सरी के डाले के समय जोन है आई के बाटे, तो पंच भैया अरे समय से अगर देखा नर्सरी डाल दी है तो भैया समय से उनके धान का लगवही हो जाए
0: अच्छा
1: हो।
0: एक बात यह कहा भैया हम कही देखा ऐसा समय होता कि भाई अब आज के 8-10-5 दिन के बाद तो भाई जब नर्सरी और सब शुरू हुए तो पानी की आवश्यकता
1: बिल्कुल
0: बराबर पड़
1: बिल्कुल।
0: जाओ ना। तो भाई अपन नहर विभाग के द्वारा भी एक बारे में पूरी जानकारी देंगे बाटे कब कोने कोने क्षेत्र में भाई पानी छोड़ा जाए जो ना है। और ऐसे किसान भाई जे खास करके नहर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और उससे सिंचाई के माध्यम नहर बाटे तो ओके भी बहुत सावधानी बरते पाए भैया कि भाई देखा जब नहर के पानी जब छोड़ा जाता है तो ओकर वेग तेज होता जो ना है
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो का नाली के माध्यम से छोटी छोटी नाली के माध्यम से अपने खेतन में लेके जाएं जिससे सिंचाई के भी कार्य हो जाए और साथ ही साथ उनके जो फसल के बा उकेन भी नुकसान जो है ना हो जो ना है।
1: बिल्कुल सही कह गया मोहन भाई। देखा पानी जौन है भैया देखा अमूल्य बा, तो भैया देखा सिंचाई में पानी उतने उपयोग में ले आवे जितना उनके फसल का जरूरत बा।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: भैया देखा जहाँ नहर से सिंचाई हो, तो जवन गांव गिराव देखा नहर से जुड़ा है वहाँ भैया देखा नहर विभाग द्वारा जवन है देखा नाली बनी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वहाँ भैया देखा कुलाबा भी लगा है छोटा छोटा। तो भैया ओकरे माध्यम से भैया देखा किसान भैया हरे हल्की सिंचाई अपन करत रही
0: अच्छा
1: हैं।
0: एक बात यह भैया देखा अपन जो नहर विभाग के बाटे वो अपने किसान भाई से समय

0: समय पे जब अपन सिंचाई के कार्यक्रम जारी कर रहे थे, तो एक उनसे अनुरोध भी रहा था कि जहाँ भी सिंचाई किसान भाई अपन करता, अगर ज़रूरत से अधिक अगर कोनो खेतन में सिंचाई कर दे ही, तो
1: बिल्कुल
0: उसे उपज भी होना है भाई प्रभावित हो जाते जो ना है।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: और साथे साथे एक जहाँ पे भाई सींचा गा है पोर खिताई को सींच सिंचाई भी बैठे कुल मिलाई के जो ना है ना, तो वहाँ पे दोबारा सिंचाई न हो पाए यह बात के जो ना है विशेष ध्यान रखें जो ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे का हो कि भाई एक तो पानी की बचत हो, दूसरा जो जितना आवश्यकता बाटे वो हिसाब से सिंचाई हो, और एक कहते ना भाई अपने यहाँ जैसे आलू के खेते में कूला बराबर नहीं बनाई जाते, अगर वो माध्यम से कह दें तो छोटी छोटी जैसे क्यारी बाटे ऐसे अगर करी तो जो सिंचाई बा वो ज़्यादा ही लाभदायक हो जो ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इस
1: बिल्कुल
0: तरह जो छोटी छोटी सावधानियां हैं अगर अपन किसान भाई बरतते थे तो हमके भाई देखा उनका जो खेत के सिंचाई बा वो बढ़िया हो, जलस्तर बढ़िया बना रहे, नमी बनी रहे, और साथे साथे जो उनका खेती किसानी के जो उन काम बा वो बढ़िया से चल सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और एक बात कहा भैया हमके भाई देखा बाजारे गए रहे ना, तो जो बढ़िया भाई दशहरी देख के तो भाई जीव हरियर हो गया जो ना।
1: कही गया
0: हाँ,
1: कही गया भैया।
0: अब भाई बाग बगीचा में जा ना तो भाई देखा जौन भाई खटुआ मिठाऊ ऐसा लटका था है ना पेड़ में देख के, तो भाई देखा मैं समय तो आम का सीजन बा भैया। हाँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जरूरत बाटे कि जौन आम के फसल बा भैया वो के भी देखभाल करे जो ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया जवन है देखा उनका जवन आपन आम का देखा जवन फसल बची हैं भैया देखा आंधी तूफान तो आवत बाटे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मुला भैया जवन बची हैं ओका सुरक्षित करब जरूरी बाटे। तो भैया देखा किसान भैया अरे ऐसे सचेत रही हैं
0: खास
1: जवन
0: है
1: है।
0: कि भाई देखा जो नई बाग लगाई गई बाटे आम के जो ना है और भी जो फलदार वृक्ष हैं, तो भाई ये समय तो भाई सिंचाई को बहुत ज़रूरत पड़े था। प्रयास करें कि भाई शाम के समय वहाँ पानी जो ना है छोड़ें, और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आवश्यकता अगर पड़े तो भाई वैज्ञानिक भैया से सलाह लेके भाई पत्तियन पे भी अगर पेड़ छोटा है तो भी छींटा मार दें जो
1: बिल्कुल
0: ना है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस तरह से जो अपन पेड़ है भैया वो भी सुरक्षित रहे, और जो बढ़वार बा वो बढ़िया जाए जो ना है।
1: बिल्कुल
0: तो बहुत से
1: बिल्कुल
0: किसान भाई देखा आज कृषि विविधीकरण के भाई दौर बाटे, सिर्फ अनाज पर नहीं निर्भर रहें, बाग बागवानी भी करते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: फसल उत्पादन के साथ साथ सब्जी खेती करते हैं, तो भाई हर एक चीज़ जो ना है भाई किसानी से जुड़ा बाटे। भाई अभी समय आम का सीजन बाटे, खेती रहने तेजी 4 पैसा लोगों का आमदनी का स्रोत है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भाई अपन आमदनी अगर बढ़ावे के बाटे तो अपने जो स्रोत हैं उनका और अच्छा रखे के बाटे। तो जो भी किसान के लिए अपने किस वैज्ञानिक भैया रहे दिशा निर्देश जारी करता है इस समय, उन हिसाब से भाई अपन बाग बगीचा के जो ना है देखभाल करें।
1: बिल्कुल भैया हो देखा मोहन भाई आज पंचायती में हम काका अपने पंच भैयारिन के
0: बताओ
1: सुनाओ
0: भैया,
1: ओ की
0: बताओ भैया।
1: बताई दी देखा रोज के तरह से गीत गौनई हुई भैया राम सिंह पटेल और संघातिन के और साथे साथे देखा अब जवानी खरीफ के सीजन आवत बने
0: हाँ
1: भैया। तो भैया देखा हमन जो धान के ई छिटकवा विधि से धान के बुआई कैसे किया जाए यह पर देखा डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से रितेश कुमार शुक्ला भैया बतियान है।
0: अच्छा, भैया
1: और हम तो कहा भैया देखा ये बात बतकई हुई मुला आवा पंचायती में जौन है राम सिंह पटेल और संघातीन के एक विकास गीत हो
0: सुनवा दे भैया।
1: तो सुना
2: अरे हंसी हंसी के बोली सजनिया, अरे हंसी हंसी के बोली।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प

0: विकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
0: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया, देखा हो जौन बात बतकई होत रही है कि खेती किसानी में देखा अब खरीफ का सीजन भी धीरे धीरे आवत
4: बा। बिल्कुल भाई, हम
3: तो भैया देखा नर्सरी के तैयारी किसान भैया हरे करत हैं, ओकर भैया देखा खेत के बढ़िया से जोताई करी हैं, जोताई करे के बाद देखा ओकर घास पात निकाल के जौन है नर्सरी तैयार करी है। और उमा भैया देखा जैसे धान लगावे के एक नर्सरी विधि बा, एक विधि बा भैया देखा छिटकवा विधि। तो कुछ किसान भैया हरे छिटकवा विधि से भी धान की बुआई करत हैं जौन।
4: बिल्कुल बिल्कुल है।
3: और यही पे देखा आज बात कही बात है जौन है कि छिटकवा विधि से धान की बुआई ये कैसे किया जाता है, इसे का फायदा होता है, इस पर देखा डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से अपन रितेश कुमार शुक्ला भैया बतियान हैं। तो कहब तो सुना, पंच भैया हरे भी सुने,
4: सुनवाए दे भैया।
3: तो सुना
5: किसान भाई, बहुत स्वागत बा आपका अपने पंचायती में। आज अपने पंचायती में एक विशेष भेंट वार्ता बाटे जेमन डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया आवा हैं, जे कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी से हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत बा आपका। डॉक्टर साहब, ये जोन मौसम चलत बाटे, ये खरीफ का जोन राजा फसल बाटे यानी कि धान जोन बाटे ओकर मौसम चलत बाटे। और भैया देखा डॉक्टर साहब हमरे यहाँ तो भैया देखा अलग अलग किसान भाई अरे अलग अलग तरीका अपनावत हैं, और जोन उनके पास जोनों जानकारी हो तो चाहे वो पुरखा पुरनिया से हो चाहे वो वैज्ञानिक भैया के द्वारा हो, अलग अलग तरीके से भाई धान की बुवाई होता, अलग अलग किस्म होता और अलग अलग रख रखाव होता, अलग अलग तरीका होता। तो जोन भी तरीका होता भाई सबका कुछ नफ़ा होता, कुछ नुकसान होता, कुछ फ़ायदा होता। तो अलग अलग तरीके में भैया कुछ विशेष जैसे छिटकावा विधि बाटे, ये छिटकावा विधि का बाटे और इका एक बारे में कुछ आप बताएं किसान भाई इनके।
6: देखिए जैसा किसान भाई आप सब जानते हैं कि हमारी धान की जो फसल है वो खरीफ में मुख्य फसल है और किसान भाई इसकी तैयारी में बड़े मई माह से ही लग जाते हैं।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: जिनको किसानों को रोपाई करनी होती है वो मई माह में अपनी नर्सरी डाल देते हैं, लेकिन नर्सरी डालकर रोपाई कराना इस समय बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो गया है क्योंकि लेबर की उपलब्धता कम होने लगी है, लेबर समय से नहीं मिल पाते हैं और इसमें इसके साथ साथ लेबर की उपलब्धता के साथ साथ इनका धन भी ज़्यादा लगता है उसकी रोपाई करवाने में, लागत ज़्यादा हो जाती है और उत्पादन जब होता है तो लागत अगर हम ज़्यादा लगा देते हैं तो हमारा जो उससे कोई फ़ायदा है वो नहीं हो पाता है। तो देखिए ये जो धान की रोपाई का प्रचलन है ये हमारे देश में अभी 80-90 सालों से आया है, उससे पहले जो है हमारे जो पूर्वज थे वो सीधे धान की छिटकों विधि से बुआई करते थे
5: जी, जी।
6: और धान हमारा जो धान का पौधा है वो बना भी हमारी छिटकों विधि से फसल की बुआई के लिए, लेकिन हमने उसमें कुछ खरपतवारों की समस्या ज़्यादा आती थी उसकी वजह से उसको छोड़ा। और रोपाई करने में हम पहले अपना धान की पौध तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद उसकी रोपाई कर देते हैं, लेकिन छिटकों विधि जो हमारे पूर्वज करते थे वो कम लागत में अधिक उत्पादन लेते थे।
5: बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो डॉक्टर साहब संसाधन भी कम रहा और छिटकवा विधि जोन होत रही कि भाई उमन जोन आपका मेहनत रही वह कम लगत रही
6: जी।
5: तो जोन छोड़े के का कारण रहा कि भाई छिटकवा विधि छोड़ के किसान भाई रोपाई विधि पे आई गए ने, एक बारे में बताऊँ आपके काहे छोड़ दिए ने का।
6: देखिए जब छिटकवा विधि से बोते थे तो उनका जो है बुआई से कुछ जो नुकसान होता था, चिड़िया दाने को चुक जाती थी बीज को, उससे नुकसान होता था, फिर जो बीज हमारा ऊपर पड़ा रहता था वो जो है सड़ जाता था और एक निश्चित गहराई तक अगर हमारी फसल की जड़ें नहीं गईं तो हम उससे उत्पादन अच्छा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए और इसके साथ साथ खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, जब घन पौधे निकलते थे तो उसमें हवा पानी प्रकाश पर्याप्त मात्रा से नहीं मिलता था, उसकी वजह से खरपतवार सबसे पहले तैयार हो जाते थे और खरपतवार वो हमारे जो फसल की पौधा है उसको दाब लेते थे, जिससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता था और रोग बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता था। इस वजह से छिटकों विधि को किसानों ने छोड़ा, लेकिन अब हमारे बीच में बहुत सी विधियां उपलब्ध हैं। जैसे कि हम अगर सीधी बुआई की बात करते हैं तो सीधी बुआई में दो तरीके से हम बुआई कर सकते हैं, उसमें हमको श्रम भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और पौधों का विकास भी अच्छा होगा।
5: बिल्कुल।
6: तो इसमें कुछ यंत्र भी आ गए हैं, जैसे आपका धान की बुआई के लिए ड्रिल आ गए, सीड ड्रिल।

0: आ गई है,
1: अच्छा
0: उसमें खाद और एक खाने में खाद भर दी जाती है, एक में बीज भर दिया जाता है, दोनों एक साथ जो है खेत तैयार करके बो सकते हैं। इसमें दो विधियां भी हैं, जैसे कि गीली विधि से, मतलब या तो ड्राई ड्राई में हम बुआई करना चाहते हैं सीधी बुआई, या वेट में करना चाहते हैं, तो दोनों विधियों को हम अपना के उसका लाभ ले सकते हैं और कम पैसे में।
1: डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जो नवा अनुसंधान भवा नई जो जानकारी आई गई बाटे, तो अगर सीधी बुआई अब की जाए तो किसान भाई ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
0: जी
1: एक बात आप ही बताएं कि अगर मशीन द्वारा एकर बुआई होए तो भाई बुआई अच्छे से हो जाए और किसान भाइयों के अच्छी फसल मिले। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बतावें कि अगर यंत्र के अलावा या जो मशीन बाटे ओकरे अलावा अगर आदमी खुद से अगर एकर बुआई करा चाहे तो वो कैसे करें, एकरे बारे में आप बतावें।
0: देखिए, बैल, पहले हमारे पास बैल पर्याप्त मात्रा में थे, तो किसान भाई जो हमारे जो किसान थे वो कुंड में बुआई करते थे,
1: अच्छा
0: नीचे खाद डालते
1: बिल्कुल
0: थे और ऊपर बीज डालते, एक आदमी खाद डालता चला जाता था और दूसरा आदमी बीज डालता चला जाता था, तो उस लाइन में
1: जो हल रहत रहा, हल में बना रहत रहा, वही
0: चोंगा।
1: वही
0: जी
1: जी
0: जी
1: वही में डालत रहे, तो उसके साथ भी उमन का नाम बा, एक तरफ से आपका खाद पड़त रही और एक तरफ से बीज पड़त रहा।
0: जी
1: जी
0: उसका एक तो सबसे बड़ा फायदा ये था कि नीचे खाद और ऊपर बीज रहता था,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: जब नीचे खाद और ऊपर बीज रहता था तो खाद की पूरी पोषक तत्व की मात्रा लेकर बीज हमारा अंकुरित होता था और पौधा स्वस्थ होता था।
1: बिल्कुल
0: लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ पर खरपतवारों की समस्या, सबसे पहले खरपतवार तन के खड़े हो जाते थे, वो नुकसान ज़्यादा था। लेकिन अगर हमारे पास यंत्र नहीं है, हम बुआई करना चाहते हैं, तो बैल अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो चोंगे के सहायता से हम नीचे खाद और ऊपर बीज की बुआई कर सकते हैं।
1: हाँ
0: और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हमको बीज की मात्रा भी कम लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक एकड़ में हमारा 8 से 10 किलोग्राम बीज लगेगा, और जबकि हम अगर रोपाई की बात करते हैं, रोपाई के लिए पौध तैयार करते हैं, तो 1 बीघे में हमारा हाइब्रिड है तो वो 3 केजी है, और नहीं तो अगर वाले जो देसी बीज है हमारे, वो कम से कम 10 किलो के आसपास हमको डालने पड़ते हैं।
1: तो कुल मिलाए के डॉक्टर साहब, अगर छिड़कावा विधि के नियंत्रित ढंग से अगर किया जाए, अगर नियंत्रण में हो के किया जाए, तो निश्चित तौर पर जोन आप बताएं कि भाई लागत तो कम लगे, साथ ही साथ जोन बीज का मात्रा रहे वो कम लगे, और जोन हमारा उत्पादन होए
0: जी
1: वो आपके रोपाई
0: बढ़ेगा।
1: के माध्यम से ज़्यादा होए, अगर
0: जी
1: रोपाई से किया
0: जी
1: जाए
0: जी
1: उसके तो तुलना में ज़्यादा होए। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात भाई कि भाई दोनों विधि काहे एक दूसरे से अलग बाटे, ई जोन चीज बाटे खरपतवार की जोन समस्या आवत है, हम आपसे यह जानना चाहब कि भाई खरपतवार के अगर बुवाई के पहले कोनो ऐसा चीज की जाए कि खरपतवार ना आवे, जैसे कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि भाई आपके का नाम भाई एक जोत लगाई के पानी भर देते हैं उमन, और जब मिट्टी आपके सूख जाता, सूख कायदे से जब आपका खेत सूख जाता तो भाई जो खरपतवार की समस्या आवे वाली रहता वो कम हो जाता। तो
0: जी
1: कोनो ऐसा चीज आप विधि हो या यही विधि बाटे या एकरे अलावा कोनो विधि बाटे ये बताओ आप।
0: देखिए, अगर धान की बुआई हम सीधी वेट उसमें करते हैं, गीली अवस्था में करते हैं, तो वहाँ पर हम खेत को बहुत अच्छी तरीके से पहले तैयार कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: तैयार करने के बाद जैसे ही हम खेत को तैयार करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पीछे सीजन के खरपतवार के बीज होते हैं, वो सबसे पहले वो तैयार हो जाते हैं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: खरपतवार आ जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: उसके बाद जब हम दूसरी जुताई करते हैं, तो उसके बाद जब दूसरी जुताई करके पलेवा लगा देते हैं, तो हमारे खरपतवार वहाँ पे नष्ट हो
1: नष्ट
0: जाते
1: हो
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: दूसरा, अगर हम सीधी बुआई कर रहे हैं, उसमें कोई खरपतवार नाशी प्रयोग करना है, तो बुआई के हमको 48 से 72 घंटे के अंदर पेंडामेथिलीन नामक दवा है, 30 cc की दवा है, उसका अगर हम छिड़काव खरपतवार से, हम बहुत हद तक सीधी बुआई में, बुआई के तुरंत
1: अड़तालीस घंटे के
0: 48 से 72 घंटे के अंदर।
1: बिल्कुल बिल्कुल तो डॉक्टर साहब ये मतलब कि जो समय बाटे ये बहुत महत्वपूर्ण समय बाटे, अगर किसान भाई सीधी बुआई करत हैं
0: जी
1: तो जो ना आप बताएं कि 72 घंटे के अंदर अंदर भैया अगर दवा का छिड़काव कर ही तो निश्चित तौर पर जो नहीं खरपतवार की समस्या होता भाई ऐसे बच सकते
0: उससे
1: हैं।
0: बच सकते हैं। जी
1: बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि सीधी बुआई जो आप बताएं, तो सीधी बुआई के लिए कौन विशेष तैयारी की जरूरत होता, कि जैसे अपन खेत की तैयारी पहले रोपाई के लिए होत रही वही खेत में आप सीधी बुआई कर सकते हैं कि कुछ विशेष आपके काम करे के पड़े।
0: देखिए, सीधी बुआई में हमको विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, हमको नर्सरी नहीं डालने की आवश्यकता है, जो हम मई माह में डालते हैं वहाँ, उससे हमारी बचत हो सकती है। उसके बाद सीधे हमको खेत तैयार करके दो विधियों से, या तो गीली विधि से या सूखी विधि से, अगर हमको सूखी विधि से करना है तो हमको खेत की अच्छी तरह कल्टीवेटर्स की सहायता से जोत कर उसको जो है बढ़िया से तैयार कर लेना है, खेत में समतल कर लेना है। समतलीकरण तो हमारी सीधी बुआई, जो छिटकवा विधि से बुआई है, वो बहुत अच्छी तरीके से

0: बीजों का जमाव होगा।
1: हम आपसे एक बार और जानना चाहब डॉक्टर साहब, जो ना आप यंत्र के बारे में बतावत रहें कि भाई एक यंत्र होता उससे सीधी बुआई होता, उकरे बारे में रच के और थोड़ा विस्तृत रूप से बतावे, कैसन यंत्र होता, कहाँ मिले और कैसे किसान भाई इससे लाभ ले सकते हैं।
0: देखिए, किसान भाइयों को दो यंत्र इसमें सीधी बुआई के लिए मिल सकते हैं। एक तो सीड ड्रिल होती है।
1: जी
0: सीड ड्रिल
1: जी
0: जो है, हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो सीड ड्रिल पे अनुदान भी देती है, वो ट्रैक्टर
1: अच्छा
0: चालित है।
1: अच्छा
0: दूसरा एक ड्रम सीडर है। ड्रम सीडर एक पूरा 8 किलो का हमारा वजन का होता है, प्लास्टिक का होता है, उसमें बॉक्स होते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: 8 बॉक्स होते हैं,
1: जी
0: उनमें
1: जी
0: हम
1: जी
0: बीज भर देते हैं
1: अच्छा
0: और एक आदमी उसको बड़े आसानी से विपरीत दिशा में खींचते हुए चला सकता है और सीधे उस लाइन में बुआई उससे हो सकती है। तो
1: बिल्कुल
0: दोनों
1: बिल्कुल
0: यंत्रों पर राज्य सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान को लेकर किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं। और बीज की जहाँ तक बात है, तो बीज हमारा जो है 8 से 10 किलो 1 एकड़ में लगता है, और जबकि अगर हम रोपाई की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा 8 से 10 किलो 1 बीघे में लगता है, तो वहाँ बीज की बचत होती है। अगर

0: जी
1: सीड्रिल
0: जी
1: जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो सीड्रिल पे अनुदान भी देती है, वो ट्रैक्टर
0: अच्छा
1: चालित है।
0: अच्छा
1: दूसरा एक ड्रम सीडर है, ड्रम सीडर एक पूरा 8 किलो का हमारा वजन का होता है, प्लास्टिक का होता है, उसमें बॉक्स होते हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: 8 बॉक्स होते हैं,
0: जी
1: उनमें
0: जी
1: हम
0: जी
1: बीज भर देते हैं
0: अच्छा
1: और एक आदमी उसको बड़े आसानी से विपरीत दिशा में खींचते हुए चला सकता है और सीधे उस लाइन में बुआई उससे हो सकती है। तो
0: बिल्कुल
1: दोनों
0: बिल्कुल
1: यंत्रों पर राज्य सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान को लेकर किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं। और बीज की जहाँ तक बात है तो बीज हमारा जो है 8 से 10 किलो 1 एकड़ में लगता है, और जबकि अगर हम रोपाई की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा 8 से 10 किलो 1 बीघे में लगता है, तो वहाँ बीज की बचत होती है। अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो हमारी सिंचाई कम लगती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: सिंचाई का जो हमारा दर
0: लागत
1: है
0: लागत होगी वो
1: लागत,
0: कम हो
1: वो
0: जाएगी।
1: 35 से 40% हम बचा सकते
0: अच्छा
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: और सीधे अगर हम लाइन में खाद डाल रहे हैं तो उसका भी हमको बहुत अच्छा उसका लाभ मिल सकता है, वहाँ भी हमारी लागत कम लगेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल इतना डॉक्टर साहब सोच समझ के अगर इतना खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों के लाभ हुए। एक जोन और समस्या किसान भाइयों के आवत तो वो बीज जनित जोन रोग होते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध किया जाता है कि कौनों फसल लगावे के पहले अगर जो बीजोपचार होता वो बहुत ज़रूरी होता, अगर बीजोपचार कर लिया जाए तो बहुत तरह की बेरामी से बचा जा सकता
1: जी
0: था। अपने धान में जो बीजोपचार बा या ये जो सीधी बुवाई में जो बीजोपचार है उसके बारे में किसान भाइयों के
1: देखिए,
0: बताओ।
1: बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी अगर हम फसल लेना चाह रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो अगर बीज उपचार हम करते हैं तो बीज उपचार से हम फसलों को आगे आने वाली रोग बीमारियों से तो बचाते ही हैं और उस पर एक सुरक्षात्मक टीका लगा देते हैं। इसको हम ठीक उसी प्रकार से समझें जैसे हमारे आपके घर में कोई नवजात शिशु आता है तो डॉक्टर टीके के लिए एक चार्ट बना के देता है, हम उसको
0: बिल्कुल
1: लगवाते हैं और सुरक्षित और स्वस्थ करते हैं। उसी तरह हमारा जो बीज है वो भी तो एक नन्ना शिशु के समान है, अगर उसमें हम सुरक्षात्मक टीका यानी बीज शोधन कर देते हैं तो आगे आने वाली बहुत सी रोग बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। तो जब धान की हम छुपाई कर देते हैं, छुपाई करने के बाद उसमें कार्बेंडाजिम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अगर हम डाल के उसमें मिला देते हैं और मिलाने के बाद उसको छाया में सुखाकर उसकी बुआई करते हैं तो इससे बहुत हद तक हम रोग
0: बिल्कुल
1: बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब रोपाई विधि जोन बाटे उमन कहा जाता है कि जब पौधन की रोपाई की जाए या धान की रोपाई की जाए तो ओकर जो गहराई होता वो अगर पर्याप्त गहराई न रहे तो पौधा के गिरे की समस्या होता, पौधा गिर जाते ना फसल का नुकसान हो जाता।
1: जी
0: जोन ही सीधी बोवाई बाटे एमन बीज कितनी गहराई पर बोवा जाए कि हमके जोन पौधा का जोन लंबाई बा जोन ओकर विकास बा उचित हो सके और हमके अच्छा फसल मिल सके तो कितनी गहराई होए के चाहे।
1: देखिए, गहराई का इसमें सीधी बुआई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर 2 से 3 सेंटीमीटर अगर हम उसकी गहराई रखते हैं बीज की बुआई में तो हमारा जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से विकसित भी होगा, और सिंचाई जब हम करेंगे तो सिंचाई में वो पौधा नीचे बीज जो हमारा नीचे जाके हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और जब 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर हम बोते हैं तो पौधा हमारी अच्छी प्रकार से जड़ पकड़ लेगा और स्वस्थ पौधा निकलेगा और उससे हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ये तो सारी बात भाई भाई सिंचाई से लेकर के खरपतवार से लेकर के कैसे उकर बुवाई की जाए ये सारी बात भाई। एक हमरे मन में सवाल आवत बाटे कि कौनो विशेष किस्म बाटे सीधी बुवाई बरे या आपका जोन संकर नस्ल हैं या जोन देसी नस्ल हैं कौन ऐसी प्रजाति बाटे सीधी बुवाई बरे जो सबसे उपयुक्त बाटे किसान भाई ओकर उपयोग करें।
1: सीधी बुआई में दोनों प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं, चाहे वो देशी प्रजातियां हों। देशी प्रजाति में हमको बीज 8 से 10 किलोग्राम डालने की आवश्यकता है, अगर हम संकर प्रजाति का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको बीज प्रयोग करना पड़ेगा।
0: अच्छा मोटा धान अगर लगावे तो जय कहा जाता है अगर मोटा धान आप लगावते हैं तो ओकर जोन बुआई होता वो रच के दूर दूर पे हो तो ज़्यादा बेहतर होता और जोन महीन धान होता भाई ओकर सघन बुआई होता।
1: जी
0: तो भाई अगर किसान भाई जोन डॉक्टर साहब बताएं कि भाई अगर देसी बाटे तो कितना लिया जाए और संकर नस्ल बाटे तो कितना लिया जाए तो उस हिसाब से अगर किसान भाई बुआई करी तो निश्चित तौर पर उनके लाभ मिले। भैया देखा ये तो डॉक्टर साहब बात भाई किस्म का और साथ ही साथ एक जो सवाल जात जात हम आपसे पूछा चाहब कि भाई बात पूरी बात भाई कि भाई रोपाई विधि कैसन बाटे और सीधी जो बुवाई होता वो कैसन होता तो दोनों में आप ये डॉक्टर साहब बताएं कि दोनों में का अंतर बाटे मतलब उत्पादन में का अंतर बाटे। मोटा मोटा हम आपसे ये जानना चाहब कि अगर कोनो किसान भाई चाहत बाटे कि हम नहीं सीधी बुवाई करब अपन रोपाई वाली जो विधि बा ओकर छोड़ के हम के सीधी बुवाई करे के बाटे तो किसान भाई की कितना फायदा मिले।

0: आप ही बताओ।
1: सीधी बुआई में एक तो सबसे बढ़िया किसान को फायदा ये मिलता है कि 8 से 10 दिन पहले हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है।
0: अच्छा
1: दूसरा, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो चूंकि इसमें उत्पादन हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं, एक लाइन में होते हैं, हवा पानी प्रकाश उनको पर्याप्त मिलता है, तो जब उसमें बालियां भी ज़्यादा आएंगी और जब बालियां ज़्यादा आएंगी तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा होगा और रोपाई की अपेक्षा इसमें हमको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
0: अच्छा,
1: तो कम से कम 15 से 20% उसमें उत्पादन में इजाफा होगा अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाए के कहे के मतलब ये बा कि भाई जोन डॉक्टर साहब जानकारी दिहेन कि भाई अगर छिटकवा विधि से धान के बुवाई की जाए तो निश्चित तौर पर फायदे में आपके सबसे बड़ा फायदा तो ये बा कि भाई फसल पहले तैयार हो जाए, पानी का जोन आपके लागत बा पानी आपके कम लगे, साथ ही साथ जोन आपके मेहनत बा वह आपका कम हो जाए और आपको उत्पादन जोन बा 10 से 15% ज़्यादा आपके उत्पादन मिले
1: जी
0: आपको जोन रोपाई विधि हो बा। तो डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया आप हमारे कार्यक्रम में आए नो किसान भाइयन के जोन जानकारी दिए, निश्चित तौर पर किसान भाई एक सुने हुई और अपने अगर अपने खेती किसानी में उपयोग में लेके आई तो भाई उनके फायदा हो, तो आप आए निकले लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ भैया
0: तो
1: हो,
0: भैया
1: हमका ये भाई
0: हाँ
1: देखा कितनी बढ़िया डॉक्टर मनोज सिंह जी फरिया फरिया बताएं कि भाई देखा धान के रोपाई कैसा समय हो, तो भाई जब पूरा किसान एक साथ जोना है अपन काम शुरू करते हैं जोना है,
2: बिल्कुल
1: और
2: बिल्कुल
1: ऐसे समय में भाई जो धान को रोपाई करे वाले भाई जो मजदूर हैं वो कहो कहो ना जल्द समय पर नहीं मिल पाते, तो
2: बिल्कुल
1: ऐसे
2: बिल्कुल
1: में कहा है कि जो आपकी नर्सरी बाटे वो पता लगा कि भाई ज़्यादा बड़ी होगी कड़ी होगी तो उसे भी मुलायम रहता तो भाई ज़्यादा पकड़ा था जो है
2: बिल्कुल
1: तो
2: बिल्कुल
1: नुकसान होने की संभावना रहता। तो भाई जो सीधी बुआई बा खास करके जो छिटकवा विधि बाटे तो ऐसे तो भाई अपने किसान भाई के दोहरा मुनाफा बाटे।
2: बिल्कुल हो भैया देखा ना ये जो सीधी बुआई बा इसे जो है उनके सबसे बड़ी बात बा कि फसल ना गिरत, और साथ ही साथ भैया अगर लाइन में बुआई भवे तो ओका हवा भी प्रकाश भी समुचित मात्रा में मिलत रहत है
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और फसल अपन तंदुरुस्त हो, तो भैया देखा सिंचाई में भी सुविधा होता है और साथ ही साथ भैया देखा ये समय जोन है अब भैया देखा धान का जोन है सीजन बने आवत ब तो एका जोन है जोन किसान
1: अब
2: भाई
1: दस पांच
2: हरे
1: दिन के बाद भाई सब किसान
2: हाँ
1: भाई पूरी तरह से तैयार
2: जहाँ
1: कर ले ही जो है।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया जहाँ से देखा बीज लें भैया वो जांच परख के बीज लेवे।
1: कह गया भाई हम कहीं देखा सारी मेहनत आपके भाई के प्रजात के बीज बा कोनो गुणवत्ता के बाटे
2: बिल्कुल
1: एह पर
2: बिल्कुल
1: निर्भर बा, पता लगा भाई मेहनत के खेत तैयार करा सब कुछ भाई खाद पानी डाला लेकिन अगर बीज कमजोर बा अच्छी प्रजाति का नहीं बा तो जौन
2: बिल्कुल
1: उत्पादन बाटे वो नहीं हो पावत। हम तो कहे तो भाई बहुत से देखा किसान भाई बुआई कह देथिन आ कहते उनका बीज भाई जमबे नहीं भाव जो
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है।
2: तो भैया यही बताइए हम देखा पंच भैया से यह कहे चाहब कि जहाँ से भी बीज लें भैया जांच परख लें और साथ ही साथ बीज शोधन भी जरूर करें,
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई
2: अगर ट्राइकोडर्मा से भी उनका बीज शोधन करत हैं तो वो बढ़िया है, और उसे ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन करके तब भैया देखा बुआई करें और चाहे तो नर्सरी डालें।
1: बिल्कुल
2: और
1: बिल्कुल
2: देखा मोहन भाई अपने जो बलाखन में कृषि रक्षा इकाई हैं राजकीय कृषि बीज भंडार हैं भैया देखा वहाँ धान का
1: प्रमाणित
2: तरह
1: बीज है।
2: हाँ प्रमाणित तरह तरह का बीज आए हैं भैया, किसान भैया वहाँ से भी बीज ले के जो है बुआई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई तो हम कहे किसान भाई भाई देखा जो वैज्ञानिक भैया सलाह देन अब भाई अब खरीफ का तैयारी करता है तो
2: बिल्कुल
1: भाई
2: बिल्कुल
1: अपन वही हिसाब से तैयारी करे जिससे आपके भाई 4 पैसा का मुनाफा हो जाना है और मेहनत भी स्वार्थ जाए। हम कहे
2: बिल्कुल
1: भाई देखा बात बात कही होत रहे मुला राम सिंह पटेल संघातिन के गाय और गौनई भी अपन किसान भाई को सुनवा दिया जाए।
2: सुनवा दे भैया।

0: हाँ
1: भैया
0: भैया
1: कितना बढ़िया भाई, देखा शिव गए गए गधारी। हाँ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: शिव मैं भाई हुई, ये वह पंचायत अपन जो ना है हम कही भाई देखा, अभी बातचीत होते

0: ये भाई खेती बाड़ी के जौन है ना, कृषि विविधीकरण के बारे में जौन
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल ओ मोहन भाई, देखा कही के मैंने कि खेती और बारी, तो खेती के साथे साथे बारी भी बहुत जरूरी बा,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यानी
0: भाई।
1: कि पशुपालन भी खेती के साथे साथे अगर होत है ना, तो देखा अपने खेत में खाद का जौन है,
0: देसी
1: हाँ
0: खाद भाई।
1: हाँ देसी खाद मिलत है, और वही के साथे साथे अगर भैया देखा देसी खाद अपने खेते में पड़त है ना, तो ओकर जौन अनाज भैया ओकर देखा गुणवत्ता जौन है उपयुक्त तो होत है, बढ़िया
0: बिल्कुल।
1: होत है। और कहें से कि आज देखा जौन रासायनिक खाद के बाद ज़्यादा से ज़्यादा किसान भैया हरे ओमें डालत हैं अपने माटी में, तो कहीं न कहीं अपने माटी के भी संरचना जौन है बिगड़त बाटे,
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई।
1: और साथे साथे देखा अनाज के भी गुणवत्ता जौन है खराब होत बे, और यही है कारण कि भैया देखा तरह तरह का रोग बीमारी भी फैलत बाटे जौन है। तो ये लिए भैया देखा जौन पशुअन से खाद देसी खाद बे वो अपने खेत में जरूर प्रयोग करे चाहे किसान भैया हर इनके।
0: ये बात तो भाई सही है भाई। देखा अगर पशुपालन करत हैं तबे समय भाई देखा कृषि अपने जो पशुपालन विभाग बाटे भाई टीकाकरण के भी अभियान समय समय पर चलाओ जात रहा था। जैसे
1: बिल्कुल
0: भाई
1: बिल्कुल
0: बरसात से पहले भाई टीका हुई है तो जो संभावित उनके रोग की संभावना रहो तो उसे नियंत्रण हो जाता है जो है। तो किसान भाई यह बातन के विशेष ध्यान रखें जो है
1: बिल्कुल भैया,
0: ये।
1: और जो देखा हो मोहन भाई गर्मी पड़त बने, तो पशुअन के यह गर्मी के मौसम में भैया बड़ी सावधानी बरते के पड़त हो।
0: बिल्कुल भाई। और हम कही भाई देखा खेती बाड़ी किसानी के बात तो भाई शुरू हो तो भाई और ना ही लागे। हाँ
1: बिल्कुल
0: बोल
1: बिल्कुल
0: भाई अपन पंच भाइन से भाई एक अरदास यह रहते जे भी किसान भैया रे हैं हम सभी उनके लिए जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम प्रस्तुत करत है उनका भाई और का आवश्यकता बाटे के तरह से अपन कार्यक्रम लागत बाटे
1: बिल्कुल
0: ओके
1: बिल्कुल
0: बारे में भी अपन सुझाव दें तो हम कही भाई बात अच्छी लागत है। हाँ तो भाई अगर किसान भाई अपन जैसे सुझाव दे चाहता है तो अपन भाई जो नंबर बाटे व्हाट्सएप नंबर बाटे 8004926250 भी तो भाई यह नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपन जोन विचार बाटे जोन अपन सुझाव बा ओका दे सकत हैं। साथे साथे जोन आकाशवाणी के भाई यहाँ के जोन ऑफिशियल पेज बाटे फेसबुक के वो पर भी जाई करके अपने कार्यक्रम के बारे में सुझाव दे सकत हैं जोन है कि अपन कार्यक्रम कैसे लागत बाटे
1: बिल्कुल
0: और किस
1: भैया
0: तरह से खेती बाड़ी की जानकारी और चाहता है जोन है। हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हो देखा खेती किसानी भैया देखा मौसम के देख के भैया किसान भैया खेती किसानी करिए तो जरूर उनके फायदा होई, और साथे साथे देखा अपन पशुपालन जोन बने उनका जो ये समय चारा पानी जोन है गर्मी के मौसम में जोन है सही
0: बिल्कुल।
1: तरीका से देवे के
0: हम कहे भाई
1: चाही।
0: समय हो गया बाकी अपन पंच भाई से विदाई लीन जाए तो पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशभक्तिपूर्ण रचना।

श्रोताओं, अभी आप संबित स्वरों में ये देशभक्ति पूर्ण रचना सुन रही थी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। सात 7:45 पर सुगम संगीत के प्रोग्राम में श्रीयुक्त श्रीकांत वैश्य के स्वर में गीत और भजन सुनवाया जाएगा और संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता होगी। 7:31 पर विषय होगा संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजनानाम उपादीयता। कल रात 9:30 युवा भारती और 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रही थी। ये आकाशवाणी प्रयागराज है, स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत

0: वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
1: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
2: वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए। किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube

0: चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर ललित कुमार की वार्ता। विषय है संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोजनानाम उपादेयता। आइए सुने।
2: संसारे अस्मिन् यद् ज्ञानं वर्तते।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, आंधी तूफान एवं वज्रपात से बचाव को लेकर सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अंतर्गत कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। विशेषकर टिन की छत, होर्डिंग, छत्रग्रस्त मकान, पेड़, बिजली के खंभे एवं मोबाइल टावर से दूर रहें। घर के बाहर या छत पर रखी हुई भारी वस्तुएं उड़ सकती हैं, इसलिए उन्हें बांध कर रख दें। और यदि आप यात्रा कर रही हैं तो सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाएं। आंधी तूफान के दौरान सावधानी हेतु क्या नहीं करना है, इस संबंध में धारदार एवं नुकीली वस्तुओं को खुले में न रखें। इसके अलावा धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें और पेड़ की शरण में न जाएं। आकाशीय विद्युत के परिप्रेक्ष्य में कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। इसमें पक्के मकान की शरण में चले जाएं, खिड़की, दरवाजे एवं बरामदे से दूर रहें। इसके अलावा पेड़, मोबाइल टावर, बिजली के खंभों, कच्चे मकान, तालाब, जलाशय से दूरी बनाकर रखें। खराब मौसम में बच्चों को बाहर न खेलने दें। लोहे की खिड़की, दरवाजे और हैंडपंप आदि को न छुएं। यदि खुले खेत में फंस गए हैं तो दोनों कानों को बंद कर पैरों को सटा लें और घुटनों का टेक लेकर उकड़ बैठ जाएं। वर्षा, आंधी तूफान आकाशीय बिजली एवं बदलते मौसम का सटीक पूर्वानुमान देगा बहुपयोगी सचेत ऐप एवं दामिनी ऐप, जिससे कि प्रशासन, स्वयंसेवक तथा जागरूक लोगों द्वारा पूर्व चेतावनियों एवं अलर्ट को आम जनमानस तक समय से पहुंचाकर आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं दामिनी एवं सचेत ऐप। इसके अलावा आकाशीय विद्युत के परिप्रेक्ष्य में सावधानियां हेतु क्या नहीं करना है, इस संबंध में पेड़ के नीचे न खड़े हों, दीवार के सहारे टेक न लगाएं, धातु युक्त नल एवं फ्रिज को न छुएं, धातु से बने छाते का प्रयोग न करें, घरों में चलने वाले भारी विद्युत उपकरणों को प्लग से अलग कर दें, खुले वाहनों में सवारी न करें और बचाव के लिए जमीन पर न लेटें तथा तैराकी या नौकायन न करें। ये थी सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी। इसके माध्यम से आप स्वयं और दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं।

शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है। खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का व्रत लें। हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:45 हो चुके हैं। वक्त हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं श्रीयुत श्रीकांत वैश्य। इनके स्वर में हम आपको भजन और गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मलुकदास की इस भक्ति रचना के साथ।

श्रोताओं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारे कलाकार हैं श्रीयुत श्रीकांत वैश्य। इस भक्ति रचना के बाद प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इनके स्वर में कैलाश गौतम का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीयुत श्रीकांत वैश्य के स्वर में कैलाश गौतम का लिखा ये गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम अभी हाजिर होते हैं अपना अगला कार्यक्रम लेकर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्मी गीत सिर्फ धुन और बोल नहीं होते, ये वक्त की आवाज होती ही। हर दौर की अपनी धड़कन, अपना अंदाज। आज की इस खास महफिल में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे नगमे जो जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। पुराना सोना, नब्बे का जादू और नई सदी की धड़कन। तो चलिए इस सुरमई सफर की शुरुआत करती हैं।

अनंत की जोड़ी एसडी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के लफ्ज गाइड फिल्म का ये गाना जो इस वक्त आपके रेडियो सेट पर बज रहा है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गूंजा तो लगा जैसे हर प्रेमी के दिल की बात कह दी। एक इंतजार एक तड़प सुनिए ये गाना।

तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। उफ, क्या दर्द है रफ़ी साहब की आवाज़ में। श्रोताओं, ये था हमारे सिनेमा का सुनहरा दौर, जब शायरी और संगीत एक दूसरे में घुल जाते थे।

और श्रोताओं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 1994, एक ऐसी आवाज ने दस्तक दी जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखा दिया। 1942, अ लव स्टोरी, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, कुमार सानू की आवाज में, बोल जावेद अख्तर की और संगीत आर डी बर्मन का।

मोहब्बत की मासूमियत को इतनी खूबसूरती से शायद ही किसी ने पिरोया हो। जरा आंख बंद करके सुनिए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

जैसी खिलता गुलाब, जैसी शायर का ख्वाब। वाह, 90 का दशक अपने आप में एक एहसास था, न इतना तेज न इतना धीमा, बिल्कुल दिल की धड़कन जैसा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: और श्रोताओ, अब बात नई सदी की। साल 2013 एक फिल्म आई, ये जवानी है दीवानी। प्रीतम का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अरिजीत सिंह की वो आवाज़ जो आज की पीढ़ी की धड़कन बन गई। दोस्ती, मोहब्बत और यादों का ऐसा संगम कि हर सुनने वाला अपने कॉलेज के दिनों में खो जाए।

रेखा भरद्वाज और साथियों की मिलीजुली आवाजों में आप सुन रही थी ये जवानी है दीवानी फिल्म का ये गाना। इसे लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम ने तैयार किया था।

श्रोताओं, ये गाना है 2012 में आई फिल्म अग्निपथ का। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे और अमित त्रिवेदी के संगीतबद्ध किए इस गीत को सोनू निगम की रूहानी आवाज मिली। हर अधूरे ख्वाब की दास्तां कहता ये गाना।

और श्रोताओं, अब बारी है 2013 की उस फिल्म की जिसने मोहब्बत की नई इबारत लिखी, आशिकी 2। मिथुन के संगीत और बोलों से सजा ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज का जादू बन गया, युवाओं की धड़कन बना

श्रोताओं, इश्क के इस रंग के बाद अब थोड़ी मस्ती हो जाए। साल 2017, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया। शब्बीर अहमद के बोल और तनिष्क बाग्शी के धमाकेदार संगीत ने नेहा कक्कड़, मोनाली ठाकुर, देव नेगी और इक्का की आवाजों के साथ हर महफिल को रंगीन कर दिया।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रही हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसने सूफी और रोमांस को एक साथ पिरो दिया। साल 2018, फिल्म केदारनाथ। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे और अमित त्रिवेदी के संगीत सजे इस गीत को अमित त्रिवेदी ने ही अपनी आवाज से अमर कर दिया। पहाड़ों की वादियों सा सुकून देता ये गाना।

और श्रोताओं, अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव। साल 2019 में आई फिल्म कबीर सिंह ने एक गीत दिया जो दर्द में भी सुकून ढूंढता है।

श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिल्म संगीत का ये सफर जरूर पसंद आया होगा और इसी के साथ अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को ही वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया

0: भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। एनएबीएल प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: केंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि

0: के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज

0: 96 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
2: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to

0: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज्जम और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की ब्रेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया, ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस अकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोछर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है, क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंग बंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी ज़ेरे इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: खलीज तआवुन काउंसिल GCC ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज़म मैकेनिज्म के क्याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नज़र से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमत नामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयाँ और नकल

0: हक्कानी अहकामात इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट पीटीएम कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाईजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटन्स के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। और IPL क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का आदाब। आप सुन रहे हैं गजलों की कहकशा, वो आसमान जहां अल्फाज सितारे बनकर टिमटिमाते हैं और धुनी चांदनी बनकर दिल को छू जाती हैं। आज की इस महफिल में हम लाए हैं हिंदी सिनेमा की कुछ बेमिसाल गजलें, कुछ नई कुछ पुरानी, पर सबके जज्बात एक जैसी, मोहब्बत जुदाई इंतजार और सुकून से लबरेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब गजल का मतलब था जगजीत सिंह की आवाज़। फिल्म अर्थ से ये गजल आज भी हर टूटे हुए दिल की दवा है।

श्रोताओं, गजल का सफर यहीं नहीं रुकता, नई पीढ़ी ने भी इसे बखूबी निभाया। साल 2006 में फिल्म वो लम्हे और इस गजल ने साबित कर दिया कि दर्द का कोई दौर नहीं होता। सुनिए जावेद अहमद की आवाज में सईद कादरी का ये कलाम।

श्रोताओं, अब चलते हैं 90 के दशक में गुलजार साहब के लफ्ज़, भूपिंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म मासूम की ये गज़ल।

नई पेशकश फिल्म गुजारिश से, संजय लीला भंसाली का संगीत और कैलाश खेर की आवाज, दर्द और सूफियाना का संगम।

तो श्रोताओं, यही खत्म होती है आज की गजलों की कहकशा। उम्मीद है इन नगमों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए सितारों के साथ इसी आसमान के नीचे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने श्रोताओं को हम एक बार फिर बता दें, आंधी तूफान एवं वज्रपात से बचाव को लेकर सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। इसके अंतर्गत आंधी तूफान के दौरान सावधानियां हेतु क्या उपाय करने हैं, इस संबंध में टिन की छत, होर्डिंग्स, क्षतिग्रस्त मकान, पेड़, बिजली के खंभे एवं मोबाइल टावर से दूरी बनाकर रखनी है। इसके अलावा घर के बाहर या छत पर रखी हुई भारी वस्तुएं उड़ सकती हैं, इसलिए उन्हें बांधकर जरूर रख दें। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाएं। इसके अलावा आंधी तूफान के दौरान सावधानियों हेतु क्या नहीं करना है, इस संबंध में ये सुझाव दिए गए हैं कि धारदार एवं नुकीली वस्तुओं को खुले में न रखें, साथ ही धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें एवं पेड़ की शरण में न जाएं। आकाशीय विद्युत के परिप्रेक्ष्य में सावधानियां हेतु क्या करना है, इस संबंध में कुछ सुझाव दिए गए हैं। पक्के मकान की शरण में चले जाएं। इसके अलावा खिड़की, दरवाजे एवं

बरामदे से दूर रहें। पेड़, मोबाइल टावर, बिजली के खंभे, कच्चे मकान, तालाब, जलाशय से दूरी बनाकर रखें। साथ ही खराब मौसम में बच्चों को बाहर न खेलने दें। लोहे की खिड़की, दरवाजे व हैंडपंप आदि बिल्कुल न छुएं। यदि खुले खेत में फंस गए हैं तो दोनों कानों को बंद कर पैरों को सटा लें तथा घुटनों का टेक लेकर उकड़ू बैठ जाएं। वर्षा, आंधी तूफान, आकाशीय बिजली एवं बदलते मौसम का सटीक पूर्वानुमान देगा बहुपयोगी सचेत ऐप एवं दामिनी ऐप, जिससे कि प्रशासन, स्वयंसेवक तथा जागरूक लोगों द्वारा पूर्व चेतावनियों एवं अलर्ट को आम जनमानस तक समय से पहुंचाकर आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है दामिनी ऐप एवं सचेत ऐप।

पहुंचाकर आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है दामिनी ऐप एवं सचेत ऐप।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कृष्णा मित्रा का लिखा नाटक लॉकर। इसका निर्देशन किया है राजेश श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं कृष्णा मित्रा का लिखा नाटक लॉकर।

0: वो किंकर्त विमूर बन जाते हैं। निराशा से टूटते मन मस्तिष्क, डिप्रेशन से ग्रसित उदास चेहरे और उन पर झलकती हुई अभावों की झुर्रियां, जीवित परंतु मृतक के समान बुजुर्गों में जाने की लालसा रहित अभिव्यक्ति हृदय को विदीर्ण कर देती है।
1: इतना ही नहीं, जीने के अधिकार को छलावा समझकर वो मरने के लिए कोर्ट तक में अर्जी देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप जरा अनुमान लगाइए कि बुजुर्गों की कितनी दुर्गति है। वो बुढ़ापे के जीवन से ऊब चुके हैं, जीवन की संध्या में किस बेबसी तथा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं ये वो ही जानते हैं। पीड़ा के सागर में डूबा हुआ वृद्ध अपने दुखों का इजहार भी नहीं कर पाता। सच है, उनके आंसू पोछने वाला कोई नहीं। कहां चले गए सम्मिलित परिवार के सुख और मर्यादित जीवन के भाव, जहां वृद्ध परिवार का नेतृत्व करता था, पूजा जाता था, जहां परिवार का प्रत्येक सदस्य उसके लिए जीता था मरता था। अब घर का बूढ़ा अपने ही संतानों के लिए बोझ बन गया है।
0: बहु बेटों के लिए रक्त संबंध अर्थहीन हो गया है। आधुनिक जीवन शैली की चकाचौंध में बहु बेटे औचित्य के मार्ग से भटक गए हैं। पुत्र एवं पत्नियां बुजुर्ग माँ बाप को खूसट निखट्टू कहकर संबोधित करती हैं, अभिशप्त कटु वचनों से उनके हृदय को व्यथित करती रहती हैं। आखिर ऐसी दुर्गति क्यों? क्या दोष है हाँपते कांपते बुजुर्गों का? क्या वो एक परिवार या समाज के अंग नहीं है? क्या वो समाज का उत्तरदायित्व नहीं है कि मजबूर वृद्ध को मरण का वरण करने से बचाए?
1: वृद्धावस्था सबको आती है, ये जीवन की सतत प्रक्रिया है। ऐसा कौन सा परिवार या समाज है जहां बूढ़े नहीं है? फिर ये वृद्ध आज क्यों अवांछनीय व्यक्ति हो गए हैं?
0: क्या इन्हीं से परिस्थितियों के फलस्वरूप बुढ़ापा एक सच कहा गया है, वो माना गया है? ऐसा नहीं। आज के जटिल जीवन प्रणाली में वृद्धों की दिनों दिन बिगड़ती दशा तथा उनसे जुड़ी समस्याओं का मानवीय ढंग से समाधान खोजने का प्रयास करना हमारा नैतिक धर्म एवं कर्तव्य है।

तीव्रतर सामाजिक परिवर्तन एवं पाश्चात्य अंधानुकरण के पाठ में आज वयोवृद्ध पिसता चला जा रहा है, उनका सम्मान घटता चला जा रहा है, उनकी डबडबाई आंखों के आंसू पलकों के नीचे बिना ढलके सूखते जा रहे हैं। कदाचित उनकी बेबसी आंसुओं को छलकने से रोकती है। वो किसी तरह अपने दिन काट रहे हैं। उनका अभिशप्त जीवन उन्हें सोचने को मजबूर करता है कि मर जाएं तो अच्छा है। उनके दिल से निराशा एवं आंखों के सम्मुख अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। वो जाएं तो कहां जाएं?

0: सुधा के पांव बैंक के पास जाकर ठिठक गए। उसने बहू को देखने के लिए चारों ओर नजर डाली, पर वो दिखाई नहीं दी। सुधा ने सोचा बहू भारती ने उसे 1 बजे बैंक में आने के लिए कहा था। पता नहीं क्या बात है, शायद वो अंदर केबिन में बैठी हो। अतः वो केबिन को देखने गई। चूंकि सुधा का खाता इस बैंक में पिछले 10 सालों से है, अतः यहाँ के बारे में वो अच्छी तरह से जानती है।
1: भारती अंदर शेखर दत्ता के मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। सुधा को देखते ही भारती मुस्कुरा उठी।
2: आइए माँ जी।
3: सर, मेरी सास चाहती हैं कि उनके लॉकर खाते में मेरा नाम भी जोड़ दिया जाए। बढ़ती उम्र के कारण अब वो बार बार बैंक आ जा नहीं सकती। इन दिनों ये बीमार भी रहने लगी हैं। आप हमें फॉर्म दे दीजिए, हम दस्तखत कर देते हैं।
0: ये सुनकर सुधा अवाक रह गई। शेखर ने एक नजर सुधा पर डाली। थकी मांदी सी प्रौढ़ महिला की आंखें मानो कुछ कहना चाहती हों। वो पिछले कुछ वर्षों से सुधा को जानते हैं। सप्ताह में 1-2 बार वो बैंक जरूर आती है और आकर कहती है,
2: सर मुझे लॉकर ऑपरेट करना है।
1: शेखर दत्ता नियमानुसार सुधा के आगे रजिस्टर बढ़ा देते हैं। वो हस्ताक्षर कर देती हैं, चाबी लेकर दोनों स्ट्रांग रूम में चले जाते हैं। लॉकर में दोनों अपनी अपनी चाबियां लगाते हैं। शेखर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में सुधा भी लॉकर बंद कर बाहर आ जाती है।
2: मैंने देख लिया सर, सब ठीक ठाक है।
4: ये लीजिए फॉर्म, और आप इसे पढ़ जरूर लीजिए। फॉर्म भरकर आप दोनों हस्ताक्षर कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा।
3: चलिए माँ जी, घर जाकर मैं आपको नियम पढ़कर बता दूंगी, कल फॉर्म आकर जमा कर देंगे।
0: उन्होंने शेखर को थैंक यू कहा और बाहर आ गए। ऑटो लेकर दोनों घर पहुंचे। खाने की मेज पर खाना खाते समय भारती ने कहा,
3: माँ जी ये फैसला आपके बेटे का है कि आपका बैंक अकाउंट और लॉकर हम दोनों के नाम कर दिया जाए, क्योंकि अब आपके

0: उम्र अधिक हो रही है और फिर आपको चलने फिरने में भी परेशानी होती है, इसलिए बैंक का जो भी काम होगा उसे अब हम कर लिया करेंगे।
1: सुधा के हाथ का कौर हाथ में ही अटक गया। अपने आप पर संयत रखकर बड़ी मुश्किल से बोली,
2: ये क्या कह रही हो बहू? अभी तो मैं अपना काम अच्छी तरह कर सकती हूँ, तुम परेशान मत हो।
0: माँ जी, बैंक में आते जाते समय कई लोग घात लगाए बैठे रहते हैं, जरा सी चूक हुई नहीं कि माल पार हो जाता है।
2: तुम ठीक कह रही हो भारती, मुझे किसी प्रकार का लेन देन थोड़ी ही करना है जो ये नौबत आएगी।
3: माँ जी के जवाब से भारती का धीरज टूटता जा रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि कितने दिनों से सास को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, मगर बुढ़िया टस से मस नहीं हो रही है। पता नहीं लॉकर में कितना सोना पड़ा है। अरे ये मरेगी तो क्या साथ में ले जाएगी? उसे कल को कुछ हो गया तो कितनी परेशानी होगी।
1: फिर भारती मन ही मन सोचती रही कि आज शाम रवि के आते ही वो माँ जी से किसी न किसी तरह फॉर्म पर साइन करा ही लेगी, चाहे इसके लिए उसे थोड़ी जोर जबरदस्ती ही करनी पड़े।
3: इधर सुधा खाना नहीं खा सकी। वो अपने कमरे में जाकर पलंग पर धम्म से गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसे याद आ रहा था जब वो पहली बार बैंक में लॉकर खुलवाने गई थी, तब उसने पति से कहा था,
2: सोना तो औरत का स्त्री धन होता है, मुसीबत के समय यही काम आता है, इसलिए लॉकर से बढ़कर कोई सुरक्षित स्थान है ही नहीं।

0: विमल यानी सुधा के पति विद्युत विभाग में एसडीओ थे। जब भी दौरे पर जाते, वापसी में सुधा के लिए कोई न कोई छोटा मोटा गहना जरूर खरीद कर साथ ले आते। उनका मानना था कि पत्नी पति को अच्छा खाना खिलाकर उसका दिल जीत लेती है, तो पति को गहनों की सौगात देकर पत्नी का दिल जीत लेना चाहिए। गहना औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस प्रकार से लॉकर में गहनों की संख्या बढ़ने लगी। जब भी विमल दौरे से लौटते, बेटा पूछता,
1: पापा इस बार मम्मी के लिए क्या लाए?
2: हाँ बेटे, मम्मी को उनसे दूर रहने का हर्जाना तो देना ही पड़ेगा।
3: एक बार विमल किसी घोटाले में फंस गए थे। काफी छानबीन के उपरांत शक की सुई विमल पर जाकर ठहर गई। अब विमल को बदनामी का डर सताने लगा। अधिक धन कमाने के चक्कर में आदमी बेईमानी के दलदल में फंसता ही चला जाता है। वही हाल विमल का हुआ। यद्यपि विमल ने इस दलदल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर सब बेकार। एक दिन अधिक मानसिक दबाव तनाव में आकर उन्होंने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली और आत्महत्या करने से पहले एक नोट लिखकर छोड़ दिया कि उच्च अधिकारियों ने मुझे जबरन फंसाया है, मैं इस बदनामी को सह नहीं पा रहा हूं, लिहाजा मैं स्वेच्छा से आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे बाद मेरे परिवार को परेशान न किया जाए।
0: इसी बीच रवि की नई नई शादी हुई थी। रवि ने अपनी पत्नी भारती को लॉकर, बैंक अकाउंट और बंगले आदि के बारे में सब कुछ बता दिया था कि सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम पर है।
3: उधर सुधा पति की मौत के सदमे से कई माह तक उबर भी नहीं पाई। रवि और भारती माँ को खुश रखने का प्रयास करते रहे, परंतु फिर भी उनके मन में अज्ञात भय ने घर करना प्रारंभ कर दिया। स्वयं को असुरक्षित अनुभव करने लगी। वो अनमने भाव से प्रतिदिन बैंक चले जाती और लॉकर खोलकर सब चीजों पर एक नजर डालकर लॉकर बंद कर वापस आ जाती, मानो उसे पति द्वारा दिया गया स्त्री धन उसे सुरक्षित भावना प्रदान करता हो। आत्मसंतोष की इस चरम प्रतिक्रिया से सुधा के दिन गुजरने लगे।
0: इसी दौरान अखबार में प्रकाशित एक समाचार जायदाद के लालच में वृद्धा की हत्या ने उसे अंदर ही अंदर झकझोर दिया। वो हर समय सहमी सहमी से रहने लगी। वो डर से आश

0: शंकित रहती और सदैव अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से सशंकित रहती थी। ऐसे समाचार पढ़कर वो इस हद तक तनावग्रस्त हो जाती यदि आगे चलकर यही अनहोनी उसके साथ हो गई तो उसके भविष्य का क्या होगा।
1: आज भारती ने तो कमाल ही कर दिया। सुप्त आत्मविश्वास ने जैसे भारती को सुदृढ़ निर्णय लेने हेतु प्रेरित किया और वो सीधे बाजार से बैंक गई और सुधा को भी वहीं बुला लिया था। बैंक अधिकारी के सामने भारती जताना चाह रही थी कि सुधा भारती के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहती है। शाम को रवि घर आया तो खाने की मेज पर फिर लॉकर की बात छिड़ गई। दोनों पति पत्नी ने बहुत प्रयास किया कि फॉर्म पर अम्मा यानी सुधा हस्ताक्षर कर दें।

0: बेटा रवि, ये सब कुछ तुम ही लोगों का तो है। तुम दोनों के अलावा मेरा इस संसार में और है भी कौन? समय आने पर मैं सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगी।
1: बैंक का फॉर्म सामने रखा था, पेन भी खुला था, पर उसने निर्णय ले लिया कि वो किसी कीमत पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। इतनी जल्दी कैसे वो सब कुछ सौंप दे? उसका तो बुढ़ापा ही बिगड़ जाएगा। और इसीलिए तो विमल ने लॉकर खुलवाए थे कि भविष्य में सुधा को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। रवि और भारती पर तो जायदाद हथियाने का जुनून सवार था। भारती ने सुधा के हाथों में पेन पकड़ाते समय उनकी कलाई तक मरोड़ दी थी। मां के मना करने पर रवि ने धीरज से काम लिया।

0: माँ, तुम आज की रात और सोच लो, सुबह बात करेंगे।
1: ये कहते हुए दोनों बेडरूम में चले गए। सुधा की आंखों में नींद उड़ चुकी थी। रात भर वो जीवन के ताने बाने बुनती रही। पैसे की हवस इंसान को इतना नीचे गिरा देती है कि उनके बीच उनके रिश्तों की कोई अहमियत भी मायने नहीं रखती। उसने सोच लिया कि अब वो यहां नहीं रहेगी, कहीं ऐसी जगह चली जाएगी जहां वो बिना किसी खौफ के रह सके। उसने हिम्मत कर निर्णय लिया और सुबह बेटे बहू से बोली,

0: बेटा रवि, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ सीतापुर जाना चाहती हूँ। शाम को टिकट लेते आना।
1: अगले दिन भारती के ब्यूटी पार्लर जाते ही सुधा भी तैयार होकर बैंक चल दी। आज वो अंतिम बार लॉकर ऑपरेट करेगी। उसके हाथ में चमड़े का बैग था। ऑटो कर वो बैंक पहुंची पूरे आत्मविश्वास के साथ और शेखर दत्ता से कहा,
0: लॉकर ऑपरेट करना है सर।
2: शेखर दत्ता ने रजिस्टर आगे बढ़ा दिए। चाबी लेकर दोनों स्ट्रॉन्ग रूम में गए। लॉकर खोलकर शेखर बाहर आ गया। सुधा ने हैंडबैग खोलकर लॉकर में एक तह किया हुआ पत्र रख दिया और पूरा सामान उसमें डाल लिया। फिर लॉकर को अच्छे से बंद किया। बाहर आकर उसने शेखर दत्ता को धन्यवाद दिया और ऑटो कर वो लौट आई।
1: हैंडबैग का सामान उसने गाड़ी में रखकर पोटली बांध ली। उसे पलंग के नीचे रखकर चैन की सांस ली। थोड़ी देर में भारती भी ब्यूटी पार्लर से लौट आई। दोनों साथ साथ खाना खाने चली गई। भारती अपने कमरे में चली गई थी। पूरी दोपहर सुधा बंगले की हर दीवार को बड़े प्यार से देखती रही। शाम को रवि सुधा के लिए टिकट लेकर आया।

0: माँ ये लो टिकट, कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है। मौसी को भी फोन कर दिया है, वो स्टेशन पर तुम्हें लेने आ जाएंगी।
1: रवि बेटे, बैंक का फॉर्म देना तो मैं हस्ताक्षर कर देती हूँ। पता नहीं वहाँ कितने दिन लग जाए, ज्यादा दिन रह

0: गई तो तुम्हें यहाँ बैंक का काम भी पड़ सकता है। मेरे और बहू के नाम लॉकर ज्वाइन करवा देते हैं, यही ठीक रहेगा।
1: भारती और सुधा ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। सभी के चेहरे पर से तनाव खत्म हो गया था।
2: सुधा का सामान बांधने में भारती ने मदद की। सुधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आधी रात को सुधा ने उठकर गहनों की पोटली सूटकेस में रखकर उस पर पुराने कपड़े डाल दिए। सुबह उठकर वो तैयार हो गई।

0: माँ जी चाय पी लीजिए, रास्ते के लिए नाश्ता रख दिया मैंने।
1: ठीक है।
2: रवि और भारती सुधा को स्टेशन पहुंचाने गए। ट्रेन आ गई थी। सुधा अपनी सीट पर बैठ गई। दोनों ने सुधा के पैर छुए।
3: माँ जी जल्दी आ जाना।
0: आपके बिना हमारा मन भी तो नहीं लगेगा माँ।

0: बहू के शब्दों को सुनकर सुधा को शहद जैसी मिठास खुली हुई लगी।
1: भारती बेटी, ये लो लॉकर की चाबी।
2: अच्छा माँ जी।
1: इसे खूब संभाल कर रखना बेटी।

0: आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, बैंक जाना है।
1: ठीक है भारती, जैसा तुम कहो।
2: भारती के कहने पर रवि ने छुट्टी ले ली और वो दोनों बैंक गए, फॉर्म जमा किया। शेखर ने फॉर्म चेक करने के बाद कहा,
3: अब आप लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं।
4: इसी के साथ शेखर ने भारती के आगे रजिस्टर बढ़ा दिया। हस्ताक्षर करने के बाद भारती और शेखर स्ट्रांग रूम की ओर चल दिए। रवि भी उनके साथ हो लिया।
2: रवि और भारती ने आतुरता से लॉकर खोला, दोनों एक साथ चीखे, ये क्या?
1: अरे
0: कहने कहाँ चले गए?
1: लॉकर तो पूरा का पूरा खाली है।
2: लॉकर पूरा खाली था, अंदर एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी, उसमें लिखा था,
5: बेटा तुमने बहुत जल्दबाजी की, ये सब कुछ तो तुम लोगों का ही था। मैं तो देर सवेर सब कुछ तुम ही लोगों के नाम करने वाली थी। तुम लोगों के व्यवहार ने मुझ में असुरक्षा की भावना भर दी। यही कारण है कि मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा। हाँ, मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, तुम्हारी माँ।

0: रवि और भारती दोनों ठगे से रह गए।
1: मैं क्या करूं, ट्रेन तो चल पड़ी थी, मैं मधु के यहां भी तो जाना नहीं चाहती। सारी दुनिया में अब मैं अकेली पड़ गई। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ सोच सकूं मुझ जैसी अबाकिन महिलाओं के लिए। मैं सीतापुर तो कतई नहीं जाऊंगी। रेलगाड़ी अपनी तेज रफ्तार पकड़कर कब मथुरा स्टेशन पहुंच गई मुझे पता ही न चला। मैंने झट से अपनी अटर्ची उठाई और मथुरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर उतर गई।

0: मैं कहीं से भी अपने आप को भयभीत अथवा असुरक्षित नहीं समझ रही थी। मानस पटल से मानो कोई बोझ हल्का हो गया। क्षण भर में मैंने तय किया कि मैं किसी गेस्ट हाउस अथवा धर्मशाला में शरण लूंगी, और मैंने किया भी वही। मैंने कृष्ण धर्मशाला में एक कमरा लिया और अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हुए शाम के भोजन की व्यवस्था के लिए बाहर निकली।
1: आप किसे खोज रही हैं बहन जी?
0: किसी को भी तो नहीं, यूं ही जरा।
1: आप रात्रि का भोजन इसी धर्मशाला में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकती हैं। इस धर्मशाला की यही तो अच्छाई है कि गोधूली बेला के बाद जो आरती होती है ना, उसके बाद भरपेट प्रसाद जितने लोग रहते हैं सबको मिलता है।
0: अति उत्तम। इस जगह ने तो बहुत कम समय में मेरा मन मोह लिया है। अच्छा बहन जी, आप इस धर्मशाला की कार्यकर्ता हैं क्या?
1: नहीं नहीं बहन, मैं भी आपकी तरह वृद्धावस्था के पड़ाव में आकर उचित स्थान की संधान में हूँ।
0: ओह, तब तो हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं।
1: तो चलिए, वो देखिए आरती भी शायद आरंभ होने वाली है।

0: बहन, आज के युग में हम बुजुर्गों की कोई अहमियत ही नहीं रही। बेटा बहू तो यही सोचते हैं कि कब इन बूढ़ों से पीछा छूटे।
1: तुम ठीक कह रही हो बहन, ऐसा क्यों होता है? बहू के आने के बाद बेटा अपने माँ बाप का पराया क्यों हो जाता है?
0: मेरे बेटे बहू ने तो मुझे घर ही से निकाल दिया बहन। ओहो, मुझसे धोखे से उन्हें सब कुछ अपने नाम करा लिया।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं सोचने लगी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पेट कैसे भरेगा। तब मुझे एक सज्जन ने यहाँ का पता देकर यहाँ भेजने की व्यवस्था की।
1: ओ,
0: और अब मैं बिहारी जी की शरण में आ गई हूँ।
1: ठीक यही दशा मेरी भी होने जा रही थी बहन, लेकिन भगवान ने समय पर मेरी आँखें खोल दी और ये दशा आने से पहले ही मैं सतर्क हो गई। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अपना सब कुछ बेटे बहू को नहीं दूंगी, अपनी सारी पूंजी जन कल्याण में लगाऊंगी। और यही सोचकर मैंने अपने सारे जेवर और पैसे लिए और यहाँ आ गई।
0: ये तुमने बहुत अच्छा किया बहन कि तुम यहाँ आ गई।
1: और जानती हो, आज आरती के वक्त मुझे लगा जैसे बिहारी जी ने मुझे राह दिखा दी। अब इस संपत्ति से मैं एक स्कूल खोलूंगी जहाँ अनाथ बच्चे और गरीबों के बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करेंगे, और एक ट्रस्ट बनाऊंगी जिससे गरीबों की बेटियों की शादी हो सके।
0: ये तो तुम्हारे बहुत अच्छे विचार हैं।
1: ये विचार नहीं बहन, ये मेरा संकल्प है। और वक्त ने मेरे अंदर जो दृढ़ता पैदा की है उस पर मैं कल से ही अमल करूंगी। चलो बहन, शाम की आरती का समय हो गया है, चलकर बिहारी जी का आशीर्वाद ले लिया जाए।
0: चलो।

0: और इस तरह सुधा ने जो संकल्प लिया उस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए अगले दिन से ही लग गई
1: और उसकी मेहनत रंग लाई। उसका ट्रस्ट भी बन गया और स्कूल भी खुल गया जिससे गरीबों की मदद होने लगी।
0: स्त्री को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने मन में एक हिम्मत और दृढ़ता होनी चाहिए जिससे वो प्रगति की राह पर चल सकती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृष्णा मित्रा का लिखा नाटक लॉकर। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर अशोक शुक्ला, विनय श्रीवास्तव, नंदिनी चैटर्जी, प्रतिमा श्रीवास्तव, रूपा सहाय, विनोद कुमार गौड़, आसफा फाकरी।

और अश्विनी अग्रवाल। नाटक का निर्देशन किया था राजेश श्रीवास्तव ने। हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में हाजिर होते हैं अपना अगला कार्यक्रम लेकर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। वक्त हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद निषाद खां का राग चांदनी कल्याणी में सितार वादन। आलाप और गत 3 ताल में निबद्ध है, तो आइए सुनते हैं उस्ताद निषाद खां का राग चांदनी कल्याणी में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद निषाद खां का राग चांदनी कल्याणी में सितार वादन, आपके साथ तबले पर संगति की शफात अहमद खान ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद निषाद खां का राग चांदनी कल्याणी में सितार वादन, आपके साथ तबले पर संगति की शफात अहमद खान ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम समाचार रिले कर रहे हैं, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस